चाहते हो खुद के लिए सम्मान, तो कुछ सम्मान दूसरों का भी करना सीख लो। अकड़े रहते हो हर जगह, अकड़े रहते हो हर जगह, कभी कभी कहीं झुकना भी सीख लो। पांच बजकर 37 मिनट हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किशोर कुमार जी की आवाज में जिंदगी के सफर में। समस्याएं हैं तो कहीं समाधान भी होगा, समस्याएं हैं तो कहीं समाधान भी होगा, दुखों का पहाड़ है तो कहीं सुकून का आसमान भी होगा। ताउम्र कोई परेशान नहीं रहता यहाँ पर, ताउम्र कोई परेशान नहीं रहता यहाँ पर, सही समय आने पर हर समस्या का निदान भी होगा। 5:44 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि के तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्पण।

6:44 पर आप सुन सकेंगे श्री रामचरित मानस गान। 6:55 का समय रहेगा संस्कृत में समाचारों का। ठीक 7 बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात, ठीक 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे और 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आप सुन सकेंगे उर्दू में समाचार। आठ बजकर 45 मिनट का समय रहेगा प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्लगी का, ठीक 9 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, 9:05 का

समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का और 9:10 पर जारी रहेगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ये थी जानकारी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। 5:59 हो चुके हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। यह फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रैप बाय शगुन चोपड़ा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. On the implementation, Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. The minister said adequate financial resources have been made available, implementation systems are fully in place and ongoing works will continue without interruption. He added the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian yesterday. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi this evening on a three-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Our correspondent reports that India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity, and shared values of freedom, democracy, and respect for the rule of law. A major change in Uttarakhand's madrasa education system will come into effect from today. Under the new arrangement, the Uttarakhand Madrasa Education Board will be abolished and all minority educational institutions in the state will be governed under a new framework. From July 1st, the Uttarakhand Madrasa Education Board, the Uttarakhand Madrasa Education Board Act 2016 and the Uttarakhand Non-Government Arabic and Persian Madrasa Recognition Rules 2019 will cease to have effect. The state government has introduced a new system under the Uttarakhand Minority Educational Institutions Act. Under the new framework, the Uttarakhand State Minority Education Authority will be responsible for granting recognition to minority educational institutions, monitoring their functioning and ensuring academic quality. The new system will cover educational institutions of the Muslim, Sikh, Jain, Christian, Buddhist and Parsi communities. Centre has revised the export levy rates on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight starting today. According to a notification issued by the Ministry of Finance, under the revised rates, the export levy on petrol has been fixed at 4 rupees per litre. In football, Kylian Mbappe further enhanced his FIFA World Cup legacy to lead France to a comfortable win against Sweden in the round of 32 clash. France defeated Sweden 3-0 at New York's New Jersey Stadium this morning to storm into round of 16.

6:11 और ठीक 57 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये समय होता है भक्ति रस से भरपूर अर्पण का, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। और हम हमेशा जब अर्पण की बात करते हैं, सुप्रभात की बात करते हैं, तो ये देखते हैं कि इसे शुभ प्रभात बनाने में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारी मदद करती हैं, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें हटाना चाहिए ताकि हमारी प्रभात वास्तव में शुभ हो सके। तो एक चीज जो हम अपनी प्रभात में जोड़ सकते हैं वो है भाव। क्योंकि जब सुबह की बात होती है ना, तो अक्सर हम अपनी शुरुआत करते हैं किसी न किसी सिमरन से, जप से, इबादत से या आरती से। लेकिन सोचिए, एक ही आरती होती है, एक ही जप होता है, एक ही तरह का सिमरन होता है, एक ही तरह की इबादत है, सब बाहर से देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी एक व्यक्ति की आंखों में आंसू आने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं, और दूसरा घड़ी देखने लगता है। ऐसा क्यों? तो ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि दो लोग जो एक ही काम कर रहे हैं, वो एक काम करते करते भी अलग अलग भावों में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बात बाहर से कुछ भी करने की नहीं है, बात है कि हमारा भाव उससे जुड़ा हुआ कैसा है। जैसे एक माँ की बात करें, तो एक माँ एक छोटे से बच्चे को एक टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाकर देती है, और वो रोटी बिल्कुल भी एक 5-स्टार होटल जैसी नहीं होती, फिर भी माँ के बनाई हाथ की जो रोटी होती है उसका स्वाद कहीं अधिक होता है उस रोटी से जो आप एक 5-स्टार होटल में खाते हैं। क्यों? क्या ऐसा है जो उसको इतना स्वादिष्ट बना देता है? सोचिए और मनन कीजिए इस बात पर, और हम आगे बात करेंगे। पर पहले ये भजन।

जी हाँ, तो बात हो रही थी कि भाव जो है वो कितना जरूरी होता है और हम क्यों इसे मिस कर देते हैं जब कुछ भी कर रहे होते हैं। तो क्या बाहर बाहर से कुछ भी करने से हमारा अंतर्मन बदलता है? देखिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे वो आरती है, सिमरन है, इबादत है, नाम जप है, कुछ भी ध्यान है, उसका वास्तव में एक ही प्रयोजन है कि हम अपने आप को अंदर से बदल सकें। और अगर अंदर से नहीं बदल रहे हैं तो फिर ये सब करते करते हम घड़ी देखते रहेंगे, और अगर बदल रहे हैं तो आंखों से आंसू बहने लगेंगे। और यही बात उस ऊपर वाले से हमें जोड़ती है जिसे परमात्मा, परवरदिगार या किसी भी नाम से हम पुकारते हैं, और वो हमारी क्रिया देख ही नहीं रहे होते, वो हमारा भाव देख रहे होते हैं। जानते हैं, भगवद गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, जो कहता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदम भक्ति उपार्थम अश्नामि प्रयतात्मना। कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से एक पत्ता, फूल, फल, जल कुछ भी अर्पित करता है, लेकिन प्रेम से करता है, तो वो उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाव अगर है तो उससे आराम से भक्ति हो जाती है, उससे आराम से श्रद्धा मिल जाती है। और ये सिर्फ उस ऊपर वाले से जुड़ने का एक तरीका नहीं है, बल्कि आसपास में जो हमारे हैं उनसे जुड़ने के लिए तो भाव की ही आवश्यकता होती है। ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर बाहर से दिखाते रहें कि हमारा बहुत प्रेम है, लेकिन अंदर से कुछ हो ही ना। तो जब नहीं होगा तो फिर एक रिश्ता बहुत ही बेमानी सा हो जाता है। जब बिना भाव के यहां एक रिश्ता बेमानी हो जाता, तो सोचिए उस ऊपर वाले से जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, उससे प्रेम करने में अगर भाव नहीं होगा।

तो फिर कैसे ही वो रिश्ता पनप पाएगा। और फिर हम कहते हैं कि हम तो बहुत समर्पित हैं, हम तो बहुत प्रेम करते हैं, हमारा तो बहुत विश्वास है, लेकिन कुछ बदलता नहीं। बदल इसी ने नहीं रहा क्योंकि भाव की जो डोर है वो कहीं ना कहीं अधूरी है। अब ये जो भाव हैं ये कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, क्या इनकी भी कोई कैटेगरीज हैं या इनकी भी कोई श्रेणियां हैं, सब जानेंगे। लेकिन साथ साथ अगर भजन हो तो वो भाव अपने आप बनता जाता है।

जी हाँ, तो बात हो रही थी भाव की, और भाव अगर ना हो तो सब चीजें बेमानी लगती हैं। अब देखिए ना, एक बार एक शिष्य ने यही बात अपने गुरु से पूछी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं पिछले 20 साल से माला जप कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो आनंद तो मिलता ही नहीं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों से मैंने सुना। तो जो गुरु थे वो मुस्कुराए और बोले, अच्छा बताओ, अगर कोई व्यक्ति रोज अपनी माँ से कहे कि वो उनसे बहुत अधिक प्रेम करता है, लेकिन कभी उनके लिए समय ना निकाले, कभी उनके सुख दुख में साथ खड़ा ना हो, तो क्या वो प्रेम प्रेम है? क्या उसके कहने के कोई मायने हैं? तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, वो तो केवल कोरे शब्द होंगे। तो गुरु बोले कि ये ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है, कि तुम इसे एक काम की तरह समझते हो, एक संबंध की तरह नहीं। जैसे तुम्हें अपना नाम जब पूरा करना है, तुम्हें आरती पूरी करनी है, तुम्हें ये पढ़ना है, बस ये सब। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब कर क्यों रहे हो? क्या इससे जो जीवंत संबंध तुम स्थापित करना चाहते हो उस ऊपर वाले के साथ, उसके बारे में आगे बढ़ते हुए तुमने अपने आप को देखा है? और अगर देखते तो फिर समय नहीं गिनते। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है तो मिनट नहीं गिनती। जब दो मित्र बहुत सालों बाद मिलते हैं तो घड़ी नहीं देखते। तो फिर हम क्यों इसे पूरा करने की तरह समझते हैं कि एक काम है, इसे पूरा करना है, हर सुबह का एक रूटीन है, इसे निभाना है। जब तक ऐसा रहेगा तब तक जीवन में कोई भी बदलाव कैसे ही आएगा।

जी हाँ, तो बात हो रही थी भाव की, कि अगर भाव नहीं है तो फिर जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बेमानी सा हो जाता है। लेकिन फिर हम अपने आप से पूछते हैं कि हमारे मन में तो भाव आता ही नहीं, तो क्या हम उस ईश्वर परमात्मा परवरदिगार से दूर हैं? पर सोचने की बात यह है कि भाव कभी पैदा नहीं होते, ये तो जगाए जाते हैं, और ये कोई स्विच नहीं है जिसे आप दबाएं और दबाते ही प्रेम उमड़ पड़े। ये तो एक बीज की तरह है जिसे साधना, संगति, स्मरण इनके जल से सींचा जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे की बात करते हैं, तो वो जब जन्म लेता है तो क्या पहले ही दिन अपनी माँ से उसका बहुत गहरा प्रेम हो जाता है? नहीं, जैसे जैसे माँ के स्नेह का वो अनुभव करता है, वैसे वैसे उसका प्रेम स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाता है। और यही बात हमारी इस शाश्वत संबंध के साथ भी है, जिसे हम ईश्वर परमात्मा परवरदिगार के नाम से जानते हैं। और फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि पहले भाव आएगा तो मैं भक्ति करूंगा। लेकिन सभी जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो ऐसा कहते हैं कि पहले श्रद्धा और सेवा जरूरी है, भाव तो धीरे धीरे अपने आप आ जाता है। जानते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी ये यात्रा बताई गई है कि सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। तो भाव कभी भी शुरुआत नहीं हो सकती, भाव तो साधना के साथ साथ अपने आप बढ़ता जाता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज के लिए इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं, पर धैर्य बहुत जरूरी है। और इस धैर्य के लिए हम कैसे अपने आप को समझा सकते हैं, ये भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये प्यारा सा भजन सुनते हैं।

जी हाँ, तो बात हो रही थी भाव की, प्रेम की, और वो एक दिन में उमड़कर नहीं आ जाता। इसलिए हमें बहुत सारा सब्र रखना होता है, मन को शांत रखना होता है। जैसे एक किसान की बात करते हैं तो वो बीज बोकर अगले दिन खेत को खोदता नहीं कि पौधा निकला या नहीं, वो धैर्य रखता है, हर रोज पानी देता है, क्योंकि उसे प्रकृति के नियमों पर विश्वास है। और यही बात अगर हम भाव की करते हैं, भक्ति की करते हैं, तो वो भी ऐसी ही है। जब हम हर रोज थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, और वो नाम जो कभी शब्द था, वो धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मसात होने लगता है, जीने का सहारा बन जाता है, तो भाव अपने आप आ जाता है। इसीलिए अगर आज भाव नहीं आ रहा है तो ये मत सोचिए कि मेरा तो जीवन कैसा चल रहा है, मेरे मन में तो भाव ही नहीं आता। नहीं, धीरे धीरे सब्र के साथ ये अपने आप आने लगेगा। हाँ, ये आएगा कैसे, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे भाव हो सकते हैं, ये हम अभी बात करेंगे इस भजन के बाद।

जी हाँ, तो बात हो रही थी भाव की, और भाव अलग अलग तरह के हो सकते हैं, और उनके बिना किया गया कोई भी काम वो सिर्फ एक रूटीन की तरह है, एक काम की तरह है। इसीलिए जो भी करें मन से करें, और उसी से भाव आता है। और भाव पांच तरह के हो सकते हैं। शांत भाव, जिसमें मन में शांति होती है, स्थिरता होती है। दास्य भाव, जिसमें हम अपने आप को एक सेवक की तरह मानते हैं। साख्य भाव, जिसमें ईश्वर परमात्मा परवरदिगार को आप अपना पक्का दोस्त, एक मित्र मान लेते हैं, जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण की मित्रता थी। वात्सल्य भाव, जिसमें ईश्वर को बच्चे की तरह आप प्यार करते हैं कि आपके बिना तो कोई उनका ख्याल रखने वाला है ही नहीं। और माधुर्य भाव, जो सबसे गहरा है, जैसे एक प्रेमी या जीवन साथी का प्रेम, जैसे मीराबाई का था। तो अलग अलग भाव हमारे हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, पर जरूरी यह है कि जो भी करें उसमें कोशिश करें कि वो इतने मन से हो कि धीरे धीरे भाव अपने आप आने लगे।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

0: वार्ताः
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

7:10 और ठीक 56 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात। गोल्ड सुप्रभात जो हमें ये याद दिलाता है कि हर सुबह हमें एक नया मौका मिलता है और दो रास्ते मिलते हैं। दो रास्ते ये कि एक तो पुराना शिकायतों वाला रास्ता और दूसरा नई नई पॉसिबिलिटीज, नई संभावना वाला रास्ता। तो आज कौन सा रास्ता चुनना है ये घड़ी तय नहीं करेगी, ये आपका नजरिया तय करेगा। और इसी नजरिए को और खूबसूरत बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए हम ले आते हैं गोल्ड सुप्रभात। शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ, और आपको याद दिला दूं मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से और इस प्यारे से गाने से।

आज भी वो आ गए थे 5:27 के आसपास और रह जाएंगे 7:23 के आसपास। और बात करें आज के मौसम की, तो वैसे तो मौसम थोड़ा उमस भरा है, गर्म है। बात करें तापमान की तो 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है अधिकतम तापमान, और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दिन में हल्के बादल छाए रह सकते हैं जो उमस को थोड़ा सा कम करेंगे, गर्मी को कम करेंगे। हल्की बारिश भी हो सकती है, आंधी चलने के भी आसार हैं। लेकिन बाहर का मौसम जैसा भी हो, अगर मन का मौसम अच्छा है तो फिर हर चीज अपने आप ही खूबसूरत लगती है, प्यारी लगती है। और गाने जो है ना, उसके मन के, वो जो हमारे मन के मौसम को ना, वो और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। जैसे बम्बई का बाबू का ये गाना बहुत ही प्यारा है, जितनी बार भी सुनो ना उतना ही अच्छा लगता है।

कई बार ना कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुन के मन अपने आप खिलखिला उठता है, जैसे आशा जी की आवाज में जो गाना सुना रफी साहब के साथ था इसे सुन के। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए ना तो हम पूरा दिन सेम रूटीन में रहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, सुबह उठकर रात को सोने तक एक ही पैटर्न तो रहता है, उठना, फोन देखना, भागना, काम करना, लौटना और फिर वही सिलसिला। लेकिन सोचने की बात यह भी तो है कि जिंदगी कोई टू डू लिस्ट तो है नहीं जिसे सिर्फ टिक टिक टिक करते जाएं। तो आज ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ 5 मिनट ऐसे निकालेंगे जिसमें हम वो काम करेंगे जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, कुछ भी हो सकता है, जैसे

मुझे अच्छा लगता है पौधों को पानी देना, मुझे अच्छा लगता है आसमान को देखना, या बिना वजह किसी से भी फोन पे बात करना, कोई काम नहीं ऐसे फोन मिला लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप करते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए कुछ भी ऐसा जो आपके टू डू लिस्ट में नहीं है, जो आपको करना जरूरी नहीं है, जो आपके पैटर्न का हिस्सा नहीं है, उसे करके देखिए, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगेगा और दिन ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रिफ्रेश सा हो गया है, नया सा हो गया है। जैसे ये गाना बहुत रिफ्रेशिंग है।

जी हाँ, जो गाना था ना, ये गाना इसीलिए सुबह सुबह प्ले किया कि सुबह जो हम गाने सुन रहे होते हैं ना, उससे पैटर्न ब्रेक करने वाला काम कर रहा था। और यही हम बात कर रहे थे कि अपनी लाइफ के पैटर्न्स को जब ब्रेक करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें नई नई निकल के आती हैं। जैसे कुछ भी ऐसा जो आप हर रोज नहीं करते हैं ना, आज कीजिए, 5 मिनट कीजिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज और हम कर सकते हैं, वो है कि किसी और के चेहरे पर एक मुस्कान ले आए, एक धन्यवाद दे दें, या किसी की सच्ची तारीफ कर दें, यानी किसी और का दिन बदल दें। तो कोशिश कीजिए आज कि आप आभार जताएं उन लोगों का जिन्हें अक्सर सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं ऑफिस के बाहर वो, या जो हमारे घर में हमारी हेल्प के लिए आते हैं वो लोग, या ड्राइवर या ऑफिस का सपोर्ट स्टाफ। ये सब के सब ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा लोग उनकी तारीफ नहीं करते हैं, उन्हें देखते हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे या आभार जताएंगे या उन्हें थैंक यू बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। और किसी को सम्मान देने की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि इसे देने से आपका कुछ भी कम नहीं होता, बल्कि आपका व्यक्तित्व जो है वो और बड़ा हो जाता है। तो करके

गाना सुन के अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना कि किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाए तो फिर जिंदगी एक सार्थक मोड पे आ जाए। वैसे हर दिन जिंदगी में जुड़ता नहीं, हर दिन जिंदगी को बनाता है, और यही सोचकर जब हम कुछ भी करते हैं तो वो बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता है। इसीलिए दिन को गुजारिए मत, इसे महसूस कीजिए, सीखिए और किसी न किसी के लिए यादगार बनाइए। फिलहाल आपको याद दिला दें कि अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात पूनम के साथ, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही FM गोल्ड को सुनते रहिएगा।

0: सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
1: गुड मॉर्निंग विशाल एंड टू आर लिसनर्स गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़। वेल टुडे इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट ऑफ जुलाई, एंड वी आर बिगिनिंग विद सो मेनी एस्पिरेशंस एंड पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। एंड ऑन दैट नोट वी आर बिगिनिंग टुडेज प्रोग्राम। वील गिव यू द लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, देर विल बी मेट्रो अपडेट्स ऑल्सो, एंड आर डिस्कशन एक्चुअली आर नेक्स्ट द लास्ट सेक्शन, इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डिस्कशन बिकॉज वी हैव म्यूजिशियंस दैट वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे, सो मेनी म्यूजिशियंस एंड अदर पर्सनालिटीज एज वेल। सो लिसनर्स, दिस इज आवर वे ऑफ टेलिंग यू स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द वेरी एंड ऑफ द प्रोग्राम फॉर रफली हाफ एन आवर नाउ। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
0: जी शगुन, प्रमुख समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: Prime Minister Narendra Modi had a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian yesterday. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce.
0: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने सीमा शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की थी। ये छूट घरेलू बाजार में पेट्रोकेमिकल्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी। छूट के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की सूची पहले की तरह ही है।
1: The house-to-house data verification phase of the census begins across Keralam today as part of the nationwide census exercise. Now let's find out more details from our correspondent.
2: The field verification follows the completion of the self-enumeration process, which ended at midnight yesterday. During the self-enumeration phase, households were able to digitally submit details of family members through the census portal. Residents who completed the online registration are required to provide the self-enumeration identification number to the census enumerator during the household visit. The enumerator will verify whether the information submitted online matches the existing records. If any mistakes are found or if a household has not completed self-enumeration, the enumerator will collect the required information afresh during the visit. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: Now let's tell you about Goa University's 42nd Foundation Day on 30th June yesterday with Padma Vibhushan Anil Kakodkar delivering the Foundation Day lecture on higher education and national development. So addressing the gathering, Dr. Kakodkar said that if India is to emerge as a global leader, it must create skilled manpower across diverse sectors

0: He stressed the need to strengthen education, promote industry-oriented research, and ensure the effective implementation of the national education policy beyond formal adoption. He said education should not only impart knowledge, but also nurture human values and ethics to build a capable and responsible generation. Now, we'll move on to sports.
1: जी खेल खबरों की बात करें शगुन तो भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है. श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा. दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा. तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम में और चौथा 9 जुलाई को ब्रिस्टल में तथा पांचवा और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा.
0: In football, Kylian Mbappe further enhanced his FIFA World Cup legacy to lead France to a comfortable win against Sweden. So in the round of 32 clash, France defeated Sweden 3-0 at New York's New Jersey Stadium this morning to storm into round of 16. Earlier, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, US to advance to the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night.
1: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब कुछ खबरें महानगरों से मेट्रो सिटीज से. और सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2026 आज से लागू होने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है. उन्होंने बताया कि नई नीति में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 30,000 रूपये तक का खरीद प्रोत्साहन जारी रखा गया है. इसके साथ पहली बार पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर 10,000 रूपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा. श्रीमती गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की पहली अप्रैल से दिल्ली में नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में ही किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं की भी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार हमारे स्मारक हमारा गौरव योजना के अंतर्गत दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना और दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना शुरू कर रही है. मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियां, ट्रस्ट, संस्थाएं और इच्छुक नागरिक स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से सरकार के ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगे. श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये सहयोगी स्मारक मित्र कहलाएंगे जो स्मारक पर साफ सफाई, सुरक्षा, लाइट एंड साउंड जैसी पर्यटक सुविधाओं के संचालन का पूरा खर्चा भी स्वयं वहन करेंगे.
0: वी विल नाउ हेड टू चेन्नई. विशाल
1: जी,
0: A special court in Chennai has sentenced V. Pichai, former commissioner of Salem Municipal Corporation, to 3 years of rigorous imprisonment and imposed a penalty of 5,000 rupees in a disproportionate assets case. The Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Chennai Division registered amassing assets beyond his known sources of income during the period from January 1, 1997 to December 31, 2001. Another update from Chennai only. Department of Telecommunications Tamil Nadu License Service Area has achieved a significant milestone in strengthening telecom compliance and consumer protection. During June 2026, nearly 327 BTS audits and 28,000 customer acquisition form audits were conducted. Through the Chakshu module, citizens reported suspected fraudulent and spam communications, enabling coordinated action with telecom service providers.
1: और अब महाराष्ट्र और मुंबई की खबरों का जिक्र कर लेते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेज, अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT शुरू करने का निर्णय लिया है. सामान्य प्रशासन मंत्री आशीष शेलार ने कल विधान परिषद में बताया कि ये कदम वार्षिक भर्तियों में अपेक्षित वृद्धि के कारण उठाया गया है. उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अंकों का मानकीकरण किया जाएगा. प्रख्यात फिल्म और रंगमंच हस्ती विजया मेहता का कल रात मुंबई स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे प्रयोगात्मक मराठी रंगमंच की अग्रदूतों में से एक थीं. हमारी मुंबई संवाददाता से ये रिपोर्ट.
2: विजया मेहता, जिन्हें प्यार से बाई कहा जाता था, उन्होंने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से

0: मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हमीदाबाई ची कोठी, महानिर्वाण, पुरुष, हयवदन और वाड़ा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने राव साहेब, पेस्टन जी, शाकुंतलम और दूरदर्शन धारावाहिक स्मृति चित्रे जैसी फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नाउ लेट्स हेड टू बेंगलुरु। Greater Bengaluru Development Minister Krishna B. Gowda has directed officials to prepare a comprehensive action plan to achieve 100% animal birth control coverage for stray dogs in Bengaluru within the next 3 years. So, reviewing animal husbandry and urban plantation initiatives under the Greater Bengaluru Authority, the minister instructed officials to double the annual number of the animal birth control surgeries. Another update from Bengaluru. Karnataka's Visveswarya Technical University has created a new record by declaring the results of the 6th semester BE and BTech examinations within 5 minutes of the completion of the exam. The university said the evaluation process was completed 21 days earlier than in the previous years, with an overall pass percentage of 76.84. Another update. The Karnataka School Education and Literacy Department has notified the eligibility criteria for the recruitment of computer science teachers in government schools, paving the way for filling 2,500 newly created posts for classes 1 to 8.
2: और अब समाचार कोलकाता से। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के उपयुक्त वन क्षेत्रों में बाघों को पुनर्स्थापित करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय वर्गीकरण शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की। ZSI देश के प्रमुख पशु विविधता अनुसंधान संस्थानों में से एक है। देश में संरक्षण के क्षेत्र में मिली सफलताओं का उल्लेख करते हुए श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कोलकाता लंबे समय से वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र रहा है और ZSI ने एक सदी से अधिक समय से पशु वर्गीकरण, जैव विविधता अन्वेषण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: Hyderabad now. Let's focus on Hyderabad. Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, stated that stronger partnerships between agricultural research and industry will drive India's next phase of economic growth. Speaking at the CSIR, Indian Institute of Chemical Technology in Hyderabad, he emphasized that the country's scientific priorities have expanded from crop improvement to transforming agricultural waste into valuable, market-ready products. So these were the Metro City updates.
2: मेट्रो शहरों की खबरों के बाद अब बात मौसम की, और शगुन दिल्ली NCR के लोगों के लिए तो आज का दिन काफी राहत लेकर के आया है। और दिल्ली में आज मौसम की बात करें तो बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे वहां पर भी, और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
1: Chennai is likely to witness a generally cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between minimum 28 degrees Celsius and maximum 38 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky again with light rain. Minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 39 degrees Celsius in Hyderabad.
2: और श्रोताओं, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। एक ऐसा दिन जो उन सभी डॉक्टरों को समर्पित है जो अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से अनगिनत जिंदगियों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। शगुन, देखा जाए तो डॉक्टर्स जो अपना एक रोल प्ले करते हैं, जो एक भूमिका निभाते हैं।

0: जिंदगियों को बचाने में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में, हमारे देश में हर साल 1 जुलाई को महान चिकित्सक, शिक्षाविद और प्रख्यात समाजसेवी डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन डॉक्टरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है जो दिन रात अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हर परिस्थिति में मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अब चाहे महामारी का कठिन दौर हो, कोई आपात स्थिति हो या फिर रोजमर्रा का उपचार, डॉक्टर अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते हुए मानवता की सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
1: Exactly, this day reminds us of the invaluable role that doctors play in safeguarding the health and well-being of our society.
0: तो आइए इस विशेष अवसर पर हम सभी डॉक्टरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और उनके अमूल्य योगदान को नमन करें। सभी डॉक्टरों को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका समर्पण, सेवा और मानवता के प्रति योगदान सदैव प्रेरणादायक है।
1: Indeed, we are truly grateful. Today, Vishal, it's also National Chartered Accountants Day. We also celebrate it, and this recognizes the invaluable contribution of chartered accountants to India's economic growth and financial integrity as well. This is observed every year on 1st of July, and this commemorates the establishment of the Institute of Chartered Accountants of India in 1949. And for this occasion, let us acknowledge the dedication, professionalism and integrity of chartered accountants whose work actually continues to contribute significantly to India's progress and development.
0: और शगुन बात करते हैं अब देश दुनिया के इतिहास में 1 जुलाई की तारीख पर दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
1: First, let's take our listeners way back in time. In 1863, the Battle of Gettysburg began in Pennsylvania during the American Civil War.
0: आज के दिन 1867 में कनाडा कॉन्फेडरेशन महासंघ के माध्यम से एक स्वशासी डोमिनियन बना। इस तारीख को कनाडा दिवस को भी मनाया जाता है।
1: In 1916, the Battle of Somme began, becoming one of World War's deadliest battles. In 1946, the United States conducted the Able atomic bomb test, the first test of Operation Crossroads at Bikini Atoll.
0: इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में आज ही के दिन अस्तित्व में आया था। और हम सभी जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे पुराना बैंक भी है। 23,270 इसकी शाखाएं, ब्रांचेस पूरे देश भर में हैं। और 63,580 से भी ज्यादा एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूरे देश भर में हैं। और स्टेट बैंक का कारोबार जो है वो 36 देशों में फैला हुआ है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बैंक है ये। और इंपीरियल बैंक का अधिग्रहण किया गया था आज के 1955 में और इसे स्टेट ऑफ बैंक इंडिया नाम दिया गया। और देश के 1/4 बैंकिंग मार्केट पर स्टेट बैंक का कब्जा है।
1: ओह वाओ। In 1963, the US Postal Service introduced the zip code system. In 1974, following the death of Juan Perón, Isabel Perón became the world's first female constitutional president.
0: 1997 में आज के दिन हांगकांग को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने चीन को सौंप दिया, जिससे वहां ब्रिटिश शासन का अंत हो गया।
1: In 2017, India implemented the Goods and Services Tax (GST), introducing the One Nation, One Tax system.
0: और अब बात करते हैं उन व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले बात वीर अब्दुल हमीद की। आज के दिन 1933 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय सेना की 4th ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे। इन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के आसल उत्ताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। शहीद होने से पहले परमवीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय के अजेय समझे जाने वाले अमेरिका में बने पाकिस्तान के पेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया था। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: Well, yes. Due to the grim financial condition of his family, he couldn't study further and had to join his father at his family's tailoring shop. But at the age of 20, he joined the Indian Army and he trained at the Grenadiers.

आज ही के दिन जन्म हुआ था पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार।

0: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी मुरली की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बांसुरी के जादूगर कहे जाने वाले पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी बांसुरी का जादू देश विदेश में बिखेरा। पंडित जी ने बांसुरी के जरिए शास्त्रीय संगीत को तो लोकप्रिय बनाने का काम किया ही, साथ ही साथ संतूर वादक पंडित शिवशंकर शर्मा के साथ मिलकर शिवहरी नाम से हिंदी फिल्मों में मधुर संगीत भी दिया। और जिन फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया उनमें प्रमुख फिल्मों के अगर हम नाम लें तो चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला, फासले, विजय। और इन्होंने वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन और रॉक बैंड बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों के साथ भी काम किया।
1: वाओ, हाउ ग्रेट। सो म्यूजिक इज अ पाथ दैट पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फाउंड फॉर हिमसेल्फ। ही स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स दैट केम हिज वे टू इमर्ज सक्सेसफुल विद हिज शीयर ग्रिट, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, डिवोशन एंड डेडिकेशन।
0: कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

प्रसिद्ध साहित्यकार अमरकांत, इनका भी जन्म आज के दिन 1925 में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं अमरकांत। इनके साहित्यिक जीवन का आरंभ एक पत्रकार के रूप में हुआ, कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक जैसी कहानियों से वे खासे चर्चित हुए। इनकी कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन की पक्षधरता का खूबसूरत चित्रण मिलता है।

सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन और इन्हीं हथियारों से इनके प्रमुख उपन्यास भी रहे हैं। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए ही इन्हें साल 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2009 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी साल इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात की जाए और उस्ताद राशिद खान का नाम न लिया जाए तो ये कैसे हो सकता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने संगीतकार और गायक, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। राशिद खान को हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। उस्ताद राशिद खान ने शुद्ध भारतीय संगीत को हल्की संगीत शैलियों के साथ संयोजित करने का भी बेहतरीन प्रयोग किया। उस्ताद राशिद खान ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा और अगर हम उनकी आवाज का एक नमूना अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहें तो उस्ताद राशिद खान ने कई हिट गाने दिए और जब भी मैट एक फिल्म आई थी उसका एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग आइए सुनते हैं।

0: और आज के दिन जन्म हुआ था हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि, लेखक और संपादक लीलाधर जगूड़ी जी का। लीलाधर जगूड़ी की कविताएं आज के जीवन की व्यथा कथा के अनुभवों को स्पष्ट रूप से वाणी देती हैं। लीलाधर जगूड़ी उन कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अनुभव और भाषा के बीच कविता को जीवित रखा। इनके प्रमुख कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चांद, ये इनका प्रमुख कविता संग्रह रहा है। और पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और पद्मश्री सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
1: वेल टुडे इट्स आल्सो सुदेश भोसले'स बर्थडे, द प्लेबैक सिंगर, वॉइस एक्टर, लाइव परफॉर्मर, यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड एज द आइकॉनिक वॉइस बिहाइंड अमिताभ बच्चन'स मोस्ट एनर्जेटिक म्यूजिकल ट्रैक्स। ही कार्व्ड आउट अ यूनिक लेगेसी बाय ब्लेंडिंग पावरफुल वोकल्स विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉइस मॉड्यूलेशन।

0: तो आज सवेरे में आज बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
1: Well, we thank you so much, listeners, for tuning in. Namaskar.

0: भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
4: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
5: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
6: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
5: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
7: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। इसमें

0: एम पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है, एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Nareka. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

0: और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। अब खबरें तफसील से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि इस कानून से जिसमें हर माली साल में 125 दिन के उजरत वाले रोजगार की गारंटी दी गई है, देही भारत बाइख्तियार बनेगा। हमारे नवनिगार ने बताया है कि मुल्क भर में नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रवा माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील हमारे नवनिगार से।
1: वीबीजी रामजी कानून ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून एमजी नरेगा 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का मकसद गारंटी वाले रोजगार में इजाफा करना है। इस कानून के तहत माली साल में अब तक 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब से 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी वाले रोजगार में इस इजाफे का मकसद देही तरक्की की रफ्तार में तेजी लाना, मजीद आमदनी की यकीन दहानी करना और देही घरों को बाइख्तियार बनाना है। इस कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेही पर मबनी उजरत की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। इस नए कानून के तहत ये सहूलत फराहम की गई है कि अगर किसी को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर काम फराहम नहीं किया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विकसित भारत जी रामजी कानून एक जामे फ्रेमवर्क है जिसे 2047 तक विकसित भारत के कौमी तस्वूर के मुताबिक देही रोजगार फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी ताम रखते हुए सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तयाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निजाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी कानून 2025 के लिए गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है जो आज से लागू हो गया है। देही तरक्की की वजारत की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रूपये रोजाना की उजरत आरजी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। एमजी नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298.80 रूपये थी, जिसे अब वीबीजी रामजी के तहत 327.40 रूपये रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकीलती तालीमी इतारे अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों के जेरे निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजान सिंह ने कहा कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीम शुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारे अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे ताकि तलबा कौमी तालीमी मयारात के ऐन मुताबिक पढ़ाई कर सकें।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं, सिख भी है तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
0: सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहिदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरमू जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अता करेंगी जिन्होंने अंडर

0: ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अता करेंगी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉ मसूद पेजिशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगू के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात और वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदाम से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमद और रफ्त के तहफ्फुज़ नीज तिजारत के लिए कोशिशें जारी रखे जाने की जरूरत दोहराई। ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमन इस्तेहकाम और इलाकाई इश्तराक की हिमायत करने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ाती रोल की सदाइश भी की। इधर भारत में ईरान के सिफारतखाने के मुताबिक इस बातचीत में सदर पेजिशकियान ने भारत में ब्रिक्स के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग की मेजबानी और इसकी कामयाब मंसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मोहतरमा तकाईची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफेन को इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, नीज आजादी, जमहूरियत और कानून की अमलदारी के तई एहतराम की मुश्तरका अकदार पर मबनी है। एक रिपोर्ट।
1: भारत जापान बाहमी ताल्लुकात को 2014 में खुसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। अब जबकि दोनों मुल्क अगले साल अपने सफारती ताल्लुकात के कयाम को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी सिक्योरिटी, दिफा, साइंस टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के राबते भी शामिल हैं। भारत जापान जाम इक्तसादी साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को नाफिज हुआ था। इधर साल 2025-26 के दौरान बाहमी तिजारत 27 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गई। जापान भारत में सरमायाकारी करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। जापान ने अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के दरमियान 48 अरब 17 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। सकाफती इश्तराक भी काफी मजबूत है और जापान ने योग समेत भारतीय सकाफत में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर आयद महसूल की शरों में तब्दीली की है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रूपये फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रूपये होगा जबकि पहले यह महसूल 14 रूपये था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रूपये से कम करके 7.5 रूपये कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब यह बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंतजामी इसलाहात और अवामी शिकायत के महकमे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत नीज राजस्थान सरकार ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत 2047, मसनूई जहानत और डेटा पर मबनी महफूज डिजिटल हुक्मरानी। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के कई इकदाम और इख्तियार का आगाज किया जाएगा। फिल्म थिएटर की मारूफ शख्सियत विजय मेहता का कल रात मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 92 साल की थी। उनका शुमार मराठी तजर्बाती थिएटर के

0: दिन में होता था। फुटबॉल में न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज सुबह खेले गए मैच में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की तरफ से किलियान एम्बापे ने 2 गोल किए, इस तरह वो वर्ल्ड कप में 18 गोल कर चुके हैं और अब वो लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। इससे पहले टेक्सास में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1-2 से हरा दिया और इस तरह नॉर्वे भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब इतवार की रात को प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में रिवर साइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेर कमान भारतीय टीम गुजश्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ओवल मैदान पर ही कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम ने आमने सामने होंगी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लगने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बंदीकुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। यह बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के बकिया हिस्सों उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली समेत 5 रियासतों में SIR का अमल शुरू, महाराष्ट्र कर्नाटक मेघालय और झारखंड में होगा SIR। अखबार की बैन अलाक्वामी सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब मुनकिद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्रे आजम।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है जो मौजूदा MG नरेगा की जगह लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 और ठीक 56 सेकेंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है म्यूजिकल दिल लगी। तो म्यूजिकल दिल लगी यानी वो समय जब किसी ने आप में से ऑफिस की कुर्सी संभाल ली है, कोई मेट्रो में है, कोई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा है, तो कोई आज की टू डू लिस्ट देख कर गहरी सांस ले रहा है। इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ के ऐसे कौन कौन से लोग हैं। तो ऐसा जब हम सोचते हैं तो ये दिमाग में आता है कि हर दिन हम काम पर तो जा रहे होते हैं, लेकिन क्या अपने सपनों को भी जी रहे होते हैं, या सिर्फ पूरा दिन काम में बिता देते हैं और सपने जो हैं वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं, और तब दिन भर बिजी रहने के बाद शाम को लगता है कि अरे आज तो कुछ खास किया ही नहीं। वजह कुछ भी हो सकती है, काम बहुत ज्यादा था, बिजी थे ये, या फिर एक डायरेक्शन नहीं थी हमारे पास, दिशा की कमी थी ये। तो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप इस वक्त जब सुन रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि आज अगर जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, सबसे इम्पोर्टेंट डे है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, और ये सोचकर ये सोचिए कि उस काम को करने में क्या चीजें हैं जो अड़े आ रही हैं। मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वागत आप सभी का दिल से, और लता जी के गाए हुए इस प्यारे से गाने से।

जी हाँ, प्यारा सा गाना और ये याद दिलाता हुआ कि जिंदगी तो यूं ही चलती जाती है, बेशक हम उसके साथ साथ चलें या फिर उससे दूर होके चलें, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हम इसके साथ साथ चल रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी खुद को आराम नहीं देते। जबकि मोबाइल की बैटरी अगर खत्म होने लगी है तो उससे पहले ही उसे चार्ज कर लेते हैं। अब ये बात आपसे क्यों की, क्योंकि सुबह सुबह तो बड़े एंथुजियास्टिक हैं आप, उत्साह के साथ भरे हुए हैं, लेकिन दोपहर आते आते शरीर जो है वो तो ऑफिस में रहता है लेकिन मन कहीं और भटकने लगता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में ये जरूरी है कि आप हर 60 से 90 मिनट के बाद एक दो मिनट का माइक्रो ब्रेक लें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका फोकस भी बढ़ेगा। तो खिड़की से बाहर देखिए, थोड़ा सा चलिए, पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए, एक दो मिनट किसी से बात कर लीजिए। ये जो टाइम है ना, ये आपके समय को छीनने वाला नहीं है, बल्कि आपके अगले घंटे की प्रोडक्टिविटी या गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है। इसलिए जरूरी यह है कि ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, इन्हें आप करते रहें और ऐसे ही करते करते बहुत कुछ ऐसा करते जाएं जो जिंदगी को जिंदगी से जोड़ता है। जैसे ये प्यारा सा गाना।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल लगी पूनम के साथ। अब बात हो रही थी सुबह की कि हम सुबह सुबह ऑफिस निकलते हैं, बहुत सारा काम करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो रोज रोज ऑफिस जाते हैं और काम करते हैं जिससे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता है, इसके साथ साथ एक और बैलेंस है जिसे बढ़ाने की जरूरत है और वो है रिलेशनशिप बैलेंस। तो ये लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बैंक बैलेंस के साथ साथ रिलेशनशिप बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश भी कीजिए और उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक छोटा सा संदेश या एक फोन कॉल कि कैसे हैं आप। अगर इतना सा भी आप किसी से पूछ लेते हैं ना तो उसका पूरा दिन खूबसूरत बन जाता है। सोचने की बात है कि रिश्ते बड़ी बड़ी चीजों से बनते हैं ये हम सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली होता यह है कि छोटी छोटी निरंतर कोशिशों से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। तो फिर एक ऐसी कॉल आज आपको करनी है उस इंसान को जिससे बात हुए हुए बहुत दिन हो गए हैं, कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। हो सकता है कि आपकी दो मिनट की बातचीत उनके चेहरे पर पूरे दिन की मुस्कान का काम करे, क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ा उपहार समय होता है और ये समय ही तो कम पड़ जाता है। देखिए अब हमारे पास समय कम पड़ गया है, ये समय टिक टिक करके बता रहा है कि म्यूजिकल दिल्ली का ये सफर यहीं तक। पूनम तुझे जाना है क्योंकि अब न्यूज सुनानी है ना, देश विदेश की खबरें जानेंगे हमारे जो लिसनर्स हैं वो, और उसके बाद म्यूजिकल दिल्लगी का सफर आगे जारी रहेगा, लेकिन पूनम साथ में नहीं होगी। तो प्लीज आप अभी न्यूज सुनिए, उसके बाद म्यूजिकल दिल्लगी सुनिएगा और म्यूजिकल दिल्लगी में आपके साथ होंगी अंशु। फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा

के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को अब समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान एक नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर सनदी लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थीं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। ताजा समाचार मिलने तक मैक्सिको 2-0 से आगे है और राउंड 32 में मैक्सिको तथा इक्वाडोर के बीच मुकाबला चल रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। जी हाँ, आपने ट्यून किया है 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। समय हो चला है 9:11 और देखिए, ये जो समय है ये इशारा दे रहा है कि वक्त शायद हम में से बहुत लोग इस वक्त मेट्रो में सफर कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने ऑफिस की लिफ्ट का इंतजार कर रहे होंगे, कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होंगे, कुछ लोग अपनी डेस्क पर बैठकर पहली अपनी सुबह की कप में चाय या कॉफी के साथ में अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर रहे होंगे, है ना। तो जहां भी हैं आप, जैसे भी हैं, उम्मीद है कि सुबह आपकी एक मुस्कुराहट और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में शुरू हो गई होगी। और पॉजिटिव तो वैसे भी रहना चाहिए, लेकिन उससे पहले म्यूजिकल दिल लगी में आपका मैं फिर से अंशु अग्रवाल एक बार स्वागत करती हूं, और लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत से हम शुरुआत करेंगे।

जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर जी की आवाज में फिल्म अभिमान से। तो बिल्कुल सच कहा है किसी ने कि अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। और वाकई जब हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढना शुरू कर देते हैं, जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं ना दोस्तों, तो वाकई हमें अपने से ज्यादा दूसरों की खुशी, दूसरों की सहमति से बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। और देखिए ना, कभी कभी एक अच्छा गीत कैसे पूरे दिन का मूड बदल देता है, जैसे कि किशोरदा की आवाज में ये आने वाला अगला गीत।

जी हाँ, आने वाला पल भी जाने वाला है। वाकई बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो वक्त, जो पल, जिस सफर पर आप चल रहे हैं, जो वक्त आपके हाथ में है, जो वक्त में आप जी रहे हैं, बस उसे अच्छे से इंजॉय कीजिए, क्योंकि आगे क्या होना है वो किसी को भी नहीं पता। और उसकी चिंता में भविष्य को सोचकर आप अपने वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो ये गीतों का सफर है ना, ये सबसे सुहाना होता है। तो वक्त है एक और ऐसी ही एवरग्रीन खूबसूरत नगमे का। थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, मुस्कुराइए, और अगर पॉसिबल हो तो इस गाने को आसपास के लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए।

जी हाँ, मौसम तो आज वाकई सुहाना हो चुका है। हम देख सकते हैं जो मौसम ने एकदम से करवट ली है ना, कल रात हुई थोड़ी सी झमझमाती हुई बारिश ने आज सुबह सभी के दिल पर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है ना। तो मौसम का वाकई हमारे मन पर, हमारे काम पर, हमारे पूरे दिन पर बहुत फर्क पड़ता है। आइए म्यूजिकल दिल लगी में लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज में एक और गीत जो हमारी जीवन को, हमारी जीवन की सच्चाई को बयां करता है और हमें हर बार कुछ सिखा जाता है।

जी हाँ दोस्तों, जब आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा साथी मिल जाता है, और साथी कोई भी हो, चाहे वो साथी आपका दोस्त हो, आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, ज़िंदगी में एक ऐसा साथी होना बहुत ज़रूरी है जिसे आप अपने दिल की, अपने मन की बात बिना सोचे समझे कर सकें। और वो साथी जब मिल जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि वाकई आपकी ज़िंदगी अब और आसान बन गई है। एक और गीत आपके लिए लता मंगेशकर जी की और रफ़ी जी की आवाज़ में।

दोस्तों हम सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। जी हाँ, और आज जो तारीख है वो है 1 जुलाई, और ऐसे में हम सभी को पता होना चाहिए कि आज से लेकर अगले सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम सभी मिलकर मना रहे हैं वन महोत्सव। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे भी है, तो बहुत ही बधाई जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अगला गीत आपके लिए।

दोस्तों ये कौन चित्रकार है? और देखिए ये जो चित्रकार है ये हम सभी जानते हैं, और क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ हमें छाया देने के साथ साथ और क्या क्या देते हैं? देखिए छाया तो देते ही हैं, ये जो फ्री की हम सांस लेते हैं, ये जो बारिश आती है, धरती को जीवन देता है पेड़। और ये जो एक सप्ताह का आज से शुरू हुआ 7 जुलाई तक जो हम वन महोत्सव मना रहे हैं, ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का है।

दोस्तों, जब भी जिंदगी में मुश्किल का मोड़ आता है, तब हम सभी जानते हैं, जब भी कोई परेशानी होती है और हमारा स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहता है, तो एक डॉक्टर ही ऐसा शख्स होता है जो हमारी जिंदगी में हमारी उम्मीद बनकर आता है ना? ऐसे में आज का दिन हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोग मना रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के महान चिकित्सक और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी की आज जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो एक बार फिर से आकाशवाणी की तरफ से सभी डॉक्टर्स, नर्स और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हम सभी का ख्याल रखते हैं, उनको सादर नमस्कार और सादर नमन करते हैं हम।

कार्यक्रम है म्यूजिकल दिल लगी। जी हाँ, जहां संगीत की बात होती है, साहित्य और कला की बात होती है, वहां दिल की बातें तो अपने आप ही होती हैं। क्योंकि संगीत, साहित्य, कला हमारे समाज का वो अभिन्न अंग है जिसके बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बेहद खूबसूरत गीत हमने सुना और वाकई मेरे दिल के बहुत ही करीब था ये गीत। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, बस आंखों को बंद कर लीजिए और इस गीत को महसूस कर लीजिए। ऐसा लगता है कि पूरे दिन की थकान उतर गई है, लेकिन ये दिन तो अभी शुरू हुआ है, तो थकने का काम नहीं है, बस आगे चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। यही गीतों के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है और जीवन का सार भी तो यही है।

0: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपनी दोस्त होस्ट अंशु अग्रवाल को। ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ, ये कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिकल दिल लगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी का जो सफर है वो मंजिल से ज्यादा उन अनुभवों का नाम है जो हमें हर दिन हर पल कुछ नया सिखाते हैं। और वाकई अगर जिंदगी की हम बात करें तो यहां गिरना भी है, गिरकर फिर संभलना भी है, मुस्कुराना भी है और फिर आगे बढ़ जाना है। ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहचान है। लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं दिल उदास होता है। मन ये कहता है कि क्या हो रहा है, हम जिंदगी से परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो धैर्य है, ये जो एक वाक्य है, ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये जिंदगी का सार है जो हमें हमेशा अपने मन में संजो कर रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कहा करते हैं ना कि जिंदगी में कहीं धूप है तो कहीं छांव है, और कभी खुशियों की महफिल सजती है तो कभी इम्तिहानों से रूबरू भी करवाती है। और वो इम्तिहान होने जरूरी हैं क्योंकि वो आगे आने वाली जिंदगी में आपको मजबूत बनाती हैं। अगर ये छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी परिस्थितियां नहीं आएंगी तो हम जिंदगी में कमजोर बन जाएंगे, ताकि आगे आने वाले जो वक्त है हम उसके लिए तैयार हो सके। तो ये था कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी, जहां दिल से हमने म्यूजिक को सुना और एक दूसरे से इसको संप्रेषित किया। और अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने

0: का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
1: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाड़ा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता त्रिका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रूपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवां और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. As the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 came into force today, Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan termed the occasion a historic milestone. In a social media post, Mr. Chauhan said, "The Act marks a new chapter in ensuring dignity, self-respect and secure livelihoods for millions of rural workers." He said the Act provides rural families with a statutory right to 125 days of employment. Expressing confidence in the initiative, Mr. Chauhan said it will create new livelihood opportunities in villages, accelerate the creation of sustainable assets, empower women and give fresh momentum to the vision of a self-reliant rural India. Oil marketing companies have reduced the price of a 19-kilogram commercial LPG cylinder by 183.50 rupees today. According to Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders have come into effect from today. After the reduction, new rate for 19-kilogram commercial LPG cylinder price in Delhi has been slashed to 2,930 rupees. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business.

0: के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। भारत के साथ संबंध और सशक्त बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक विरासत और परस्पर आदर सम्मान पर आधारित हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
1: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वित्तीय सेवा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाकर भारत और ग्रीस के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ग्रीस के आर्थिक और वित्त मंत्री किरियाकोस पियरकाकिस के साथ मुलाकात में दोनों पक्षों ने साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत और ग्रीस के संस्थानों के बीच गहरे सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल ने ग्रीस के अवसंरचना और परिवहन मंत्री क्रिस्टोस डिमास के साथ भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने अवसंरचना, परिवहन संपर्क, समुद्री क्षेत्र, विमानन और सतत मोबिलिटी में भारत ग्रीस के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कल संयुक्त रूप से भीषण गर्मी और कृषि नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ता तापमान और भीषण गर्मी कृषि खाद्य प्रणालियों में खाद्यान्न उत्पादन और आय को कम कर रही है। इस प्रणाली पर 1 अरब 23 करोड़ लोग निर्भर हैं। साथ ही इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि जब गर्मी के साथ साथ सूखा जैसी अन्य आपदाएं जुड़ जाती हैं तो कृषि उपज का नुकसान 3 गुना तक बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीषण गर्मी कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में उभर रही है। वेनेजुएला में भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,943 हो गई है। लगभग 10,571 लोग इस त्रासदी में घायल हुए हैं। वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि भूकंप के बाद पहले 2 दिन में 5,380 लोगों को बचाया गया, लेकिन सोमवार को अधिकारियों को केवल 4 लोग ही जीवित मिले। आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए 25,000 से अधिक दमकलकर्मी, बचावकर्मी, पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी लगे हैं। दक्षिण अमरीका के वेनेजुएला में 25 जून को भूकंप के 2 तेज झटके आए थे और इन झटकों के बाद काराकास में कई इमारतें गिर गईं, जिनका असर वेनेजुएला की आबादी के एक बड़े हिस्से पर पड़ा है। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमरीकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ट्रंप बनाम बारबरा मामले में न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा

कि यह आदेश अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। नेपाल में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद कावरे पानलचोक में 40,000 से ज्यादा बत्तखों और मुर्गियों को मार दिया गया है। इस संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रसार रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। धुलीखेल स्थित जिला पशुधन कार्यालय ने व्यावसायिक फार्मों में 40,000 से ज्यादा

0: सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति हुसैन अली मुविनई ने कल तंजानिया में भारतीय उच्चायुक्त विश्वदीप डे के साथ भेंट में जंजीबार के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। तंजानिया के राष्ट्रपति ने जंजीबार में स्टेट हाउस में उच्चायुक्त विश्वदीप डे का स्वागत किया। उन्होंने विशेषकर निवेश, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की अहम भूमिका की सराहना भी की। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको इक्वाडोर को हराकर अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। अब रविवार को नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। उधर मोरक्को, पैराग्वे और कनाडा भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। उधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे स्टर्ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से पराजित किया। रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। कल ओवल में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। हॉकी की बात करें तो भारत ने बेल्जियम दौरे के लिए 21 वर्ष से कम उम्र की पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। ये मुकाबले 5 से 18 जुलाई तक खेले जाएंगे। ये दौरा इस वर्ष के आखिर में होने वाले FIH जूनियर एशिया हॉकी से पहले तैयारियों का अहम चरण होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुनील वर्मा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Rising temperatures and extreme heat are reducing food production and incomes in agri-food systems of the world, says UN report. In FIFA World Cup, Mexico advanced to round of 16, beating Ecuador 2-0. France also entered round of 16, beating Sweden 3-0. And India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England tonight. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation with the Iranian President, Dr. Masoud Pezeshkian, yesterday. During the conversation, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. The Iranian President also appreciated Prime Minister Modi's personal role in supporting peace, stability and regional cooperation during their telephonic conversation. According to the Embassy of Iran in India, during the conversation, President Pezeshkian expressed his satisfaction with the successful planning and hosting of the BRICS

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल आपका स्वागत करती हैं। समय हो चला है 10:31 और ये जो समय है दिल का मेल बॉक्स। जी हाँ, जहां आपकी पसंद हम तक पहुंचती है, आपकी फरमाइशों के गीत आप हम तक पहुंचाते हैं। तो जल्दी से कैसे जुड़ सकते हैं, आपकी फरमाइशें हम तक कैसे पहुंच सकती है, नोट कीजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldairdelhi@gmail.com। और देखिए, हमने मेल आईडी बताई है और आपकी फरमाइशों के पिटारे हम तक आने शुरू हो गए हैं। तो फरमाइश आ रही है, जल्दी से हम आपके नामों को यहां पर सम्मिलित करते हैं। ताज मोहम्मद जी हमें लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, कोई भी गीत सुनवाकर हमारे नाम को शामिल कीजिए। जी बिल्कुल। सतीश अनेजा जी लिखते हैं, नमस्कार, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंटेशन विच एनहेंसेज द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर। सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म से ये गीत। जी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन नाम पहले मैं ले लूं आपके। तुलसी जी कार्यक्रम में जुड़ी हैं, जय, राजू मिगलानी जी, साथ ही धर्मेंद्र छिपा जी हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार हमें मेल प्राप्त हो रहे हैं। बौद्ध राज खोरवाल जी भी जुड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का ये गीत पहले हम शुरू करेंगे लता मंगेशकर जी की आवाज में, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना है और मोस्टली मैं देख पा रही हूं जितने भी मेरे पास मेल्स आ रही हैं वो मौसम से रिलेटेड ही आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए, गीत आपको सुनवा रही हूं मैं ये मौसम के ऊपर, सावन के ऊपर, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहली बारिश इस सावन के महीने में आती है, उससे जुड़ी कोई खूबसूरत याद आप हमसे साझा करें।

जी हाँ, सावन का महीना बस शुरू हो ही गया है या होने वाला है, क्योंकि आज मौसम को देखकर तो हमें आभास हो गया है कि भाई सावन आने वाला है। जी हाँ, ऐसे में जो मेरा सवाल था कि पहली बारिश में आपको अपनी जिंदगी का कौन सा किस्सा याद आया। देखिए, हमसे हमारे जो लिसनर्स हैं वो जुड़ चुके हैं, सुनना चाहते हैं एमओ फरमान जी, कोई भी गीत, सीताराम जी, तुलसी मस्कीन जी और अनु जी, कमल जी, संदीप जी, मल्होत्रा संदीप जी, और साथ ही हमें लगातार मेल प्राप्त हो रहे हैं मोहम्मद कलीम अंसा जी का और सुमेरा प्रवीण जी। जो मैंने पूछा था, सुमेरा प्रवीण जी मुझे लिखते हैं कि हम वो सावन की पहली बारिश को कैसे भूल सकते हैं जब हम मोटरसाइकिल से गिरते थे, चोट के निशान आते थे, तो वो बारिश उनको याद दिलाती है। जी बिल्कुल, वो जो बचपन की यादें हैं ना बारिश की, उसकी बात ही अलग है। बारिश की बात चल रही है, मौसम मानसून का है, सावन का है, तो आइए एक और गीत आपके लिए इसी पर।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं रोशन लाल देवांगन जी, कौशल्या जी, हेमलता डिंपल जी, सब परिवार कार्यक्रम सुन रहे हैं और लिखते हैं कि आपकी प्रस्तुति अच्छी चल रही है और गीत का जो चयन है वो इन्हें पसंद आ रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। डीके जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, बरसात की भीगी हवाओं में सावन का समा छाया है, हर बूंद जैसे आज फिर एक नया तराना सुनाया है जी। उत्तम नगर से हमारे साथ जुड़े हैं और एसपी गोयल जी, हाय हाय रे ये मजबूरी गीत सुनना चाहते हैं। रोहिणी दिल्ली से सत प्रकाश गोयल जी हमसे जुड़े हैं और जल्दी से देखते हैं कौन है। भारत भूषण जी जुड़े हैं, लिखते हैं, नमस्कार अंशु अग्रवाल जी, अभी वैसे तो सावन आता नहीं ले आया जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, सावन आता नहीं है ले आया जाता है, लेकिन जो भी है सावन की सुगंध, सावन की खुशबू, सावन की मिट्टी की जो सुगंध है वो हम मना सकते हैं क्योंकि आज मौसम हमें कहीं ना कहीं ये आभास दिला रहा है। तो अगला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि बारिश का मजा सबसे ज्यादा कहाँ आता है? खिड़की के पास बैठकर चाय पीने में आता है या फिर भीगते हुए लंबी सैर में कहीं किनारे पर रुककर गर्मा गर्म समोसे और चाय पीने का आता है?

कार्यक्रम में बबलेश पनवार जी हमसे जुड़े हैं और लिखते हैं कि बचपन की बारिश हमें याद आती है, कागज की वो नाव बनाना, पानी में उनको तैराना याद आता है आज भी मुझको, बचपन का वो सावन सुहाना। वाह क्या बात है जी, बिल्कुल आपकी बात सुनकर तो मुझे भी बचपन की याद आ गई है। और सच में जब हम बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगता है। और गुरजोत सिंह खालसा जी का हमें आया है मेल, लिखते हैं कि बारिश का मजा विंडो के पास सिर्फ बारिश को देखने में महसूस करने में आता है। जी ठीक है। डीके जी का आया है कि प्रोग्राम के नखों में अच्छे लग रहे हैं, कृपया हमारा नाम भी शामिल कीजिए। जी बिल्कुल, उत्तम नगर से आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बासी जी हमें लिखते हैं कि चाय पकौड़ों के साथ बारिश का मजा कुछ और ही है, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल, ये आपने मेरे मन की बात की है। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांति नगर सोनीपत से और लिखते हैं बारिश का मजा सबसे अधिक बालकनी में बैठकर बारिश को देखने में आता है। तो ठीक है, सबके अलग अलग विचार है, किसी को बारिश को देखने में मजा आता है, किसी को बाहर निकलकर सैर सपाटे में मजा आता है।

जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। फारूक अली खान जी हमें लिखते हैं, बारिश का असली मजा वो आम के बागों में आता है जी। और भागवत वर्मा जी हमसे जुड़े हैं, एफएम गोल्ड सुन रहे हैं सब परिवार। रुद्र वर्मा जी, विनीता जी, लीलावती जी, शांति देवी जी और भागवत जी आप साथ में हमसे जुड़े हैं। अनवर सबरी जी सब परिवार, शन्नो, मुद्दस्सिर, मुजफ्फर और जरीफ जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और लिखते हैं कोई भी गीत अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं। साथ ही लखपत जी भी हमसे दिल्ली से जुड़े हैं, आनंद पर्वत से, और सपरिवार जुड़े हैं। देखिए बहुत खुशी होती है जब आप सपरिवार जुड़ते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो कार्यक्रम है और एफएम गोल्ड जो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो वाकई ही खरा सोना है। वो खरा सोना इसलिए है कि आप अकेले नहीं, सब परिवार हमसे जुड़ रहे हैं, तो परिवारों को और आपस में जोड़ने का भी काम कर रहा है ये कार्यक्रम, तो बहुत खुशी होती है। अगला गीत आपके लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज में। चलते चलते एक शब्द में जरा बताइए आपके लिए जिंदगी के क्या मायने हैं, जिंदगी क्या है।

जी हाँ दोस्तों, दिल का मेल बॉक्स जहाँ आपकी फरमाइशें हम तक पहुँचती हैं। और मेरा जो सवाल था कि जिंदगी आपके लिए क्या है, देखिए फारूक अली खान जी और हमसे जुड़े हैं महेश अग्रवाल जी, प्रकाश जी, DKP परिहार जी और साथ ही भगवती सिंह जी भी हमसे जुड़ी हैं और लिखते हैं कि जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, सेहत का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। और संदीप जी लिखते हैं कि जिंदगी में हमेशा खुश रहना और सभी का भला सोचना, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात कही। हम खुश तो रहना है, लेकिन खुशी में हम अक्सर ये सोचते हैं कि बस हम खुश हैं तो हमें दूसरों से क्या लेना है, लेकिन नहीं, खुशी का मतलब ये है कि जब हम दूसरों को भी खुशी दें, हम काम ऐसा करें कि दूसरे भी हमसे खुश हों या दूसरे हमसे इंस्पायर हो और समाज में, सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करें, तो खुशियां खुद भी हम रहें और खुशियों को हम बांटें भी। साथ ही लगातार हमें मेल प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अभी हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर हैं क्योंकि 11 बजने को हैं बस, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और मैं आपसे फिर जुड़ूंगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। 11:10 पर आज भारत भ्रमण में हम आपके लिए कहां लेकर जाएंगे आपको अभी बता देती हूं। चलिए आज हम जाएंगे मेघालय चेरापूंजी में। जी हां, तो कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं और कब जा सकते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको तस्वीर कार्यक्रम में देने वाली हूं। जुड़े रहें और अच्छे अच्छे पुराने नगमे गीत तो आपके लिए होंगे ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू होंगे। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांवों में आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे, परिसंपत्ति सृजन की गति तेज होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजिश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री

0: श्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रो केमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरकार देश के विनिर्माण क्षेत्र की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर को लाभ होगा। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रूपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान से जुड़े व्यवसायियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma.

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल और समय हो चला है 11:11। और आज भारत भ्रमण में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम निकल पड़े हैं चेरापूंजी, जो कि मेघालय में है। जल्दी से आपको बताते हैं, लेकर चलेंगे, इतिहास को जानेंगे, कहाँ घूम सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, कौन से मौसम में जाया जा सकता है, ये सारी जानकारी आज के इस तस्वीर कार्यक्रम में मैं आपको देने वाली हूं। तो आपको लेकर चल रहे हैं भारत के उत्तर पूर्व में बसे एक ऐसे स्वर्ग में, जहां बादल धरती को छूते हैं, झरने संगीत सुनाते हैं और हरियाली आंखों को सुकून देती है। इस खूबसूरत जगह का नाम तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन ये भी बता दें कि इसे स्थानीय भाषा में सोहरा भी कहा जाता है। आगे और बातचीत करेंगे। मुझे पता है आपके मन में अभी ये आ रहा है कि जल्दी से वहां पहुंचे, तो कैसे पहुंचना है ये बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

जी हाँ दोस्तों, ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ? हमें तो पता है, हम पहुंच चुके हैं चेरापूंजी, लेकिन पहुंचे कैसे, यही तो सवाल है। चलिए, आपकी इस दुविधा का हल लेकर मैं आ गई हूँ। अगर आप हवाई मार्ग से प्लान कर रहे हैं जाने का, तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा आपको पड़ेगा शिलोंग और गुवाहाटी का। गुवाहाटी से शिलोंग लगभग

शिलोंग से चेरापूंजी अगर आप जाते हैं वहां पर तो करीबन आपको 54 किलोमीटर की दूरी पर यह मिलेगा। शिलोंग से अगर हम बात करें तो टैक्सी या साझा कैब की वहां पर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। और सच मानिए दोस्तों, रास्ता इतना खूबसूरत है कि सफर कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप रेल से अपनी यात्रा को प्लान कर रहे हैं तो रेल के लिए गुवाहाटी का सबसे निकटतम बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो गुवाहाटी उतरकर आप रेल के माध्यम से इस खूबसूरत जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ये हो गई जानकारी कि कैसे पहुंचा जा सकता है। और मुझे पता है कि ये जानकारी लेने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि बस कहीं दूर निकल जाएं।

तो दोस्तों, दूर तो हम निकल आए हैं और निकलते निकलते हम पहुंच चुके हैं चेरापूंजी, जो कि मेघालय में है। अब बात आती है कि पहुंच चुके हैं और या कुछ लोग अगर पहुंचने वाले हैं या कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमें वहां पर जाना है, टिकट करवानी है, लेकिन कब जाएं, कौन से मौसम में जाएं, बहुत बड़ा सवाल है। क्या गर्मी में जाएं तो गर्मी लगेगी, बारिश के मौसम में जाएं तो बारिश होगी, तो कौन सा महीना आपके लिए वहां जाने के लिए सबसे बेहतरीन है? अगर आप हरियाली, बादल और झरने का असली जादू देखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौसम रहने वाला है और सबसे अच्छा महीना जून से सितंबर तक का महीना सबसे बढ़िया है। हालांकि इस दौरान थोड़ी बहुत वहां बारिश रहती है, लेकिन आराम से आप घूम सकते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो भी मौसम बहुत ही सुहावना रहता है और आप प्लान कर सकते हैं अक्टूबर से अप्रैल के महीने में।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु अग्रवाल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तस्वीर। भारत भ्रमण करते हुए आज हम पहुंचे हैं मेघालय में चेरापूंजी में। तो हमने अपनी टिकट्स बुक करवा ली हैं क्योंकि हमें यह पता लग चुका है कि हमें वहां कब जाना चाहिए, कौन से महीने में, कौन से मौसम में हमें वहां पर जाना चाहिए। लेकिन अब आप पहुंचने के बाद आखिर कहां कहां घूमें, जल्दी से नोट कर लीजिए और एक अच्छी सी आइटनरी बना लीजिए। तो कहां घूम सकते हैं, सबसे पहले आप वहां जाएं तो भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल को देखना ना भूलें। आपको बता दें, करीबन 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना आपको देखने के बाद किसी चित्र से कम नहीं लगेगा। इस वाटरफॉल का नाम है नोहकालिकाई जल प्रपात। आप जरूर जाएं यहां पर। और इसके बाद में आप यहां पहुंचने के बाद में प्लान कर सकते हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज की एक खासियत है, ब्रिज सुनकर, पुल सुनकर आपके मन में आता होगा कि किसी सीमेंट या लोहे का बना होगा, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है। आपको बता दें कि ये जो पुल है ये किसी भी सीमेंट और लोहे से नहीं बना है, बल्कि ध्यान से सुनिएगा, बल्कि रबर के पेड़ों की जड़ों से इस पुल को बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और एक और बात, इसको देखने के लिए लगभग 3000 सीढ़ियों की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। आप सोचिए, ट्रैक करके अगर आप उस पुल तक पहुंचेंगे तो मंजिल की जो थकान आपको हुई है, जो सफर में थकान हुई है, वो इस मंजिल तक पहुंचने के बाद आपकी सारी थकान को भुला देगी। इसके बाद आप डेंथेलेन फॉल्स भी जा सकते हैं, जो कि एक बेहद शांत और खूबसूरत झरना है। इको पार्क जा सकते हैं, सेवन सिस्टर्स फॉल्स, जी हाँ, यहां जाना ना भूले। यहां पर बरसात के मौसम में सात धाराओं में बहता एक जलप्रपात आपको बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देगा। तो ये आपके लिए एक आइटनरी आप बना सकते हैं, और जाएं तो जरूर यहां पर आप सभी घूमकर आएं। तो टिकट बुक करा ली है जल्दी से, क्योंकि आप सभी की आपको गाड़ी बुला रही है।

जी हाँ दोस्तों, तो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी तो बुलाएगी क्योंकि इतनी सारी जो जानकारी हमने ली है, मन जो है वो आप सभी का मैं जानती हूँ, आप थोड़ा सा विचलित हो उठा है। तो चलिए, वहां पहुंच चुके हैं, वहां घूम चुके हैं, अब बात आती है कि आखिर पेट पूजा कैसी की जाए। पेट पूजा बहुत जरूरी है, यानी खाने में क्या खाया जाए। तो आपको बता दें, वहां का कुछ स्थानीय बहुत ही जो भोजन है, सादा है, पौष्टिक है, लेकिन बहुत ही स्वाद है। वहां जाएं तो जरूर आप लोग चखे जादोह।

नोट कर लीजिए, जाधो होता है चावल और मसालों से बनने वाला वहां का पारंपरिक व्यंजन। साथ ही वहां पर तुंगरी बाई, यहां का एक सोयाबीन से बनने वाली स्थानीय डिश है, तो आप वहां जाएं तो ये भी वहां पर आप जाकर टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही काले तिल की ग्रेवी में बनने वाला एक व्यंजन जिसका नाम है दोहने इयोंग, ये भी वहां का बहुत ही प्रसिद्ध आहार है, तो ये सब आप जाएं तो जरूर वहां पर खाएं। और साथ ही वहां पे बांस की कोपलों की बनी सब्जियां बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और स्थानीय लाल चाय और ताजा अनानास, जी हां वहां जाएं तो ताजा अनानास खाना बिल्कुल ना भूले। और जब इतनी सारी ये मीठी मीठी रसीले पदार्थों की जब बात होती है तो फिर दिल कहता है ना कि आज फिर जीने की तमन्ना होती है बस।

दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, मैं हूं आपके साथ अंशु अग्रवाल। कार्यक्रम तस्वीर जहां भारत भ्रमण में आज हम बात कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं मेघालय के चेरापूंजी में। जी हां, तो पहुंच चुके हैं और टिकट्स भी हमने बुक करवा ली हैं और वहां का खाना, क्या क्या हमें खाना चाहिए, तो यानी कुल मिला के पेट पूजा हमारी हो चुकी है। अब हम आते हैं हमारे सबसे जरूरी काम पर और वो है शॉपिंग। जी हाँ, तो क्या खरीदे, बात करते हैं। अगर आप चेरापूंजी जाएं तो वहां पर स्थानीय हस्तशिल्प जरूर खरीदें। जी हाँ, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बता दें, वहां की ऑर्गेनिक काली मिर्च और वहां के मसाले आप खरीदना ना भूलें। साथ ही वहां का स्थानीय शहद, जो कि बिल्कुल शुद्ध माना जाता है और वहां का स्थानीय शहद है, वहां की एक धरोहर भी कही जाती है, तो उसको भी आप जरूर खरीद सकते हैं। साथ ही वहां की जनजाति है खासी, तो खासी जनजाति के कुछ पारंपरिक कलाकृतियां भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसे अगर आप चाहें, कला के प्रेमी हैं, तो आप उनको भी खरीद सकते हैं। साथ ही हाथ से बुनी हुई शॉल और स्टॉल्स भी आप खरीद सकते हैं और बांस और बेत से बने बहुत से वहां पे उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आप अगर चाहें तो खरीद सकते हैं और चाहें तो मेरे लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। जी हाँ, कार्यक्रम तस्वीर और हम बात कर रहे हैं चेरा पूंजी की। आपको बता दें, चेरा पूंजी में इतनी बारिश होती है कि यहाँ के लोगों ने बारिश को अपने जीवन का सामान्य हिस्सा मान दिया है। और जैसा कि हमने आपको जब बताया कि आप जब चेरापूंजी पहुंचे तो कहां आपको घूमना चाहिए, तो यहां के जो हमने बात की लिविंग रूट ब्रिज के बारे में, आपको बता दें ये कुछ रोचक तथ्य हैं जो मैं आपसे साझा कर रही हूं। इस रूट ब्रिज को इंसानों और प्रकृति के अद्भुत सहयोग का उदाहरण माना जाता है और इसे बनाने में कई दशक लगे। और ये भी इसके साथ में माना जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ये कोई सीमेंट का ब्रिज नहीं है और सैकड़ों वर्षों तक ये जो ब्रिज हैं, जिस हिसाब से ये बनाए जाते हैं, ये काफी सीखने वाली बात है। और यहां की खास बात ये भी है कि साफ मौसम में यहां से बांग्लादेश के मैदानी इलाकों का नजारा भी हमें देखने को मिलता है।

जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे चेरा पूंजी की, और आपको बता दें कि अगर आपको प्रकृति से प्यार है, बारिश की बूंदें अच्छी लगती हैं और शहर की भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ दिनों के लिए आप सुकून के पल अगर ढूंढ रहे हैं तो चेरा पूंजी जरूर जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी मंजिल है जिसे जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर देखना चाहिए।

तो हसीन वादियों की बात हो गई, बारिश की बात हो गई, सुहावने मौसम की बात हो गई, तो ये जिस जगह को आज हमने जाना उसे अपने दिल के कूचे में बसा लीजिए। चेरा पूंजी जरूर जाकर आए और जो जो जानकारी आज आपको यहां मिली है उसको सम्मिलित कर अपने जिंदगी के, अपने जीवन की भागती दौड़ती जो समय है उसमें से थोड़ा सा समय निकालें अपने लिए, अपनों के लिए, और जरूर इस जगह को छूकर आए और महसूस कर आए। समय होने वाला है आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि

0: केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि यह परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

0: 인근.
1: कुछ रिश्ते छांव की तरह होते हैं, कुछ यादें तुलसी के पौधे सी महकती हैं, कुछ बातें रसोई से उठती खुशबू की तरह मन में बस जाती हैं। घर इन्हीं से बनता है और आंगन इन्हीं से आबाद होता है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और इसी के साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। आज आपके साथ इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए जिंदगी की इसी गर्माहट और साथ ही मौसम की इसी खूबसूरती को महसूस करते हैं हमारे घर आंगन में।

फिल्म सत्ते पे सत्ता से आप सुन रहे थे आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाज में ये गीत। दोस्तों, कहते हैं कुछ रिश्ते उम्र के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। आज कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे ही सवाल से करते हैं जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, क्या आज भी आपका अपने बचपन के दोस्तों से संपर्क है? क्या कभी अचानक किसी पुराने दोस्त का फोन आया और बरसों पुरानी यादें ताजा हो गई? या फिर जिंदगी की भागदौड़ में वे दोस्त कहीं पीछे छूट गए, लेकिन उनकी यादें आज भी आपके साथ हैं? तो हमें लिख भेजिए ना अपने बचपन के किसी ऐसे दोस्त की कहानी जिससे जुड़ी कोई याद आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती हो या आंखें नम कर जाती हो। आपका जवाब हम ईमेल के माध्यम से जरूर जानना चाहेंगे। हमारा ईमेल आईडी तो आपको पता ही है ना? जी हाँ, वो है

जी हाँ दोस्तों, फिल्म याराना से आप ये गाना सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और आपका और हमारा याराना भी यहाँ पर कायम रहता है। जी हाँ, किसके जरिए और किसके माध्यम से, वो है हमारा ईमेल आईडी जो है fmgoldga@gmail.com। और आज हम आपसे जानना चाहते हैं आपके बचपन के ऐसे किसी दोस्त के बारे में, ऐसी किसी सहेली के बारे में जो आपसे बहुत समय बाद दोबारा मिली, या फिर ये भी हो सकता है कि बचपन से लेकर आज तक वो दोस्ती कायम है और वो लगातार और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है, जैसी आपकी और हमारी दोस्ती भी लगातार गाढ़ी हो रही है और परिपक्व भी हो रही है। तो बस देखिए हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मोतीनगर नई दिल्ली से नवीन भाटिया, लिखते हैं टेंथ में पढ़ते थे मनीष सैनी और सुनील सैनी, तो काफी साल बाद वो मुझे लास्ट ईयर मिले तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या बात है। देखिए ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप दोस्तों से मिलते हैं ना, और अगर इतना जबरदस्त आपका रिश्ता उनके साथ हो और बचपने का जो एक मासूम सा रिश्ता होता है वो जीवन भर अगर बना रहे तो क्या बात है ना। क्योंकि इस तरह से तो दोस्तों के साथ लगातार बने रहना हमारी खुशकिस्मती है, और आप बहुत खुशकिस्मत हैं नवीन जी कि के साथ आपके बचपन के दोस्त दोबारा जुड़े। तो हम भी चाहेंगे हमारे बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़े और अपने किस्से, अपनी बातें, अपनी यादें हमारे साथ साझा करें।

दोस्तों, बचपन के दोस्त हमारी यादों का हिस्सा होते हैं। उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर जीवन को स्वस्थ रखना है तो प्रकृति का स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। संयोग से आज से वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत हो रही है और आज यानी 1 जुलाई, जी हाँ, और आज ही के दिन हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे भी मना रहे हैं। यानी आज का दिन हमें 2 अनमोल उपहारों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। एक जो हमारी सेहत की रक्षा करते हैं और दूसरा जो हमें स्वच्छ हवा, जल और जीवन प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन महान चिकित्सक, शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। उनका जन्म और निधन संयोगवश आज ही के दिन यानी 1 जुलाई को हुआ है। और ये दिन उन सभी चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जो दिन रात हमारी सेवा में समर्पित रहते हैं। उनके ज्ञान, संवेदनशीलता और सेवाभाव के कारण अनगिनत लोगों को नया जीवन और नई उम्मीद मिलती है। इसी के साथ आज से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह भी मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत ना वर्ष 1950 में हुई थी और वर्षा ऋतु आप जानते हैं बस उसका आगमन हो ही चुका है और मानसून की आमद हो चुकी है, तो वर्षा ऋतु को वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। और इसीलिए इस सप्ताह देश भर में पौधा रोपण, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब आप भी जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो केवल हमें ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता, मिट्टी के संरक्षण और संतुलित पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। तो बस आज ही का ये दिन है, यह हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है कि अपने डॉक्टरों का सम्मान कीजिए और धरती को हरा भरा बनाने में अपना योगदान भी दीजिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए एक कुशल चिकित्सक और स्वस्थ पर्यावरण दोनों का साथ होना बेहद जरूरी है।

फिल्म साजन बिना सुहागन में आप सुन रहे थे यसुदास की आवाज में ये गीत। दोस्तों देखिए, हमारे साथ हमारे और भी दोस्त जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, लिख रहे हैं सोनाली जी आपको हमारा सप्रेम नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार उग्रसेन जी। आप लिखते हैं कि बचपन की कोई याद जो कभी भी भूल नहीं सकता। अच्छा, बचपन की वो याद जो कभी भी भूल नहीं सकते वो है उस समय जब हमें किसी भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता था। मैं और मेरा दोस्त 4:30 बजे चले जाते थे बाग में एक्सरसाइज के लिए, पर जब आज सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी हम हर पल साथ रहते थे। अरे आप अभी उनको सोच के आंसू ना बहाइए। देखिए कौन कितनी दूरी पर है। आजकल तो सोशल मीडिया, डिजिटल दुनिया, आपके हाथ का आपका फोन, सब इतनी फटाफट आपको आपके दोस्तों के साथ मिला सकते हैं। बस उनको एक बारी फोन कीजिए, उनसे एक बार जाकर मिल लीजिए अगर पास में कहीं रहते हैं। और फिर आपने बताया कि आप उन्हें याद कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इस जरिए भी तो आप अपने दोस्त के साथ ही है ना। तो आप उनसे बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना देरी किए एकदम जाकर के मिल लीजिए, फोन कर लीजिए और अपने उसी दोस्त को दोबारा अपने जीवन में ले आइए। और अभी भी अगर आप सुबह 4:30 बजे सैर करनी, व्यायाम करनी है, बाग में जाएंगे, तो आप दोनों के लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा और दोस्ती और ज्यादा प्रगाढ़ होगी, है ना। और देखिए अब हमारे साथ कौन जुड़े हैं, ये है राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी, गांव चौधरी व जिला हिसार, और इनको हमारे प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें बहुत अलग चीज लिख रहे हैं। देखिए ये लिख रहे हैं कि एक महिला चाहे बूढ़ी हो जाए फिर भी बाबुल का कच्चा आंगन कभी नहीं भूलती। रही बात बचपन की, तो मैं हर वक्त बचपन की बातें दूसरों को बताता हूँ, बचपन याद करने से सुकून मिलता है। बहुत अच्छी बात है, बचपन को तो हमेशा याद करते रहना चाहिए। उन पलों को कौन भूलना चाहता है जब हम एकदम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सोच के लगातार अपने दुनिया में मगन रहते थे, खेलते थे, कूदते थे और एकदम माँ बाप के संरक्षण में सुख से अपना जीवन बिताते थे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आपके बचपन का ऐसा कौन सा दोस्त है जो आज भी आपके साथ है, आपके साथ उनकी दोस्ती अभी भी कायम है, और नहीं भी है तो क्या आप दोबारा उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को आप हमारे साथ साझा कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

दोस्तों हमने बात की सेहत की। जी हाँ, अच्छी सेहत जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है क्या? सुरक्षित रहना। आज की महिलाएं पढ़ाई, नौकरी और दूसरे कई कामों के लिए अकेले सफर करती हैं। ऐसे में जो हमारा हैंडबैग या पर्स होता है ना, उसमें सिर्फ जरूरत का सामान ही नहीं रखा जाता। आपको पता है कई कई बार ना वो आपको बहुत सारी मुश्किलों से भी आपको निकाल सकता है और ऐसे मुश्किल वक्त में वो आपका बहुत बड़ा सहारा भी बन सकता है। कैसे? अरे हम है ना आपको बता रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे पर्स में हम लोग हमेशा रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी चीजें रखते हैं जो अक्सर ना अगर ऐसी आप किसी स्थिति में पड़ जाएं जहां से आपको निकलने के लिए किसी सहायता की जरूरत हो, कुछ सुरक्षा की किसी चीज की जरूरत हो, तो आपके जो पर्स है ना इसके अंदर मौजूद बहुत सी चीजें आपके बहुत काम आ सकती हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम अकेले कैब में सफर करते हैं तो कैब में बैठते ही उसकी जानकारी और अपनी लाइव लोकेशन आप सबसे पहले ना अपने घर के किसी भी सदस्य को या अपने किसी दोस्त को या किसी ऐसे भरोसेमंद साथी को जरूर उसके साथ साझा कर दीजिए। और फिर ना अपना जो मोबाइल नंबर है उसमें आपके इमरजेंसी जो नंबर है उनको अपने एकदम टिप पर रखिए। सबसे पहले उनको अपने मोबाइल में उनका हमेशा मौजूद रहना जरूरी है, उन नंबर्स का। फिर जितने भी हमारे इमरजेंसी के जो नंबर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, उनको भी अपने फोन में हमेशा सेव करके रखें। अब जो अब आपका जो पर्स है ना आप उसको खोलकर देखिए, उसके अंदर चाबियों का गुच्छा तो हम महिलाओं के पास मिल ही जाता है। अब ये जो चाबियों का गुच्छा है ना इसको कोशिश करें कि हमेशा अपने हाथ में रखें, अपने हाथ के आसपास रखें ताकि पर्स में हाथ डालते ही वो आपके हाथ में आ जाए। और ये एक ऐसी चीज है जो मुश्किल वक्त में आपके हाथ में आ जाए ना तो आप इसकी मुट्ठी बनाकर अपने बचाव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पेपर स्प्रे, जी हाँ पेपर स्प्रे जिसमें मिर्च का स्प्रे होता है वो भी आपके पास में होना, आपके पर्स में अगर है तो आपके लिए बहुत सुरक्षित एक बचाव का साधन हो सकता है और जरूरत पड़ने पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और चीज है, परफ्यूम या डिओड्रेंट तो हम सभी के पास में होता ही है। ये भी ना अगर आपके पास में पेपर स्प्रे नहीं है तो परफ्यूम और डिओड्रेंट ये भी आपके लिए उसी के जैसा ही काम आ सकता है बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए पेन तो हम सभी के पास होता है, फिर औरतें हमेशा नेल फाइलर भी अपने पास में रखती हैं या फिर कंघी भी होती है हमारे पर्स में तो जरूर होती है। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो किसी भी आपात स्थिति में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। ये रोजमर्रा की चीजें हमेशा अपने पास अगर पर्स में नहीं भी रखती है ना तो रखना शुरू कर दीजिए। फिर इसके बाद में एक चीज और है, वो है सेफ्टी पिन या हेयर पिन, ये भी हमारे पास मौजूद होती है और आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी आपात स्थिति में आप इसका इस्तेमाल बाकायदा अपनी सुरक्षा के लिए कर सकती हैं। फिर पानी की बोतल, मौसम कैसा भी हो एक पानी की बोतल हम लोग हमेशा अपने पास रखते हैं, उसे भी अपने साथ रखिए। भले ही वो स्टील की ना हो, अगर वो प्लास्टिक की भी है या किसी और मेटल की भी है तो वो बिल्कुल वही काम करेगी जो हमें चाहिए। और मोबाइल फोन आजकल हमारे हाथ में हमेशा रहती हैं, उनको भी हमेशा अपने साथ में रखिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है या बिना वजह आपसे ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है या जो आपका तय रास्ता है उसको बदल रहा है तो चुप ना रहें। किसी भी को भी अपने किसी भी परिचित या अपने किसी भी घर के सदस्य को फोन करें और किसी भी भीड़ भरी वाली जगह पर गाड़ी रुकवाएं और वहां से उतर जाएं। डरना नहीं है लेकिन लापरवाह भी नहीं होना है। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी तैयारी और सही समय पर लिया गया फैसला कई बार बड़ी मुसीबत को टाल सकता है और इन आते जाते खूबसूरत रास्तों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हो सकती हैं। तो अपने मन को और अपने दिमाग को हमेशा शांत रख करके बाहर निकलिए और अपने हाँ पर्स को इन सभी चीजों से हमेशा लबरेज रखिए।

फिल्म अनुरोध में आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। दोस्तों, सुरक्षित रहना जरूरी है, लेकिन अपने शरीर और मन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला जाए तो योग उसकी एक अच्छी शुरुआत हो सकता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक नई पहल की है, जिससे योग को लोगों के घर और मोहल्ले के और करीब लाने की कोशिश की जा रही है। योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य देशभर की मौजूदा पार्कों को ऐसे सामुदायिक स्थानों के रूप में विकसित करना है, जहां लोग ना नियमित रूप से योग, ध्यान और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकें। दोस्तों, इन योग पार्कों में ना योग अभ्यास के लिए विशेष स्थान, ध्यान के लिए शांत वातावरण और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस पहल में ना नगर निकायों, ग्राम पंचायतों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, योग संस्थानों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी रहेगी और कॉरपोरेट कंपनियां भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत योग पार्क विकसित करने में सहयोग कर सकेंगी। अगर आपकी संस्था या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा पार्क है जो योग पार्क के रूप में विकसित किया जाना चाहता है या उसे किया जा सकता है, तो इसके लिए आप योग पार्क पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर जो इसके दिशा निर्देश है ना, उसको जरूरी जो भी जानकारी है और जो दिशा निर्देश हैं उनको आप इस पोर्टल में जाकर के पता कर सकते हैं। और आज की आप जानते ही हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं है। शायद ऐसी पहल उस दूरी को थोड़ा कम कर दे। हो सकता है कल आपके घर के पास का वही पार्क जहां आज बच्चे खेलते हैं और बुजुर्ग टहलते हैं, वहीं सुबह योग की कक्षाएं भी लगने लगे। धीरे धीरे ये पार्क पूरे मोहल्ले की सेहत, अपनापन और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाएंगे, है ना, अगर हमने उसे योग पार्क पोर्टल में उनको अगर बदल दिया तो। और अगर आप इस पहल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं ना, तो आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट जो है योगा

yogpark.gov.in इस पर जाकर योग पार्क पोर्टल देख सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि जब तन स्वस्थ होता है तो मन भी झूमता है, गाता है और मुस्कुराता है। किस तरह? इस तरह।

ये झूमता गाता गीत आप सुन रहे थे फिल्म पराया धन से, और इसमें जो गाने की आवाज थी जिनकी, वो थी किशोर कुमार और आशा भोसले। देखिए हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, कौन है ये? ये है रेखा देवी चौधरी। ये भी हरियाणा से हमें लिख रही हैं कि बचपन की सहेलियों से आज भी बात होती है, बच्चों को खेलता हुआ देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। मेरे ससुर राजू अग्रवाल रेडियो सुनते हैं, मैं भी काम करते हुए आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। देखिए यही तो खूबसूरती है बताए रेडियो की, कि आप ना कुछ भी कर रहे हो आप साथ साथ में रेडियो भी सुन सकते हैं। यह आपको किसी भी काम से रोकता नहीं है, ना आपके हाथ बांधता है। आप पूरे समय अपना मूड बहुत अच्छा रख सकते हैं, खूबसूरत गाने सुन सकते हैं। कहाँ? एफएम गोल्ड 7.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारे साथ दिन दिन भर। और आप अच्छे गाने सुनिए, अच्छा स्वस्थ अपना मन हमेशा स्वस्थ रखिए, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखिए, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिर हमारे साथ एक और है, जी हाँ, हमारे एक और दोस्त हैं, वो हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं। सोनाली जी सादर प्रणाम, आपका भी हमारा प्रणाम। आप हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, इन्हें जानकारियां और बातें अच्छी लग रही हैं। फिर ये लिखते हैं कि स्कूल कॉलेज का कोई साथी मिलता है तो बचपन की बहुत मीठी यादें ताजा हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं, और यही तो खुशी होती है और यही तो एक सुख है दोस्तों के साथ रहने का और उनके साथ में बने रह करके अपने मन को हमेशा हल्का करने का। तो देखिए हमने बात की योग की, हमने बात की स्वास्थ्य की। अब रोज थोड़ा सा योग शरीर और मन दोनों को तरोताजा कर देता है, और जब बात मन को सुकून देने की हो तो खुशबू का जिक्र अपने आप आ जाता है। आइए आज आपको ले चलते हैं भारत के एक ऐसे शहर में जिसकी पहचान ही उसकी महक है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है ना, ये सदियों से इत्र बनाने की अपनी अनूठी परंपरा के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि इसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ इत्र बनाने की कला लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, और आज भी कई परिवार पीढ़ियों से इस विरासत को संजोए हुए हैं। कन्नौज की ना जो सबसे बड़ी पहचान है वो है मिट्टी का इत्र। पहली बारिश के बाद भीगी धरती से उठने वाली सौंधी महक को यहाँ के कारीगर पारंपरिक देग भाप का विधि से इत्र में बदल देते हैं। इसके अलावा गुलाब, चमेली, केवड़ा, मोगरा और खस जैसे फूलों से भी प्राकृतिक इत्र तैयार किए जाते हैं। कन्नौज के जो इत्र है ना, उसकी जो विशिष्टता और विशेषता है वो पारंपरिक कला के लिए GI टैग भी इसको मिल चुका है। यही वजह है कि यहाँ की खुशबू देशी नहीं विदेशों तक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। कहते हैं ना दोस्तों, कुछ शहर अपनी इमारतों से पहचाने जाते हैं, कुछ अपने इतिहास से, लेकिन कन्नौज ऐसा शहर है जिसकी पहचान उसकी खुशबू है, और ये खुशबू सिर्फ इत्र की नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी है। कुछ खुशबुएं सिर्फ महकती नहीं है, याद भी रह जाती हैं, है ना? तो आइए सुनते हैं इन्हीं खुशबुओं और फूलों से महकता हुआ ये बहुत प्यारा सा गीत।

फिल्म रजनीगंधा में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों, हम लोग हमेशा बचत के कोई न कोई नए तरीके ढूंढते रहते हैं। आजकल बचत के तरीके भी बदल रहे हैं। अब सोना खरीदने के लिए हमेशा ज्वेलरी की दुकान तक जाना जरूरी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिजिटल गोल्ड के बारे में, और इसे खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आपको आज बताएंगे। डिजिटल गोल्ड सोना खरीदने का एक ऑनलाइन तरीका है। इसमें आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपनी सुविधा और बजट के अनुसार बहुत छोटी राशि से भी सोना खरीद सकते हैं। आपके नाम पर खरीदा गया सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर आप उसे बेच सकते हैं या तय शर्तों के अनुसार सिक्के या बार के रूप में मंगवा भी सकते हैं। हालांकि डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले ना कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप हमेशा विश्वसनीय और प्रतिष्ठित मंच का ही चुनाव करें, और ये भी देख लें कि सोना 24 कैरेट और 99.5% यानी 99.5% या उससे अधिक शुद्धता का ही हो। और हमेशा ध्यान रखें कि आप जहां से भी ले रहे हो वो ऑथेंटिकेट जगह हो और प्रामाणिक जगह से ही चीजें लें, और भंडारण शुल्क, डिलीवरी शुल्क और अन्य नियमों की जानकारी पहले ही पढ़ लें। ये भी ध्यान रखें कि डिजिटल गोल्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित निवेश उत्पाद नहीं है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें और अपनी जरूरत और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें। बचत का कोई भी तरीका चुने, लेकिन सबसे जरूरी बात है समझदारी से निर्णय लेना, है ना। जानकारी जितनी भी सही होगी आपका फैसला भी उतना ही बेहतर होगा। और सोना चाहे तिजोरी में रखा हो या डिजिटल रूप में, भारतीय घरों में उसकी चमक और अपनापन हमेशा खास रहा है।

दोस्तों आप सुन रही हैं फिल्म दोस्त दो रास्ते फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत और इस गीत के साथ ही मैं यानी आपके रेडियो हमसफर आपसे आज के इस कार्यक्रम घर आंगन से इजाजत

घर आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत

0: संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Marking the 11 years of the initiative, Mr. Modi said that Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. Home Minister Amit Shah has said that the government has transformed India into a digital nation by expanding digital connectivity, strengthening digital governance, and improving access to public services. Marking 11 years of the Digital India initiative, Mr. Shah said the country has witnessed significant progress in internet connectivity, digital infrastructure and technology-driven governance. In a social media post, he said that over 103 crore people are now connected to the internet, while more than 2,20,000 villages have been linked through BharatNet. Revised wage rates under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 have become effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat G. Ramji. 21 states and administrative units which previously had wages below 300 rupees have now been brought up to the new benchmark. Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. In Uttar Pradesh, five people, including two minor girls, were killed after a sleeper bus collided with a car on the Agra-Lucknow expressway in the wee hours today. According to the officials, the sleeper bus was travelling from Haryana to Bihar, while the car was heading from Agra towards Lucknow when the speeding bus hit the car from behind. After the collision, the bus fell off the expressway and overturned. The impact was so severe that the car was completely mangled and dragged for nearly 20 feet on the expressway. With the help of locals, injured people were rescued and rushed to the community health center, Bangarmau. Those with serious injuries were referred to the district hospital. Noted film and theatre personality Vijaya Mehta passed away at a Mumbai residence last night at the age of 92. She was one of the pioneers of experimental Marathi theatre. fondly

नमस्कार, आप सुन रहे हैं AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ अंजलि लारोया, लेकर कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। दोस्तों, आप जानते हैं, कभी आपने ये सोचा है कि जब पर्दे पर हीरो अपनी महबूबा से बात करता है तो वो शब्द कहां से आते हैं? वो लफ्ज जो सीधे दिल को छू जाते हैं वो कहां से आते हैं? आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस फनकार की जिसने प्यासा, कागज के फूल और साहेब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों को अपनी कलम के जादू से अमर बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं उस दिग्गज लेखक की जिनका जन्म हुआ 1 जुलाई 1927 को। अबरार अलवी को समर्पित है हमारा आज का ये कलाकार बेमिसाल। अबरार अलवी साहब हिंदी सिनेमा के वो सितारे थे जिनकी चमक गुरुदत्त की वजह से दुनिया के सामने आई और उनका असली योगदान गुरुदत्त की फिल्मों में हमें खास तौर पर देखने को मिलता है। अबरार अलवी के हुनर को गुरुदत्त ने पहचाना और उन्हें आर पार जैसी फिल्म से अपने फिल्मी दुनिया के सफर में अपने साथ जोड़ा उन्होंने। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस मशहूर फिल्म की, साहेब बीवी और गुलाम के लिए, जिसमें उन्हें बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, उससे नवाजा गया उन्हें। और एक बहुत ही खास सीन है उस फिल्म में जिसमें मीना कुमारी बड़े ही गुहार लगाती हैं अपने पति से और ये कहती हैं कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया। जो ये गीत है ये खुद अबरार अलवी की सोच थी। इस फिल्म को लिखने के लिए उन्हें एक और विशेष सम्मान मिला। उस साल उन्हें प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया, उस वर्ष हिंदी भाषा की बेस्ट फीचर फिल्म लिखने के लिए। आइए सुनते हैं सबसे पहले साहेब बीबी और गुलाम फिल्म से ये गीत।

मीना कुमारी का ये बोल्ड अंदाज वाकई काबिले तारीफ था, क्योंकि जिस तरह से वो संभल कर एक्टिंग करती थी और उसके उस दौर में इस तरह का बोल्ड अंदाज उनका अबरार अलवी की कलम से निकला, ये जो आइडिया था ये बहुत ही काबिले तारीफ था, यही कहेंगे हम। और हिंदी सिनेमा जिसे अबरार अलवी से पहले, जिसमें डायलॉग डिलीवरी इस तरह होती थी जैसे थिएटर का प्ले हो, उस तरह से की जाती थी, लेकिन अबरार अलवी को ये श्रेय जाता है कि वो फिल्मों में एक रियलिस्टिक अंदाज लेकर आए। डायलॉग डिलीवरी जो है, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करते हैं, उस अंदाज को उन्होंने फिल्मों में पेश किया। अबरार साहब की कला सिर्फ कागज तक सीमित नहीं थी। फिल्म प्यासा का वो मशहूर किरदार गुलाबो, जिसे वहीदा रहमान ने निभाया था, कोई कल्पना नहीं था। अबरार अलवी ने बंबई के रेड लाइट एरिया में रिसर्च के दौरान एक तवायफ की असल जिंदगी को समझा था और वहां एक लड़की से बात की थी केवल

उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वो वहां गए थे और उस लड़की का नाम था गुलाबो। जब वो वहां से जाने लगे तो उसने उनसे कहा, बहुत ही भावुक और टूटी हुई आवाज में उसने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, इस जगह पर जहां सिर्फ गालियां और जिल्लत मिलती है, पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत और सम्मान के साथ आज मुझसे बात की है। गुलाबो के ये शब्द और उसका लहजा अबरार अलवी के दिल में इस कदर बैठ गया कि उन्होंने इस पूरी घटना

को प्यासा फिल्म के लिए चुन लिया। फिल्म बड़ी ही यादगार है और बड़े अच्छे से गीत हैं, लेकिन फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ना, उसको लेकर गुरुदत्त और अबरार अलवी के बीच में खूब बहस चल रही थी कि किस तरह का क्लाइमैक्स होना चाहिए। आखिरकार जो प्रमोटर्स थे फिल्म के, उनकी बात मानी गई, क्योंकि वो चाहते थे कि दर्शकों को थोड़ी राहत तो मिलनी चाहिए कि आखिर में जो कवि है, जो मुख्य किरदार है, वो गुलाबों के साथ मिलता है और उसके साथ अपनी जिंदगी आगे की बिताता है। तो वो जो गीत है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए, उससे फिल्म अंत होती है। लेकिन हम आपको कोई और गीत सुनाने जा रहे हैं इस फिल्म का, वो भी बड़ा मशहूर गीत है। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

क्या आप जानते हैं अबरार अलवी वो शख्स थे जिन्होंने गुरुदत्त को प्यासा फिल्म में एक पेंटर की जगह एक कवि के रूप में पेश होने का सुझाव दिया था। प्यासा भले ही एक बेहद संजीदा फिल्म थी पर वहीं मिस्टर एंड मिसेस 55 1955 में आई ये फिल्म जिसमें हाजिर जवाबी भरे डायलॉग्स को सुनकर मजा आ जाता है, ये भी उन्हीं की कलम से निकली थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का वो गीत जो गुरुदत्त और मधुबाला पर फिल्माया गया है। दोनों फिल्मों का अंदाज एकदम अलग लेकिन लिखे गए डायलॉग स्क्रीन प्ले एक ही लेखक की कलम से हैं। सोचिए वे कितने शानदार लेखक रहे होंगे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत।

0: हम बात कर रहे हैं अबरार अलवी की, कलाकार बेमिसाल में। आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं अबरार अलवी साहब की। अबरार अलवी जी ने कई यादगार फिल्में हमें दी जिनके नाम हैं बैराग, लैला मजनू, मनोरंजन, साथी, संघर्ष, सूरज, बहारें फिर भी आएंगी और प्रोफेसर। आइए सुनते हैं उन्हीं में से किसी एक ऐसी फिल्म का गीत जो महेंद्र कपूर जी की आवाज में है। मेरे ख्याल से आपने अंदाजा लगा लिया होगा मैं बात कर रही हूं फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का वो मशहूर गीत। आप जानते हैं कि इस फिल्म का निर्देशन गुरुदत्त कर रहे थे और वो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अचानक 10 अगस्त 1964 की रात उनका निधन हो गया और उनके निर्देशन में बनी ये फिल्म अधूरी रह जाती। लेकिन अबरार अलवी जी ने इस फिल्म का निर्देशन संभाला और लीड रोल में लिया हमारे ही मैन धर्मेंद्र को। अबरार अलवी ने एक तरह से इस फिल्म की आत्मा को बचाने का काम किया और मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र जी ने भी बखूबी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इस फिल्म को बहुत ही यादगार बना दिया दोनों ने मिलकर। और आइए सुनते हैं इस फिल्म का बड़ा मशहूर गीत है महेंद्र कपूर जी की आवाज में। मेरे को बहुत पसंद है वो गीत, उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा।

ये फिल्म मुझे बड़ी पसंद है और जाहिर सी बात है हमारे ही मैन हैं इस फिल्म में, तो काफी लोगों को इस तरह की फिल्म पसंद आई होगी ये धर्मेंद्र जी की। अबरार साहब की जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प बात आपसे शेयर करती हूं। अबरार साहब जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखते थे तो वो दुनिया से कट जाते थे। वो अपने घर के एक कमरे में खुद को 3-4 दिनों के लिए बंद कर लेते थे। कोई फोन नहीं, कोई मुलाकात नहीं, और तो और कमरे में कोई अंदर ना आए इसलिए दरवाजे के पास एक घूमने वाली प्लेट यानी कि रोटेटिंग प्लेट रख दी जाती थी जिस पर उनके खाने पीने का सामान रख दिया जाता था। कमाल का जुनून था ना। अक्सर देखा गया है कि लेखकों में ये कमाल का जुनून जरूर होता है। आइए, एक और बड़ी दिलचस्प फिल्म है उनके द्वारा लिखे गए डायलॉग्स इस फिल्म के। फिल्म है प्रोफेसर, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों लिखे हैं उन्होंने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे शम्मी कपूर जी और कल्पना। अब आप सोच सकते हैं शम्मी कपूर जी जिस फिल्म में हो तो उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसका स्क्रीन प्ले भी बड़े अलग अंदाज में लिखा गया होगा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये रोमांचक सा गीत।

आप जानते हैं, लंबा सफर तय कर एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचने वाली हर शख्सियत के पीछे एक संघर्ष की कहानी जरूर होती है। अब्रार साहब के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, पर उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित किया। नागपुर में जब वो अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो अपनी एक महिला मित्र के लिए बड़े खूबसूरत अंदाज में पत्र लिखा करते थे। खैर, वो सफर तो वहीं रह गया, लेकिन उनका असली सफर जिंदगी का शुरू हुआ जब वो मुंबई पहुंचे और उनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त जी से। गुरुदत्त जी ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाकर कई तरह के सीन्स लिखने को कहा, और उसके बाद उन्होंने सारे स्क्रीन राइटर्स को, डायलॉग राइटर्स को साइड कर फिल्म आर पार की कहानी लिखने को दी अब्रार अलवी जी को। और यहां से शुरू हुआ दोनों का दोस्ती का सफर। उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि उसके बाद बस वो यादगार और हिट फिल्में देते गए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

और दोस्तों इसके बाद 1960 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है चौदहवीं का चांद, जिसने गुरुदत्त को दिवालिया होने से बचा लिया और इसका पूरा श्रेय जाता है अबरार अलवी को, जिन्होंने इसके डायलॉग्स लिखे। उन्होंने पर्दे पर एक

एक स्क्रिप्ट डॉक्टर का काम किया इस फिल्म में उन्होंने, और इस फिल्म का जो पॉपुलैरिटी है वहीदा रहमान और गुरुदत्त पर जो ये फिल्म बनी है इसका पूरा श्रेय जाता है अबरार अलवी साहब को। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये मशहूर गीत, क्योंकि कार्यक्रम इसके बिना, इस गीत के बिना तो एकदम अधूरा ही रह जाएगा।

तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपने लेखन के सफर को जीते हुए एक बेमिसाल दोस्ती को भी दुनिया के सामने पेश किया और बहारों को कभी रूठने नहीं दिया। यही नहीं, उनकी कहानियों में जो दर्द और सच दिखता है उसका एक कारण ये भी था कि वे ऑल इंडिया रेडियो नागपुर में रेडियो ड्रामा लिख चुके थे और अपनी बेहतरीन उर्दू लिटरेचर के लिए जाने जाते थे। नवंबर 18, 2009 में 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन हम जब भी उनके गीतों को सुनेंगे तो हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे और फिल्मी दुनिया में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा और इसी तरह से उन्हें याद किया

0: बनाया है और हमारी यह तरक्की को तेज किया है। मुहिम के 11 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम ने डिजिटल इंडिया ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसान डिजिटल अदायगी और फवायद की बराह रास्त मुंतकली डीबीटी के जरिए मुस्तफिदीन तक शफाफ अंदाज में सरकारी स्कीमों के फवायद पहुंच रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी आवाम की जिंदगी को आसान बनाने का एक मुअस्सर जरिया बन चुकी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने गुज़श्ता 11 वर्षों में मुल्क भर के शहरियों के लिए राबते, तालीम, माली लेन देन और सरकारी खिदमात तक रसाई के तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस अरसे में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे डीपीआई निजाम में से एक कायम किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुसूसन देही और पसमानदा इलाकों में सेहत, तालीम, हुनरमंदी, ज़िराअत और फलाही खिदमात तक रसाई को वसअत दी है। पेश एक रिपोर्ट।
1: भारत तेजी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे डीपीआई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। इस कामयाबी की बुनियाद काबिले तौसी और शहरियों पर मरकूज डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निजाम में ताउन के लिए 24 मुल्कों के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल शनाख्त, डिजिटल अदायगी, डेटा के तबादले और सरकारी खदमात की फराहमी जैसे शोबे शामिल हैं। अदायगियों का यकसा इंटरफेस यूपीआई अब 8 से ज्यादा मुल्कों में काम कर रहा है, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशियस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर मालियाती टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की मौजूदगी मजीद मुस्तहकम हुई है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आलमी सतह पर डिजिटल हुक्मरानी के नए मॉडल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: विकसित भारत जीराम जी एक्ट 2025 के तहत नजरसानी शुदा योमिया उजरत आज से नाफिज हो गई है। देही तरक्यात की वजारत के मुताबिक तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उजरतों में इजाफा किया गया है। वजारत ने कहा कि पहली बार 300 रूपये योमिया उबूरी बुनियादी उजरत मुकर्र की गई है, ताकि इस स्कीम के तहत किसी भी रियासत में मजदूरी इस हद से कम न हो। एमजी नरेगा के तहत उजरत की कौमी औसत योमिया 298.80 रूपये थी, जो कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत 327.40 रूपये हो गई है। इसके अलावा 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जहां पहले योमिया उजरत 300 रूपये से कम थी, अब उसे भी नए मयार तक बढ़ा दिया गया है। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरतहाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी की जरूरत पर जोर दिया है। फौजी अमले के 31वें सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सेठ ने टेक्नोलॉजी से लैस और मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ऐसी भारतीय फौज के मकसद को उजागर किया जो हर मामले में बाख्तियार हो और हर सूरतहाल में कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: उन्होंने कहा कि फौज सरहदों और उभरते हुए खतरात के सिलसिले में मुसलसल चौकसी बरकरार रखेगी और कौमी सलामती को लाहक किसी भी चैलेंज से मौसर तौर पर निमटने के लिए कार्रवाई की आला सतही तैयारी रखेगी। जनरल सेठ ने कहा कि उनकी तवज्जो नजरियाती और तकनीकी दोनों हल पर रहेगी।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 के तहत नए पासपोर्ट की दरखास्त की फीस में आज से इजाफा कर दिया गया है। फीस के नजरसानी शुदा निजाम के तहत 36 सफहात के नए पासपोर्ट या पासपोर्ट दोबारा हासिल करने के लिए अब 2,500 रूपये अदा करने होंगे। 60 सफहात के नए आम पासपोर्ट या उसे दोबारा हासिल करने के लिए 3,500 रूपये मुकर्र किए गए हैं, जबकि तत्काल स्कीम के तहत 6,000 रूपये देने होंगे। 36 सफात के पासपोर्ट के खो जाने या उसे नुकसान पहुंचने की सूरत में उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर से हासिल करने के लिए फीस 5,000 रूपये होगी। 60 सफात के पासपोर्ट के खो जाने या उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर से हासिल करने के लिए 6,000 रूपये फीस तय की गई है। पानी के पायदान

0: लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि BBG रामजी

0: गई है। राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय

0: विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की

0: कार्यक्रम उन्नत किसान में बहुत स्वागत है आप सभी का। और कार्यक्रम में हाजिर हूँ मैं आपके साथ सीमा सती, और मेरे साथ हैं
1: बिल्कुल मैं हूँ गौतम, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: और जैसे कि आज शुरुआत हो गई है जुलाई महीने की, है ना गौतम? और हर महीने की जैसे कि कोई भी नई शुरुआत होती है, हर दिन अपने आप में एक नया होता है, एक अनुभव लेकर आता है और कुछ खास होता है। और अगर हम आज की बात करते हैं, आज 1 जुलाई है और आज भी है कुछ खास दिन। और अगर हम बात करें आज की, तो आज है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। और आज के दिन पता है क्या होता है कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य फलों के बारे में, पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा देना, और साथ ही साथ लोगों को अपने फल दूसरों के साथ साझा करके खुशी और स्वास्थ्य का प्रसार करने के लिए प्रेरित करना है। तो वैसे तो हमारे कार्यक्रम है ही किसान भाइयों के लिए खासतौर पे, और फलों की बात होती है, सब्जियों की बात होती है, पशुधन की बात होती है, तो आज तो और भी खास बात हो गई है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। और मुझे लगता है तुम भी कुछ फल लेकर आए हो गौतम।
1: जी बिल्कुल, फल की बात आप कर रही हैं, और फल को अगर वन से जोड़ के देखा जाए और पेड़ों से अगर जोड़ के देखा जाए, तो आज से वन महोत्सव भारतवर्ष में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला जो वृक्षारोपण उत्सव है वो शुरू हो रहा है। और इसका उद्देश्य है लोगों को पेड़ लगाने, पर्यावरण की रक्षा करने तथा वनों के महत्व के प्रति जागरूक करना। और वन महोत्सव की जो शुरुआत है सीमा जी, वो है 1950 में की गई थी। और उद्देश्य अगर इसका महत्व इसलिए बहुत बढ़ जाता है क्योंकि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में और हरा भरा बनाने में अगर वन की आप महत्ता को देखें तो उससे वो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप वायु प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वन लगाएं, वनों का संरक्षण करें। वन जो है आपको मिट्टी के कटाव को भी रोकने में मदद करता है, और वन्य जीवों और जैव विविधता का अगर बात करें तो उसका भी संरक्षण करने के लिए वन का होना बड़ा जरूरी है। और आप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना चाहते हैं क्योंकि जिससे दुनिया बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, तो वन महोत्सव इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: तो बिल्कुल, और आज का कार्यक्रम तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस, और साथ ही साथ हम मना रहे हैं वन महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन के साथ। और अब शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जैसे कि आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम उन्नत किसान, और आज भी एक खास विषय पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो विषय की जानकारी आपको दे देते हैं। आज का विषय रहेगा टिकाऊ खेती हेतु मक्का और बाजरा की बुआई। और हमारे बीच मौजूद हैं आज विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर लाल जाट, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार किसान भाइयों को, आपका भी थैंक यू, धन्यवाद।
0: जी हाँ, तो डॉक्टर साहब जैसे कि अब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे टिकाऊ खेती हेतु मक्का और बाजरा की बुआई। अब टिकाऊ खेती का अगर हम कॉन्सेप्ट समझ

0: खेती की बात कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर साहब, तो मक्का और बाजरा ही क्यों?
1: देखिए, अभी जो हमारे देश में अगर पिछले 10 साल में देखेंगे तो जो चावल का उत्पादन है बहुतायत में बढ़ गया है
0: जी,
1: और जो चावल जितना हमारे देश में चाहिए 2047 में, उससे ज्यादा अभी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, उस लेवल पे। तो आप देखिए, कहीं कहीं जो चावल है उसमें प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करने की वो क्षमता रहता है। एक

0: भी लाभ देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभ देगी। तो एक तो प्राकृतिक संसाधन में जल का है, दूसरा है आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य। चावल में हमें मिट्टी को कद्दू करना पड़ता है, खड़े जल के अंदर हमें पडलिंग करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है मिट्टी की जो संरचना है वो खराब हो जाती है,
1: बिल्कुल
0: कण टूट जाते हैं। और आप देखिए पानी भरे हुए खेत के अंदर जो जीवाणु होंगे और एक वेल ड्रेन्ड सोइल होगी जिसके अंदर पानी टिका हुआ नहीं है, तो उसमें जो जीवाणु की जो संख्या है और जीवाणु का जो काम है वो भी आपका चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो आपकी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर नहीं रहता है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य और पानी को लेके जो ये दोनों फसलें हैं, चाहे मक्का है चाहे बाजरा है, वो आपके चावल की बजाय ज्यादा बेहतर है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे मक्का की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बुआई का उपयुक्त समय क्या है और मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें किसान भाई?
0: देखिए जो मक्का है, मक्का के लिए आपकी मिट्टी बहुत सारी तरह की मिट्टी के अंदर हो सकती है, केवल आपकी रेतीली नहीं होनी चाहिए।
1: जी
0: ठीक है। और जो आपका बुआई का उपयुक्त समय वो है कि जिस समय आपका मानसून आ जाता है। इस बार क्या है, अल नीनो के प्रभाव से काफी जगह इसकी बुआई में, सारी फसलों की, ना केवल मक्का, सारी फसलों की बुआई में कमी आई है अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं सरकार के। तो जब भी आपकी बुआई का समय इसका रहता है 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सबसे उपयुक्त समय रहता है। लेकिन इसमें एक ही शर्त रहती है, जब आपका मानसून आ जाए तब आप इसकी बुआई करें। तो उस समय आपकी एक तो बहुत सारी बहुतायत में एक साथ बुआई होती है, तो कीड़े वगैरह बीमारी ये भी इनकी समस्या भी कम आती है। दूसरा ये है कि उस समय थोड़ा तापमान कम हो जाता है।
1: ठीक
0: है, अगर आप अभी दिल्ली का तापमान देखेंगे, बाकी जगह का तापमान देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। थोड़ी एक दो बार बारिश ठीक हो जाए तब जाके तापमान कम आता है। तो आपके छोटे पौधे कभी कभी झुलसने की, कोई भी फसल हो उसके अंदर संभावना रहती है। तो जब भी आपके बारिश होती है उसी समय आप मक्का की बुआई करें, या आपको लगे कि आसपास बुआई हो, बारिश हो गई है, हमारे यहाँ नहीं हुई है, आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है, तो अभी आप मक्का की बुआई कर सकते हैं।
2: जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे बुआई के लिए हम अब खेत की तैयारी भी करनी होगी, तो क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, किस तरह से तैयारी करनी है?
0: बिल्कुल, इस मौसम के अंदर जो खेत की तैयारी है अभी कुछ किसान करने लगे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपकी मक्का है जो और बाजरा है, ये दोनों फसलें आपकी पानी के भराव को सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आपको जो खेत को एक बार जैसे आपने जुताई कर ली और दूसरी दो बार उसके अंदर आपने कल्टीवेटर लगा दिया, या फिर जुताई नहीं की आपने कल्टीवेटर लगा दिया तो भी चलता है, उसके बाद समतल करके और उसको मेड़ के ऊपर बुआई करनी
1: जी।
0: अगर मेड़ के ऊपर इन दोनों फसलों की बुआई करते हैं, चाहे मक्का है चाहे बाजरा, तो आपको 60 सेंटीमीटर 2 फीट के ऊपर मेड़ बनानी है और उसके अंदर 20 सेंटीमीटर मतलब 0.25 फीट के ऊपर या उसके ऊपर आपको बुआई करनी है, 20 से 20 की दूरी रखनी
1: जी।
0: तो जब आप मेड़ के ऊपर बुआई करेंगे तो इससे 2-4 फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा यह है कि जो मक्का है वो आपकी जब छोटी पौध रहती है, अगर कभी कभी देखते हैं बारिश के मौसम में 8-10 दिन तक बारिश होती रहती है, तो छोटा पौधा कभी कभी सड़ जाता है, गल जाता है, उसका बीज भी गल जाता है, कभी कभी पौधा भी गल जाएगा, तो वो नहीं रहेगा, तो पौधों की संख्या बिल्कुल बेहतर होगी। ठीक है, दूसरा यह है कि जो नाली बनती है, जब मेड़ बनाते हैं तो नाली भी साथ में बनती है।
1: बिल्कुल,
0: जो नाली बनेगी, नाली के अंदर क्या होगा, बारिश का अगर कम हो रही है तो भी उसका पानी संचय होकर रह जाता है। ठीक है, तो एक जल संचय का काम भी करती है। तीसरा यह है कि अगर आपके खेत के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो उसको निकालने का, जल निकास का भी कार्य करती है
1: जी।
0: तो इस तरह से जो मेड़ है उसके अंदर बहुत चीज रहती है, और उसके बाद जैसे पौधा बड़ा होता है उसके अंदर जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, पोषक तत्व भी अच्छे मिलते हैं उसको, तो आपकी उपज लगभग 20-30% बढ़ जाती है अगर बारिश के मौसम के अंदर हम मेड़ पे बुआई करते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, अगर बीज दर की बात करें तो मक्के में बीज दर और डिस्टेंस कितना होना चाहिए पौधों से, पौधों की दूरी?
0: देखिए जो मक्का है, आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है जैसे हमने शुरुआत की थी, तो मक्का से एक फल भी होता है जिसको हम स्वीट कॉर्न कहते हैं।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, उसको हम फल में कंसीडर करते हैं क्योंकि उसको कच्चा खाते हैं, और जो फ्रूट्स में जो मिठास होती है, फेरुलिक एसिड होता है जिससे हम एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वैसे ही उसके अंदर होते हैं
1: जी।
0: तो उसकी जो अगर बुआई करनी है तो आपको 3-4 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है स्वीट कॉर्न का।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, और उसकी बुआई आप 2 फुट बाई 1 फुट पे कर सकते हैं, 2 फुट आपकी लाइन से लाइन की दूरी और 25-30 सेंटीमीटर आपकी पौधे से पौधे की दूरी पे आपको मक्का लगानी है स्वीट कॉर्न। अगर आप बात करें कि दाने वाली मक्का जो सबसे ज्यादा होती है अपने देश में, उस मक्का के लिए आपका बीज लगता है 8

0: किलो एक एकड़ का
1: जी,
0: एक एकड़ में 8 किलो बीज लगता है, और उस बीज के साथ आपको फिर उसको 60x20 पे लगाना है, 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 20 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी, और बीज लगभग आप 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा ही बोएं। ज्यादा उथला भी बोना अच्छा नहीं है, ज्यादा गहरा बोने पे भी पौधा धीरे निकलता है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे और बीज को अच्छे से ढक दें। जो भी बीज होता है उसको अच्छे से ढकने से आपका मिट्टी के साथ उसका जुड़ाव भी अच्छा होता है, जल्दी से वो पानी ले लेता है। दूसरा ये रहता है कि उसको कोई दूसरे जीव होते हैं ना, वो भी नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे हम लोग अच्छे से मक्का की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे बाजरे की अगर हम बात करें कि बाजरे में भी, तो क्योंकि बुआई करना है, अभी समय चल रहा है, जैसे आपके पास बारिश होती है तो बाजरे में भी आपको जो बीज है, सबसे बड़ी बात है उसको थोड़ा कम गहराई पे डालना है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई डालना है, और इसकी बीज दर आपकी 2 किलो, 1.5 से 2 किलो एक एकड़ की रहती है। तो बाजरे में बीज काफी कम लगता है, और बहुत ही उच्च क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे जो भी मार्केट में या फिर जहां से भी संकर किस्म मिलती है, तो उनको आप बोइए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसकी जो पौधों की संख्या और इसमें भी लगभग जो मक्का के अंदर बुआई करते हैं वैसे ही इसके अंदर की जाती है।
2: जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उन्नत किसान, और आज जो विषय है अगेती फूलगोभी, अगेती आज हम बात कर रहे हैं टिकाऊ खेती हेतु मक्का और बाजरा की बुआई। तो और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शंकरलाल जाट, और अगर आप संबंधित विषय से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो जरूर सीधे फोन कीजिएगा 2342-1081 और 2342-1083 पे, सीधे हमारे डॉक्टर साहब से आप आज विषय से संबंधित जानकारी ले सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब जैसे अगर हम लोग बात करें उन्नत किस्मों के बारे में, तो संकर किस्मों का जिक्र आपने किया, तो इसके अलावा और कौन कौन से
2: उन्नत किस्में हो सकती
0: हैं? उन्नत किस्में जिसमें आपकी संकर किस्में, इन दोनों ही जो आपकी फसलें हैं इनमें संकर किस्मों का बहुत प्रचलन है, और हर जगह के लिए
2: जी,
0: हर तरह की जलवायु और मिट्टी परिस्थितियों के लिए अपने संकर किस्में उपलब्ध
2: है। ये हम बात कर रहे हैं कौन से?
0: दोनों ही फसलों, जवार और मक्का के लिए, बाजरा और मक्का के लिए, दोनों में ही संकर किस्में। अगर बात करें तो बाजरा में लगभग आपका 70% के आसपास जितना भी भूभाग है उसके ऊपर संकर किस्मों का प्रचलन है, और मक्का में भी लगभग 70-75% जो मक्का है वो आपकी संकर होती है। ठीक है, तो जो संकर है उसमें एक ही चीज का मतलब ध्यान रखा जाता है कि जो भी अपनी साधारण मक्का होती है उनमें जो भी बी जो कीड़ा नहीं लगता है, बीमारी नहीं लगती है, उसको हम दूर हटाते हैं, और हर एक से एक एक जैसे एक नर और एक मादा बनाते हैं, और वैसे का वैसे कुछ संकर का आप देखेंगे तो उसका बीज गुणवत्ता वैसी ही होती है जैसे हमारे पास देसी किस्में, लेकिन उसके अंदर रोग कम होता है, कीड़े बीमारी कम होती है, तो इस वजह से उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। तो उसके अलावा जो दूसरी किस्म होती है संकर किस्म का बीज, इसके साथ नेगेटिव पॉइंट है कि सबसे बड़ा कि इसको हर बार हमें खरीदना पड़ता है। ठीक है, और लेकिन जो दूसरी किस्में होती है जो संकुल किस्में कहते हैं कंपोजिट, जैसे पूसा कंपोजिट 1, 2, 3 है, दोनों मक्का में भी उपलब्ध है और बाजरा में भी है, तो इनका हम बीज 2 से 3 साल तक किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई ड्यूअल पर्पज के लिए लगाता है, जिसको दाना भी चाहिए और ये भी चारा भी चाहिए, और प्लस अगर अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो कभी कभी संकर और संकुल किस्में में भी कभी कभी किसान भाई ठीक उत्पादन ले जाते हैं, और जहां जलवायु परिस्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है कभी कभी उस परिस्थिति में भी संकुल किस्मों का चयन भी किया जा सकता है।
2: जी, तो अगर हम फसलों की बात करें तो क्या इनके साथ हम दलहनी फसलों को भी लगा सकते हैं?
0: अच्छा, जो आप अंत्य फसलीकरण कर रहे हैं तो ये मक्का और बाजरा दोनों ही फसलों में, मक्का के अंदर देखें तो हम लोग सोयाबीन तिलहन फसल है, मैं वैसे बाकी सारी किस्मों सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, तो इनमें भी आपका जो वातावरण से जितनी भी नाइट्रोजन होती है जिससे यूरिया बनने की एक फैक्ट्री है इनके अंदर सोयाबीन और मूंगफली में होती है, तो मक्का के साथ इसका सह फसलीकरण किया जा सकता है। मक्का की 2 लाइनों को आप साथ में लगा सकते हैं और उसके बाद में दूसरों को उसके बीच में आप इनकी लगा सकते हैं 2-2 लाइनें। ऐसे ही मक्का के साथ आप उड़द मूंग और अरहर की खेती भी कर सकते हैं। अरहर की मक्का के साथ खेती करना इस सीजन में बहुत लाभदायक है। क्या है कि अरहर की जो फसल है काफी लंबी होती है, जब मक्का कट जाती है उसके बाद उसमें फलियां आना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 4 लाइनें आप मक्का की लगाइए, 1 लाइन आप अरहर की लगाइए, और जब आपकी अक्टूबर नवंबर के महीने में जब आपकी मक्का कट जाएगी उसके बाद आपकी अरहर की फसल आप जनवरी फरवरी में इसको काट सकते हैं। ऐसे ही बाजरे के साथ आप मूंग है काफी अच्छे से ले सकते हैं, तिल को अच्छे से ले सकते हैं, और आपके साथ मोठ है, इन फसलों

0: का अच्छे से अंत्य फसलीकरण किया जा सकता है। और कुछ क्षेत्रों में आप जो चावला है जिसको काउपी कहते हैं, लोबिया कहते हैं, लोबिया की भी अंत्य फसलीकरण बाजरे के साथ किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि मक्का और बाजरा जो है, जैसे जिस इलाके में पानी बिल्कुल भी ना पड़ता हो, तो वहाँ बाजरा लगाया जाए या मक्का?
0: देखिए, जो सबसे ज्यादा बारिश हो रही है
1: जी,
0: उन इलाकों में आप चावल लगाएं, ठीक
1: बिल्कुल
0: है, जो 1200 सेंटीमीटर से ऊपर है, और जहां 1200 से 800 के बीच में है या 700 से 1200 के बीच में, वहां पे आप मक्का लगाएं, और 700 से नीचे जहां है वहां बाजरा लगाएं। तो बाजरा और मक्का के जो जोन है वो आपके बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है
1: जी।
0: जो बाजरा सबसे कम पानी में पैदा होने वाली फसल है, अगर बाजरा मक्का और गेहूं चावल की बात करें, ठीक है, तो जहां बहुत कम पानी होता है, बारिशें कम होती है, या जहां अच्छे समुचित जल निकास की व्यवस्था है, अगर हम यूपी में भी बात करें तो बाजरा का बहुत अच्छा एरिया है, अलीगढ़ और इसकी तरफ एटा, अलीगढ़ एटा की तरफ, वहां पे आपको देखेंगे तो बहुत अच्छी बाजरा की फसल आती है। तो अगर प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करने की बात करें तो बाजरा इसमें सबसे ऊपर आता है। और दूसरी बात है, ये मिलेट है, और हम जानते हैं कि मिलेट बहुत ही पोषक होते हैं, ये आयरन से भरपूर है, बाकी इनके साथ जो एंटीऑक्सीडेंट है इनसे भी भरपूर रहता है। तो बाजरा कई मायनों में इससे ज्यादा ठीक है, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता थोड़ी मक्का से कम रहती है। तो जहां मक्का उपयुक्त है वहां मक्का बोए, और जहां बाजरा उपयुक्त है वहां बाजरा बोए। तो इनका जो पानी का, जहां बारिश कम होती है बिल्कुल वहां पे आप जो कह रहे हैं वहां पे आपको बाजरा बोना ज्यादा लाभदायक है।
1: जी
2: जी हाँ, और कार्यक्रम तो आप सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ गौतम गर्मी बहुत हो रही है ना?
1: बिल्कुल।
2: तो गर्मी में मुझे लगता है कि हमारा ये जो लोकगीत है शायद थोड़ी सी ठंडक पहुंचा दे। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल अंतराल।

0: चलिए अब हम वापस आ जाते हैं, आज दिल्ली में वापस गर्मी का इन मजा लेते हैं और शिमला घूम के तो हम आ ही गए हैं। चलिए अब वापस हम उन्नत किसान में बात करते हैं, टिकाऊ खेती हेतु मक्का और बाजरा की बुआई आज विषय पे चर्चा हो रही है। तो डॉक्टर साहब अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि खाद और बीज की बात करते हैं, तो किस तरह से खाद का क्या रेशियो रहेगा, किस तरह से हमें खाद देते वक्त सावधानी रखनी है, बीज को किस तरह से उपचारित करना है, इस बारे में भी हमारे किसान भाई थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे।
1: देखिए ऐसा है, जो ये फसलें हैं इनमें आपको बेसिक कुछ आधार डोज पे कुछ खाद देना होता है, ताकि क्या होता है कि इसमें फसल में बढ़वार अच्छा होता है। जो फास्फोरस वाले जो भी पोषक तत्व वाला खाद होता है वो बुआई के समय हमें देना होता है। पौधे से 5 सेंटीमीटर, जो बीज जहां डाल रहे हैं 5 सेंटीमीटर या उसके नीचे या उसके बगल में देना है, ठीक है। अगर बीज के संपर्क में आपका खाद रहता है तो आपका बीज सड़ने की संभावना रहती है, और बीज का जो अंकुरित पौधा होता है कभी कभी वो जल भी जाता है और मर भी जाता है, ठीक है। तो कभी भी बीज को खाद के साथ संपर्क में नहीं बोएं। तो आपको एक बैग डीएपी इस बुआई के समय देना होता है आधार डोज में, और 6 किलो आपका जिंक सल्फेट एक एकड़ में, एक बोरी डीएपी और 6 किलो जिंक सल्फेट बुआई के समय देना है। और अगर आपकी जो मिट्टी है उसकी जांच के आधार पे, अगर आप में मध्यम वाली जो मिट्टी है तो उसमें आपको 10 से 20 किलो यूरिया भी अगर साथ में देना चाहे तो दे दें, नहीं तो आपका जो आधार डोज है इसमें केवल जिंक सल्फेट और डीएपी है, उसके आधार पे भी आपकी फसल अच्छी चलने लगती है
2: जी।
1: रही बात आपका बीज उपचार की, जितना भी बीज है आप जहां से अगर आपने खुद पैदा किया है तब आपको बीज उपचार की जरूरत पड़ती है, तो 22-3 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित करें। उसके बाद बीज को आप फोर्टेन या डिओ जो आता है क्लोरेंटाइनिप्लोन प्लस थाइमिथोक्सम का मिश्रण है, 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज, 4 से 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो ये दोनों फसलें हैं इनके बीज को आप स्यूडोमोनास कल्चर से भी कर सकते हैं, जो आपका बायोफर्टिलाइजर है। और दूसरा उसके साथ साथ आप इनको एजोस्पिरिलम या एजोटोबैक्टर से भी आप इनका बीज का उपचारित कर सकते हैं
2: जी।
1: तो ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। इनका जो फसल है उनमें आपको यही ध्यान रखना है, जिन खेतों के अंदर आपने मिट्टी की जांच कराई है और उनमें मिट्टी की पोषक तत्वों की मात्रा मध्यम है तब आपको ये मैंने डोज बताई वो रखनी। अगर इसकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो उनको 25% कम करनी है। जैसे मैंने एक बैग डीएपी बताया तो उसको आपको 1.25 बैग ही देना है अगर आपकी पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है। अगर पोषक तत्व की मात्रा कम है तो आपको इसको 1.25 गुना करना है, मतलब 1.25 बैग देना है, ठीक है। तो मिट्टी की जांच का बहुत महत्व है, किसान भाई अगर मिट्टी की जांच नहीं करे तो करवाएं, और अगर उसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व हैं तो ज्यादा बाहर से

0: लेने की जरूरत नहीं है, महंगा भी पड़ता है, इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, मैं अपना जो जल है नीचे वो भी प्रदूषित होता है। तो आप उतना ही खाद डालें जितना जरूरत है, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, जितना भी गोबर का खाद है, दोनों ही फसलें इनके अंदर गोबर की खाद 5 टन एक एकड़ में अगर गोबर की खाद डाल देते हैं तो इनमें मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और पौधों का विकास भी अच्छा होता है।
1: जी हाँ, और अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मक्का और बाजरे की, तो अगर हमारे किसान भाई इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो बहुत सारे किसान भाइयों का ये भी प्रश्न रहेगा कि मक्का और बाजरा की ही हम खेती क्यों करें, क्या फायदा है किसान को मक्का और बाजरा की खेती करने से, तो उनको किस तरह से हम इस ओर आकर्षित कर सकते हैं।
0: मक्का और बाजरा की जो खेती है, देखिए मैं पहले बाजरे की बताता हूँ। जो बाजरे की खेती है वो आपकी बिल्कुल पर्यावरण पॉजिटिव है, ठीक है, पर्यावरण के प्रति बहुत लाभदायक है। किसान भाई इस बाजरे की खेती सालों साल तक कर सकते हैं, पानी कम लगता है, खाद बीज कम लगता है, बीमारियां भी कम लगती है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इससे जो घास मिलती है, चारा मिलता है, वो चारा बहुत ही पौष्टिक होता है, अच्छा चारा होता है, तो आपके पशु को खिला सकते हैं बढ़िया से। और इससे जो बाजरा मिलता है उसके अंदर भी खनिज लवण पोषक तत्व अच्छे रहते हैं। तो भारत सरकार का जो मिशन है मिलेट का, हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया था अभी 2 साल पीछे, उनमें ये अभी विश्व में इसकी बहुत बड़ी मांग बढ़ी है, तो मार्केट में बाजरे से बने हुए बहुत सारे उत्पाद आने लगे, तो इससे किसान भाइयों से भी मक्का का जो बाजरा है उसकी खरीद बढ़ी है, उसका अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो इसके अच्छा मूल्य लेने के लिए आप बाजरे की फसल को लगा सकते हैं। दूसरा, ये समय भी कम लेती है चावल की बजाय, ये काफी समय कम लेती है, 1 महीने पहले पक जाती है
1: जी।
0: तो आपका समय बचता है, आप दूसरी फसल को जल्दी लगा सकते हैं। अगर आपने गेहूं जल्दी लगाया तो आपको एक पानी कम लगेगा और गेहूं की उपज भी बढ़ेगी। और अगर मक्का की बात करें तो मक्का आज की डेट में अपने देश में औद्योगिक फसल बन चुकी है, पिछले 3 साल में इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखें जहां 38 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था, आज की डेट में 55 मिलियन टन प्रोडक्शन है, पिछले 3 सालों में इतना बड़ा है। उसके बावजूद भी हमारे देश में मक्का के अभी मांग बढ़ रही है, हम विदेशों में निर्यात भी कर रहे हैं इसको, लगभग 2.5 मिलियन टन और 10 मिलियन टन भी हम निर्यात कर सकते हैं, तो निर्यात की अभी काफी है। दूसरा, इसका जो बायो इथेनॉल बनने लगा है, बायो इथेनॉल में मक्का लगभग 12.5 मिलियन टन जा रही है, और आने वाले सरकार के निर्णय के अनुसार हो सके ये और भी बढ़ने की संभावना है, ठीक है
2: जी।
0: तो जो जहां मुर्गी खाने में आहार में जा रही है, पशु आहार में जा रही है, बाद में बायो इथेनॉल आ गया, एक्सपोर्ट भी है,
2: बिल्कुल
0: इसको लेते हुए किसान भाई निर्णय ले सकते हैं कि ये फसल ऐसी है, भविष्य की फसल है, आने वाले समय में इसकी डिमांड और भी लगातार बढ़ती जाएगी, जितनी आप पैदा करेंगे उस हिसाब से आपको इसमें लाभ ज्यादा मिलने की संभावना रहती है।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारा जो आज का विषय है टिकाऊ खेती हेतु मक्का और बाजरा बुआई, और इतनी विस्तार से आपने जानकारी दी, जैसे किसान भाइयों को क्यों करनी चाहिए, सरकार भी जो मोटे अनाज सृजन को लेकर ध्यान दे रही है, तो कैसे किसान भाई इस पर आए, एक बार आप अंत में चलते चलते कि चावल और गेहूं को छोड़ के कैसे।
0: देखिए, आप जो चावल को छोड़ के अगर मक्का और बाजरा उगाते हैं तो आपका जो भविष्य की पीढ़ी है वो आपकी सुरक्षित रहेगी, आप उसको अच्छी जमीन, अच्छा पानी और अच्छा जलवायु देके जाएंगे, और ये आपके लिए नहीं आपके आने वाली पीढ़ियों तक के भी अच्छी है और आपको कमाई का भी अच्छा जरिया बन सकता है।
1: जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब, आज स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसान भाइयों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा, kkbongold@gmail.com पर आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं साझा कर सकते हैं, और किसी अन्य विषय पर अगर आप चर्चा चाहते हैं तो भी वो विषय आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सीमा सती,
2: बिल्कुल मैं हूँ गौतम, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को
1: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देशभर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने

0: बनाने के तरीके बदल गए हैं। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। इस योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जीरामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ाया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में एयर मार्शल दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण अभियानों और अभ्यासों में भाग लिया है। इनमें ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े धान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India Initiative has redefined governance, empowered citizens, and accelerated all-round development. The Prime Minister said 11

नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। आपके साथ है हम रूमी मलिक। और जुलाई शुरू हो चुका है, आज पहली तारीख है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। किसी को तनख्वाह मिलती है पहली तारीख को, तो किसी के बैंक में इंटरेस्ट आता है पहली तारीख को। पहली तारीख को हम कुछ न कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं, है ना। आज से क्या सोचा है, क्या करोगे? एक्सरसाइज ज्यादा कि चाय कम? हाँ वैसे फल खाने शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस भी है। यस यस यस, मैं तो बहुत बड़ी फ्रूटेरियन हूँ, फल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन सबसे अच्छा फल क्या होता है? सबसे अच्छा फल होता है मेहनत का फल। जी हाँ, मेहनत का फल इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है। और उस डरने की भी कोई बात नहीं है, वो कोई शुगर वुगर भी नहीं कॉज करता। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम इस खूबसूरत से गीत के साथ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन, आपका ही अपना प्रोग्राम फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम। हमारे पास हैं शोभापुर गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता कौर जी, और ये सुनना चाहती हैं गीत, सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं। देखो पहले गीत में हमने आपको बता दिया है ना कितने खूबसूरत मोड़ आते हैं, गाना भी रेडियो पे था, रेडियो स्टेशन पे गा रहे थे ना, कौन गा रहे थे, राजेश खन्ना है ना। और बारिश के मौसम के बारे में, बारिश का मौसम तो शुरू हो गया, वैसे मानसून की प्रिडिक्शन कल से थी तो भाई आ ही गया आज कल में। तो अब हम अटेंडेंस लेते हैं, हरजिंदर सिंह भाटिया, प्रकाश वर्मा, विजय सुरलकर, सोहिल शेख, मसरूर हसन, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद सैयद अबासी, अंकित कांगरा, देवशंकर तमूरिया, उत्तम सिंह जिंगहेल, आगे बढ़े बुधराज खोलवाल, कमलकांत गुप्ता, गंगाधर सवनकर, फारूक अली खान, कुमकुम जी, संजय साहूपुरतियाक, असलम मंसूरी, सदानंद मंदूरकर, संजय ढींगिया, कमाल ही हो गया, लखपतराज, नवाब अहमद, मोहम्मद कमर। देखो आज हमने कितनी अच्छी तरह सारे नाम एक साथ ले लिया, और अच्छे बच्चों की तरह आपने भी हमको सिर्फ एक एक मेल ही भेजा। अच्छा मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि सारे शहर में ये गीत सुन लें, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या क्या खाना पीना होता है, क्या एहतियात बरतनी होती है सावन के मौसम में। ओके आइए सुनते हैं गीत।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा गीत। हम तो ये कहेंगे अपने पसंदीदा गीत, अपने दोस्तों के पसंदीदा गीत। गीत तो गीत है ना, मधमाते गाते गुनगुनाते। खैर वो तो आएगा 5:10 पे, हम ही होंगे उस कार्यक्रम में। लेकिन अभी हमारे साथ है बोधराज कोरवाल जी, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका, और ये सुनना चाहते हैं गीत कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। देखो हम कितना गर्मी गर्मी गर्मी कर रहे थे और कैसे बारिश का मौसम आ गया। दिव्य ऋतु कहा गया है वर्षा को वेदों में, और वर्षा

मौसम बहुत अच्छा होता है। थोड़े से दिक्कत यह आ जाती है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें कीड़े आदि लगने की संभावना होती है, तो शाक या साग नहीं खाया जाता। आप कभी भी देखिए वर्षा के मौसम में, अब तो हमारे भोले बाबा के सावन के व्रत भी अभी उसमें समय है, लेकिन वो भी आएंगे जब, है ना, श्रावण के सोमवार जो आएंगे, तो ये हरी पत्तेदार सब्जियां जो है थोड़े अवॉइड की जाती हैं। बाकी कभी कभी ऐसा होता है पेट में अगर कृमि या कीड़े हो जाए तो उसके लिए प्याज बहुत खाया जाता है, कच्चा प्याज जो लोग खाते हैं वो खा सकते हैं। बाकी तो अभ्यंग के लिए, मालिश के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि स्किन इतनी ज्यादा मॉइस्ट हो जाती है, तो जिन भी लोगों का वात बड़ा हुआ है या तकलीफ होती है, दर्द होते हैं जोड़ों में या जैसे भी, तो उसमें तेल मालिश बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है। और खाने में क्या, जिन लोगों को खट्टा रस अगर पसंद है ना, तो वो इस मौसम में बहुत खाया जाता है सचमुच में। अचार वगैरह जो होते हैं ना, चटनियां, ये दरअसल पाचक होते हैं। एक जमाने में इनको विलन बना दिया गया था, लेकिन अब जब से हमारी सोच में भारतीयता लौट आई है तो हमें अब समझ में आता है कि वाकई में जैसे जिंदगी में थोड़ा सा चटपटापन अच्छा लगता है ना, वैसे ही खाने में भी जरूरी है। फिलहाल तो ये मीठा मीठा गाना।

गोल्ड। एफएम गोल्ड पर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी नई चीज आए, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो नया एक्सपीरियंस हो, तो वो बड़ा ज्यादा जरूरी है कि आप उसे अपना लें। जब आप उसे अपनाते नहीं, आप कोई कहे मुझे तो बारिश बड़ी गंदी लगती है, अरे बारिशें अपने आप में गंदी नहीं है। हाँ ठीक है, अगर कभी ऐसा हो

की सड़क टूटी हुई है या कहीं पे पानी भरा हुआ है, तो आपको वो दिक्कतें हो सकती हैं, है ना, अनुभवजन्य वो बातें हैं, ठीक है। लेकिन बारिश अपने आप में तो भाई चाहिए ना, पौधों को चाहिए, खेत खलिहानों को चाहिए, मौसम पे बारिश आनी भी चाहिए, मौसम और मौके पे हमें ईमेल भी पढ़ना चाहिए। अरे कमलकांत गुप्ता जी ने लिखा कि रूमी जी रुलाना मत, हमारा मेल पढ़ देना। अच्छा मैंने पढ़ा, उसमें उनके पूरे फैमिली के पूरे टब्बर के नाम थे, लेकिन उसमें गीत की फरमाइश तो थी नहीं। अब क्या मैं रू, नहीं मैं नहीं रोऊंगी। कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, जी ये मेरी बंधु परिवार हैं भाई मेरे, और कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनना चाहते हैं कौन सा गीत, सुनना चाहते हैं आसमान से आया फरिश्ता, ये गीत सुनते हैं हम, आइए।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि गाने उनको बहुत पसंद आ रहे हैं, हो सके तो हमारा नाम भी ले लेंगे। हाँ हाँ ले लेंगे, जबान कोई हमारी दुखती थोड़ी है, नाम लेने पे कोई टैक्स थोड़ी है अभी तक। नमस्कार रूमी बहना जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एफएम गोल्ड के लिए बेशुमार मोहब्बतें, मानसून सबके लिए रहमतों की बारिश करे, यही दुआ है। अच्छी दुआ है ना। किसने लिखा है? सतीश अनेजा जी ने, चंडीगढ़ से। और ये सुनना चाहते हैं रिमझिम गिरे सावन, ये गीत तो बहुत अच्छा है। आइए ना, मौका भी है दस्तूर भी है, तो क्यों ना ये गीत सुन लिया जाए।

जारी है कार्यक्रम मन भावन। कितनी सारी ईमेल्स आ रही हैं, कमाल कमाल हो रहा है आज तो। विजय सुरलकर जी क्या लिखते हैं देखें, जानकारी और गीतों से भरपूर कार्यक्रम का आज मजा आ रहा है, लाजवाब पेशकश। रोमी दीदी बहुत ही प्यारा गीत है, जरूर बजाना प्लीज। बिल्कुल आपका नहीं तो किसी और का तो प्ले करेंगे इसी। विजय जी देखो मुझे माइकल कश्यप नाम देखो, माइकल कश्यप जी कहाँ से लिख रहे हैं, गांव दूधली जिला मुजफ्फरनगर लिख रहे हैं। गीत है इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में, फिल्म है जुर्म की पुकार। और रोमी मलिक देखो, रोमी लिख दिया है, ROMI कर दिया है, मैं बात नहीं करूंगी ठीक है ना, माइकल को फिर मैं कुछ और बना दूंगी नहीं तो। रोमी मलिक जी 2 साल बाद मेल भेजा है, प्लीज गीत सुनवा दो। देखो माइकल जी अंग्रेजी में एक चीज कहते हैं जिसको कहते हैं कि शूटिंग इन द डार्क, है ना, अंधेरे में तीर चलाना। अब मैंने तो ये गाना सुना नहीं और जुर्म की पुकार टाइप की फिल्म भी नहीं सुनी, पर मैंने ढूंढी और देखो मेरे कंप्यूटर जी कितने अच्छे, उन्होंने निकाल भी दिया। अब ये गीत हम सुनते हैं ठीक है, इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। आओ खाएं कस्में कि देंगे एक दूसरे का साथ आरजे और लिसनर।

जान गए आपको माइकल कश्यप जी, बड़ा अच्छा गीत आपने हमको सुनाया सुनवाया। अच्छा जी, अब हमारे पास बड़ी सारी मेल्स आई हैं, जरा मैं देख लूं कौन कौन सी है। रिस्पेक्टेड जी रूमी मलिक जी, आपको पहली बारिश की बूंदे मुबारक हो जी, आपके जीवन में भी सदा खुशियों की बरखा होती रहे। अहे गीत जो है कहते हैं आपकी पसंद का ही। सहारनपुर से लिख रहे हैं आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, सैयद मसरूर। क्या बात है जी, अभी मैं पीछे कुछ दिन पहले गई थी कहीं पे, तो बीच में सहारनपुर का स्टेशन आया था और 35 मिनट रुकी थी ट्रेन हरिद्वार जाने वाली। हाँ जी, साथ में दिग्दर्शन कौर जी जो है कहती है आप मेरी गुरु बहन है और आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है तो 30 तारीख से, तो आप हमें इसके बारे में बताएंगे, भक्ति वाला महीना है। भक्ति वाला महीना तो है, बिल्कुल है। भारतीय परंपरा में बड़ी सुंदर सी बात कही गई है कि ये जो मन है ना, सबसे ज्यादा यही दुखी करता है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते मत चालिए पलक पलक मन और। तो मन को बांधने के लिए होता है मंत्र। जी हाँ, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब गहन अध्ययन किया तो उन्हें प्रकृति की तरफ से ही, कायनात की तरफ से ही ऐसी ध्वनियां, ऐसे मंत्र मिले जिनका बहुत ही हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और आकांक्षाएं मनोकामना भी पूरी होने लग गई। अब हर किसी को यही चाहिए कि हाय मेरी बात मानी जाए, मेरा काम बन जाए, यही हम चाहते हैं ना। और क्या चाहते हैं, भगवान को क्यों मनाते रहते हैं, मेरा काम बन जाए। तो जब चौमासा आता है, अब देखिए बारिशें आ गई हैं, तो पहले क्योंकि ये बड़ी अच्छा एक साइकिल था हमारा प्रकृति का, नेचर का, 4 महीने लगातार बारिशें होती थी और किसान क्या करे भाई, खाली छोड़ के वो तो बैठा हुआ है ना। तब क्या होता था, गांव गांव में भागवत के या रामायण जी के बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े 4 महीने किसान या जितने भी लोग हैं, है ना, परंपरागत तो सभी लोग सुनते थे कथा कहानियां। तो ये कितनी ज्यादा सुंदर बात है। आप देखो हमारे देश में पुस्तक की जरूरत नहीं है, संस्कार जो है ये हर किसी के अंदर है ना, व्यवहार में ही संस्कार है। क्योंकि आप देखो ना, जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, अब जरूरी नहीं है कि किसी को पढ़ना आता हो, लेकिन उसे पता है रामायण में क्या घटित हुआ, क्या सही है क्या नहीं है। तो अच्छे बुरे की समझ होना बहुत बड़ी बात है। दिल से शुक्रिया कौन कर रहे हैं मुझे, कमलेश, सचिन, मुकुल और दीपांशु। फिल्म बदलते रिश्ते मेरी सांसों को जो महका रही है। अच्छा चलो ये गीत सुना देती हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर कुछ और भी हमें गीत लेने होंगे। टन टन डीके परिहार जी डीके परिहार जी लिख रहे हैं, हमारा तो न मैसेज इंक्लूड होता है न फरमाइश बेटी, बताओ जरा, इतनी कंप्लेंट करोगे तो बात नहीं करेंगे हम। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हमें लिखा ही नहीं है कि कौन सा गीत ये सुनना चाहते हैं, है ना, तो हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये वाला गीत सुना सकते हैं आपको जो डिमांड किया अभी, मेरी सांसों को जो महका रही। आइए सुनते हैं ये गीत।

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है और किसी भी तरह से कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि सभी लिसनर्स के नाम लिए जाएंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं तो अपने प्रोग्राम में आपकी अटेंडेंस भी लेती हूँ। अब अगर आप मुझे मैसेजेस भेजेंगे और ये हक से डिमांड करेंगे तो ये हक नहीं है, हमारा प्रेम है। याद रखिएगा, मोहब्बत का रिश्ता जो है ना दोस्तों, बड़ा नाजुक होता है ना। जरा सा भी उसमें कुछ इधर उधर बदलाव हुआ तो गांठ लग जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लिसनर्स देर से जुड़े हैं और कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं हमारा मैसेज लिया जाए। क्यों मैं आपके सिर्फ नाम पढ़ने के लिए मैसेज ले लूं? आपके क्या कंट्रीब्यूशन है बताएं, ऐसा क्या योगदान किया आपने, मुझे कोई एक अच्छा विचार दिया या कोई बात की मीठी, या किस तरह से, मतलब आपका नाम किस लिए, हाउ डू यू क्वालिफाई बताएं। तो हमारे साथ मोहम्मद इरशाद भी हैं, उन्होंने लिखा है किसी भी गीत में शामिल कर लो, ज्यादा इंतजार मत करवाओ वरना हम रो देंगे। इतना क्यूट मैसेज है, कस्बा बिलराम से इन्होंने लिखा है। मोहम्मद इरशाद साहब, आप देखो आपका मैसेज मैंने पढ़ भी दिया है ना। अब काफी लंबे समय से गर्मी सह रहे थे और मॉनसून आया देर से। कहते हैं जिंदगी में पहले बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और फिर राहत, सुकून और आराम भी मिलता है। क्या बात है, ग्राम करेली बरेली से। अच्छा, ऐसा भी है, ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी लिख रहे हैं, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। अच्छा, अब धर्मेंद्र चीपा जी जो है ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं किन किन और भी आइडिया से कई लोग भेजते रहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे बहुत नई फिल्मों के गीत भेजे हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं बजा पाऊंगी, है ना। ओ मम्मी डैडी टाइप के गीत यहाँ पे नहीं बजते हैं, इतनी समझ अब तो होनी चाहिए। अशोक वर्मा जी, हम ये कह रहे थे कि आपका वाला गीत सुन लें जरा, एक सेकंड देखते हैं, पहले तो मैं ये गीत जरा पहले देखूं है ना। देखो ना, हाँ जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि अब मुझे लगता है आप सभी क्योंकि सावन के ही पीछे पड़ गए तो सावन वाला ही गीत सुना जाए। तो ये जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुडाना, है ना। अच्छा, खंडवा से भी हैं, लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, तो पूरे परिवार ने लिख दिया। मास्टर खिल्लू परवेश जी नमस्ते, ये लिख रहे हैं आपका हर पल खुशियों से भरा हो। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, तो ऐसा तो है ही सही। तो मैं कह रही थी कि आखिरी गीत रहेगा अब, है ना। तो मुस्कुराना, चार्ली चैप्लिन कहा करता था कि मुझे बारिश इसलिए पसंद है क्योंकि भीगती हुई बारिश में मेरे आंसू नहीं दिखाई देते। कितनी पॉइग्नेंट बात है ना, कितनी मार्मिक बात है ना। तो ना हम खुद रोएं ना दूसरों को रुलाएं, मीठा बोले लंबी देर तक हमें लोग याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब इस कार्यक्रम का, मन भावन का, ये गीत आपके सामने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल। ये 6,970 करोड़ रुपीज की है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीकों को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्षेत्र में एक को तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में एयर मार्शल दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण अभियानों और अभ्यासों में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिल देने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?

0: Right by 10th July 2026. And the website is www.pavanhans.co.in. I repeat, it is www.pavanhans.co.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आमंत्रित कर रहा है टीजीटी समाज विज्ञान पद के लिए आवेदन। पद नियमित है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.sainikschoolkorukonda.org। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। मुंबई पत्तन प्राधिकरण में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले उपनिदेशक वर्ग 1 के एक पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी विवरण मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in पर उपलब्ध हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026। वेबसाइट का पता फिर से सुन लीजिए www.mumbaiport.gov.in। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे

0: उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज के डेटलाइन सेगमेंट में बात करेंगे धरती पर भगवान का रूप माने जाने वाले, यानी जो डॉक्टर्स हैं, जो कई बार मुश्किल हालात में हमारे लिए बन जाते हैं देवदूत। आज के संक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून जागृति। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट, एज यू जस्ट मेंशन्ड, लेट अस एक्सटेंड आवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल द डॉक्टर्स ऑन नेशनल डॉक्टर्स डे टुडे फॉर ऑल द पेन यू टेक अवे, फॉर ऑल द लाइव्स यू सेव टुडे एंड एवरी डे। We are grateful for your selfless service. You are the true guardians of our health, working long hours to bring healing and hope to countless families. Greetings to all the doctors on the occasion of the National Doctors' Day and salute to the caregivers of the society. So shall we now begin with the news making headlines at this hour of the day, Jagriti?
0: Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ है।
1: इंक्रीज्ड वेजेस अंडर विकसित भारत जी राम जी एक्ट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम टुडे।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।
1: Chief of Army Staff General Dheeraj Seth takes charge as the 31st Army Chief, stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment.
0: Afghanistan ne Pakistan mein ISIS ke thikano par hamla kiya.
1: Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in next 2 days.
0: और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।
1: And it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And as Jagriti had all mentioned in the beginning, that we will be talking about National Doctors' Day today. Every year on 1st of July, India celebrates National Doctors' Day to recognize the invaluable contribution of doctors to society and honor their dedication to saving lives. The occasion pays tribute to medical professionals who work tirelessly to care for patients, often in demanding and high-pressure environments. National Doctors' Day was first observed in 1991. The date, 1st of July, was chosen because it marks both the birth and death anniversary of Dr. Bidhan Chandra Roy. Dr. B.C. Roy was born on 1st of July 1882 and passed away on this very day in the year 1962. He was a physician, educator, freedom fighter and a statesman. He also served as the Chief Minister of West Bengal and made lasting contributions to healthcare, education and public service. He was awarded the Bharat Ratna in 1961 for his contribution to the nation. His life continues to represent service, discipline, medical excellence and commitment to society.
0: जी, यानी 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे, इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये दिन भारत के एक ऐसे महान सपूत को समर्पित है जिन्होंने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियाद रखी। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय केवल असाधारण डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी, महान शिक्षाविद और आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता भी थे। नेशनल डॉक्टर्स डे हेल्थ केयर वर्कर्स के त्याग, दया और समर्पण को सराहने और अच्छी क्वालिटी वाली हेल्थ केयर की अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मौका है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, यानी मास्क के पीछे इलाज करने वालों का इलाज कौन करता है। यह विषय दूसरों की देखभाल के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देने वाले डॉक्टरों की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सेहत का ध्यान देने के महत्व पर बल देता है।
1: यस जागृति, मॉडर्न हेल्थ केयर डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट। यू मे विजिट अ डॉक्टर व्हेन यू आर अनवेल, worried about a symptom, planning preventive care, managing a long-term condition, or seeking reassurance for a loved one. In each situation, doctors do more than prescribe medicines. They listen, examine, explain, diagnose, counsel, and help you make informed decisions. National Doctors' Day reminds us that healthcare is built on both science and human care. It is a day to recognize the commitment doctors show in clinics, communities, emergency care, public health, research,

0: टीचिंग एंड ऑल्सो इन प्रिवेंटिव मेडिसिन।
1: जी, और कई बार अनुजा हमने और आपने ये अनुभव किया होगा कि जब हम बीमार होते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, हम क्लिनिक पर जाते हैं और डॉक्टर के साथ में हम जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, आधी बीमारी कई बार हमारी वहीं पर हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो जो जिस पेशेंट्स के साथ वो सुनते हैं और हमारा जो काउंसलिंग करते हैं वो भी मतलब काबिले तारीफ है। इसके अलावा नई जिंदगी की शुरुआत इन्हीं डॉक्टर्स के हाथों होती है, नवजात शिशुओं की देखभाल, माताओं की जो मदद करते हैं, इन्फेक्शन हो किसी को तो इसका इलाज, पुरानी बीमारियों को जिस तरह से मैनेज किया जाता है, सर्जरी करते हैं और हमारे जो ठीक होने की प्रक्रिया है इस पर भी नजर रखते हैं और परिवारों को मुश्किल मेडिकल स्थितियों को समझने में भी वो मदद करते हैं। और ये भूमिका सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं होती है बल्कि डॉक्टर बीमारियों को रोकने में भी मदद करते हैं, जिसमें कि वैक्सीन देना हो गया, वैक्सीनेशन जो प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन यानी कि आपको कौन सी बेहतर चीजें लेनी चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें, तो न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर काम करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट या लाइफस्टाइल में बदलाव, बीमारी के शुरुआती संकेत और हेल्थ से जुड़े जरूरी टेस्ट जितने भी होते हैं उनके बारे में भी ये डॉक्टर्स हमें जानकारी देते हैं और इस तरह से हमारी स्वास्थ्य का ये ध्यान रखते हैं।
0: Yes, a good doctor helps to understand our health without creating panic. They explain the risks, answer questions, and guide us towards the right next step. National Doctors Day celebrates this blend of knowledge, responsibility, empathy, and service. Nowadays, more patients now want to understand their health better. They want clear reports, convenient access to testing, and reliable guidance as well. Doctors also rely on accurate diagnostic support to make timely decisions. This makes collaboration between doctors, patients, and diagnostic partners more important than ever.
1: बिल्कुल, और डॉक्टर्स की केवल तारीफ करना ही काफी नहीं है बल्कि उनके रोल को और उनकी जो ड्यूटीज हैं, जो इमरजेंसी के टाइम पर उनकी ड्यूटीज होती हैं, हमने कोविड में देखा है कि डॉक्टर्स ने 36-36 घंटे बिना ब्रेक लिए, बिना अपने घरों में जाए, लगातार लोगों की जान बचाने के लिए जो वो योद्धा बने, उन्होंने जिस तरह से लोगों की जान बचाई और हेल्थ केयर सिस्टम को उन्होंने मजबूती दी, वो उसके लिए हमें उन्हें समझना चाहिए और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ को किस तरह से महत्व देते हैं, हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। आजकल जैसे लाइफस्टाइल बीमारी है, डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए वो आपको टेस्ट जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, लगातार निगरानी रखते हैं और आपको सलाह देते हैं जिससे कि जो भी ऐसी समस्याएं हैं अर्ली स्टेज पर उनका पता चले और उसके साथ साथ वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है, कितनी कैसे डाइट लेनी है और जो टेस्ट है जितने भी जरूरी उनको भी करवाने की जो सलाह देते हैं। तो डॉक्टर्स की सलाह हम लोगों को माननी चाहिए क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही है।
0: सर्टेनली जागृति, नेशनल डॉक्टर्स डे इज अ रिमाइंडर ऑफ द ट्रस्ट, एफर्ट एंड केयर दैट शेप एवरी हीलिंग जर्नी। इट ऑनर्स द डॉक्टर्स हु हेल्प यू अंडरस्टैंड सिम्टम्स, they also help us understand and manage illness, prevent complications and make informed choices for our health.
1: बिल्कुल, डॉक्टर्स डे के मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने देश भर के डॉक्टरों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने मानवता की सेवा में डॉक्टर्स के समर्पण, संवेदना, कौशल और अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि देश ने पिछले कुछ वर्षों में हेल्थ केयर सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति की, उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में देश की यात्रा में दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत पहल के माध्यम से किफायती हेल्थ केयर के विस्तार, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और डिजिटल हेल्थ केयर को तेजी से अपनाने को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में रेखांकित किया।
0: Even Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the doctors of the country on the occasion of National Doctors Day today. And in a social media post, Mr. Modi said that their hard work, compassion and commitment form the backbone of India's healthcare system. He added that their tireless efforts, often in the most challenging circumstances, have earned the trust and gratitude of countless people.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत ने देशों के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काफी तरक्की की है। मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है, जबकि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स

0: में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। ये अभूतपूर्व विकास डॉक्टर बनने के इच्छुक लोगों के लिए मौके अधिक दे रहा है, एक मजबूत हेल्थ केयर वर्क फोर्स तैयार कर रहा है और ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि अच्छी मेडिकल सुविधाएं देश के हर कोने तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है, इसलिए देश के डॉक्टर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने, मेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाने, इनोवेशन को अपनाने और सभी के लिए सस्ती और आसानी से उपलब्ध हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।
1: एंड अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी फॉर इट्स अनवेवरिंग डेडिकेशन। इन अ वीडियो मैसेज मिस्टर नड्डा लॉडेड द डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर देयर एग्जेम्पलरी प्रोफेशनलिज्म एंड कंपैशन service to humanity, describing doctors as the cornerstone of the country's healthcare system. He recalled their tireless work to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. He added that doctors also have played a vital role beyond hospitals and clinics by serving as advocates for health equity, preventive health care, public health awareness, and also social justice. The minister further expressed hope that the selfless commitment and resilience of doctors continue to inspire the nation and strengthen the collective pursuit of a healthier India.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या विशेष है।
1: एंड द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और एमएसएमई सेक्टर कंटिन्यूज टू बी अ की पिलर ऑफ इंडियाज इकॉनमी, कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। गोवा हैज ऑल्सो विटनेस स्टेडी एक्सपेंशन इन द सेक्टर थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एम्ड एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैन्युफैक्चरिंग। वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
2: The MSME sector remains one of the key drivers of India's economy, contributing significantly to employment, manufacturing and entrepreneurship. According to official data, over 7 crore enterprises are registered on the Udyam portal, providing employment to around 32 crore people across the country. In Goa, more than 90,000 MSMEs have been registered, reflecting the steady growth of the sector in the state. The state has undertaken several initiatives to promote industrial development, including support for manufacturing and maritime industries, with efforts focused on expanding Goa's production capabilities. There is also a growing emphasis on creating digital platforms that enable MSMEs to showcase and market their products globally, helping local enterprises access international markets and improve competitiveness. The continued expansion of MSME sector is expected to strengthen Goa's economy while contributing to India's broader industrial and employment growth. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
0: और अब चलते हैं वाराणसी की ओर, जहां पिछले दिनों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पूर्वांचल और देश के विमानन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हुई। पिछले 25 जून को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली हब एंड स्पोक विमान सेवा की शुरूआत की। नई व्यवस्था के तहत वाराणसी एयरपोर्ट को प्राइमरी स्पोक के तौर पर विकसित किया गया है, जो यात्रियों को देश के प्रमुख हब एयरपोर्ट से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुगम बनाएगा। केंद्रीय विमानन मंत्री ने वाराणसी एयरपोर्ट से देश के पहले हब एंड स्पोक मॉडल की शुरुआत को एक ऐतिहासिक कदम बताया।
3: हब एंड स्पोक सेवा की शुरुआत के साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट देश के विमानन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। इस पहल से वाराणसी से विदेश जाने वाले यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े हब एयरपोर्ट पर जाकर दोबारा लगेज लेने, टर्मिनल बदलने और इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इमिग्रेशन और अन्य औपचारिकताएं वाराणसी में ही पूरी होंगी, जिससे यात्री दिल्ली जैसे हब एयरपोर्ट पर सीधे अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट कर सकेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हब एंड स्पोक की यह पहल वाराणसी को सीधे वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि किसी शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने में एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलती है। श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। निश्चित तौर पर इस पहल से पूर्वांचल बिहार और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को काफी लाभ मिलने वाला है।

0: आगरा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: और अब आते हैं मध्य प्रदेश की ओर। प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की 12 उद्यानिकी फसलों को एक साथ भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। देश में ये पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जीआई टैग हासिल हुआ है।
2: यस जागृति, दिस विल सर्टेनली गिव अ मेजर बूस्ट टू फार्म एक्सपोर्ट्स एंड द 12 न्यूली सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स स्पैन यूनिक नेटिव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एग्रो प्रोसेस्ड कमोडिटीज एज वेल इन दिस।
1: बिल्कुल, और आइए सुनते हैं अधिक इस रिपोर्ट में।
3: मध्य प्रदेश की माटी की खुशबू अब देश दुनिया में और गहरी हो गई है। प्रदेश की 12 उद्यान की फसलों को एक साथ जीआई टैग मिलने से ये इतिहास रचा गया है। गुना का सुगंधित कुंभराज धनिया, नरसिंहपुर के बरमान घाट का भटा और बैतूल का गजरिया आम इसमें शामिल है। खरगोन की तीखी लाल मिर्च और मांडू की अनोखी खुरासानी इमली को भी ये सम्मान मिला है। जबलपुर की हरी मटर, सिवनी का जम्बो सीताफल, मालवा का आलू गराड़ू और नरसिंह पुर का गुड़ भी इस सूची में शामिल है। जबलपुर का सिंघाड़ा, अलीराजपुर का नूरजहां आम, बुरहानपुर का केला, इंदौर का जिरावन मसाला, रतलाम की बालम ककड़ी और छतरपुर का पान भी अब जीआई टैग के गौरव से जुड़ गए हैं। खास बात यह है कि गुना जिले से हर साल 32,000 मीट्रिक टन धनिया देश के कुल उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा बनता है और विदेशों तक पहुँचता है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की पहचान और बाजार में साख मजबूत होगी, साथ ही नकली उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगेगी। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और निर्यात के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: और पुरी में विश्व विख्यात महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर काफी उत्साह का माहौल है। श्री मंदिर में रथ यात्रा से जुड़े पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। देवस्नान पूर्णिमा के बाद भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अनसर यानी अनवसर काल में हैं। मान्यता है कि महाप्रभु इस दौरान ज्वर से पीड़ित होते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष सेवाएं और उपचार संबंधी अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। आइए सुनते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट।
4: देव स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान बीमार होकर अनसर काल में श्रद्धालुओं को शिव विग्रह के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। इस अवधि में भक्त केवल शिव मंदिर में स्थापित पट्टी दिया यानी पट्टचित्र स्वरूप के दर्शन अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। शिव मंदिर के भीतर महाप्रभु के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार विशेष सेवाएं जारी है। उधर भगवान के अनसर काल के दौरान पुरी जिले के ब्रह्मगिरी स्थित अलारनाथ पीठ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु भगवान अलारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान श्री जगन्नाथ भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते तब भगवान अलारनाथ के दर्शन करने से ही वही पुण्य प्राप्त होता है। श्री जगन्नाथ संस्कृति के जानकार
5: रंजन पंडा कहते हैं,
6: स्नान पूर्णिमा में महाप्रभु जी के स्नान के बाद महाप्रभु जी बुखार आ जाती है और उनको अनवसर नीति बोलते हैं। उसके लिए 15 दिन महाप्रभु जी को कोई भी दर्शन नहीं करेंगे, कोई स्पर्श नहीं करेंगे, कुछ महाप्रभु जी के अन्न भोग भी नहीं लगेगा। अलग एक भोग का व्यवस्था करा जाती है, जैसे चकटा भोग, प्रपानक भोग, मलाई भोग, ये सब लगता है। और बाहर में महाप्रभु जी का चित्रपट का सेवा होती है, जैसे नारायण, वासुदेव और भुवनेश्वरी, ये पूजन होता है। और देखेंगे तो ये 15 दिन महाप्रभु जी का विश्वावसु और विद्यापति जो वंशज है उनके सेवा रहता है। अंदर में महाप्रभु जी का स्वस्थ करने के लिए सुविधा रहता है। अनवसर का 5वें दिवस में महाप्रभु जी का तैलमर्दन होगा और इसी समय में जो भी भक्त आती है महाप्रभु जी का दर्शन नहीं पाती है, वो कहाँ पर जाती है, ना अलारनाथ का दर्शन करते हैं और वहाँ पर खीर प्रसाद जो पायस भोग बोलते हैं वो भी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि महाप्रभु जी को एक छोटा बच्चा वहाँ पर प्रसाद खीर भोग लगाए थे और महाप्रभु जी पाए थे।
4: अनसर काल की ये परंपरा सदियों पुरानी है। भगवान के स्वास्थ्य लाभ की अवधि में अलारनाथ दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व तो माना जाता है और इसी कारण हर वर्ष इस दौरान वहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। आगामी रथ यात्रा को लेकर राज्य सरकार और शिव मंदिर प्रशासन भी व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। इस वर्ष रथ यात्रा के दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से महाप्रभु के दर्शन कर सके।

0: And today we also wish a very happy birthday to Sudesh Bhonsle, the singer who had the voice of Amitabh Bachchan.
1: और इसके साथ ही जागृति और अनुजा को दीजिए इजाजत.
0: नमस्कार.
2: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार. केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है.
3: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन

0: द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृहमंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देशभर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेनदेन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

पहली जुलाई की शाम किसी और शाम की तरह नहीं, अनोखी, बिल्कुल नई। जिस तरह से नया मौसम, नए विचार मन में आ रहे हैं, उसी तरह से कुछ नया कर गुजरने का मन भी कर रहा है। और दिल में हमेशा प्यार रखिएगा, कुछ भी करना हो, कोई भी सवाल हो, लेकिन जवाब, उत्तर हमेशा प्यार, प्रेम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल प्रेम में भी क्या छिपा है। प्रेम में भी छिपी है एक अजीब तरह की स्पर्धा, कॉम्पिटिशन। किस लिए? कॉम्पिटिशन अगर करना है तो ज्यादा प्यार करने का करें ना। आ देखे जरा कि हम में से कौन एक दूसरे को ज्यादा प्यार करता है ना। गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप रूमी मलिक के साथ

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ है हम रूमी मलिक। प्यार प्यार के साथ होना चाहिए, प्यार का इजहार, पर ऐसा नहीं हो पाता है। और कमाल की बात यह है कि सदियों पहले जो रुसवाइयां थी, सदियों पहले जो रूढ़ियां थी, क्या हम आज भी उसी सदी में जी रहे हैं कि हमें मुश्किल लगे ये बताना दुनिया को कि हम किससे प्यार करते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो दो दिलों को मिलने से रोकती है? खुद सोचिए। हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारी सोच आड़े आती है हमारे प्यार के। हमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं जो हमें सैद्धांतिक रूप से लगता है कि हमें माननी चाहिए, लेकिन जब दिल अपनी मनमानी पर उतर आता है, और मनमानी भी क्या, मनमानी भी क्या, हर एक पे तो दिल आता नहीं है, जिस पे आता है किसी कारण से आता है, तो फिर क्या किया जाए, सोचिए।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप। एक फिल्म आई थी लगान, लगान जिसमें आमिर खान मुख्य किरदार में थे, उनके किरदार का नाम था भुवन। तो वो उसमें एक सेंटेंस बोलते हैं, एक वाक्य बोलते हैं कि जहां सत्य है तो सत्य को बोलना, सत्य को बोलने के लिए साहस भी चाहिए। सत्य के साथ साहस की बड़ी जरूरत है ना। आपको पता है, आपको हैरानी होगी ये सुन के कि इस वाक्य की वजह से इस पूरी फिल्म को IIM ने पढ़ा था। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना भारत में, तो उन्होंने इस फिल्म को एक स्टडी की तरह से लिया था कि टीम वर्क भी इसमें दिखाया जाता है। बात हो रही थी सत्य और साहस की। आप मुझे बताइए कि जो सच बोलते हैं वो डरते भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। प्रेम सबसे खूबसूरत सच्चाई है जीवन की, तो इसे बताने के लिए डरें क्यों? ऐसी दुनिया कैसी दुनिया अपना सच बयां करना हर किसी का हक है।

कई लोग कहते हैं किस चीज पे दुनिया चलती है, पैसे पे चलती है दुनिया, दौलत पे चलती है, शोहरत पे चलती है या मोहब्बत पे चलती है। हम सब जानते हैं, हम भारतीय तो वैसे ही बहुत इमोशनल लोग हैं, बहुत भावुक लोग हैं। हम जानते हैं कि मोहब्बत पे, प्यार पे, प्रेम पे दुनिया चलती है। और जब प्यार होता है ना, आप प्यार में होते हैं तो पानी का जो स्वाद होता है ना,

पानी भी शरबत लगता है, और अगर मोहब्बत ना हो तो हर चीज बेलज्जत लगती है, डिस्टेस्टफुल, कोई भी चीज मजा नहीं देती, क्योंकि मजा तो अपने प्यार में है, अपने साजन में है।

0: नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो इजहार की स्टेज पर ही रुक जाते। बताओ ये कोई बात है? हाँ, आप किसी से मोहब्बत करे उसी को बताने से डर रहे हो, किस बात के लिए? ना हो जाएगी। अच्छा, आप कभी रिजेक्ट नहीं हुए जीवन में? कोई एंट्रेंस टेस्ट कभी फेल नहीं किया किसी भी एग्जाम में? चाहे वो जनरल नॉलेज का ही क्यों ना हो, कभी लुड़के नहीं? तो एक ना कहने से को बहुत दिक्कत आ जाएगी। हैरानी होती है कि हमें जिंदगी की किताब की ट्रेनिंग कभी नहीं दी जाती है ना। हम सारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स पढ़ लेते हैं, किस किस तरह की हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये जो लव की इक्वेशन है ये रह जाती है अनसॉल्व्ड। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ लाइफ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, है ना। अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ेगा प्यार के लिए। आकाशवाणी FM गोल्ड गाती गुनगुनाती सुन रहे हैं आप रूमी मलिक के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

गाते गुनगुनाते का मोहब्बत स्पेशल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम गोल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जब हम छोटे थे ना, छोटे से थोड़ा सा बड़े होने लगे तो ये कहा जाता था, क्लास की लड़कियां हमको सुनाती थी, कोटेशन थी अंग्रेजी में, फिर उसको हिंदी में भी बोलते थे कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो, अगर वो वापस आ जाएगा तो वो हमेशा तुम्हारा था, अगर वो नहीं आता तो कभी नहीं, जो भी वो कोटेशन थी, है ना, कि भाई तो ऐसा कर नहीं पाते हैं हम, है ना। ये बड़ी मुश्किल आ जाती है, जो मोह है ना, मोह जनित हमारी जो बीमारी है वो आ जाती है। हालांकि हंसते हंसाते हम रहते हैं, हम कई बार यही बात कहते हैं कि भाई ठीक है, या आर या पार, आएगा तो वेलकम, जाएगा तो भीड़ कम। अब अगर इतना प्रैक्टिकल होता ये दिल तो क्या बात थी। अब कुछ लोगों के तो दिमाग में, ये जो दिमाग है ना 1500 सीसी का जो ये भेजा है, इसमें भी दिल फिट होता है। क्या आप भी उन्हीं में से हैं?

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

नजर ना लगे असली प्यार को, ऐसा कहा जाता है ना। तो कोई भी काम करने से पहले बताना क्या, ढिंढोरा क्या पीटना। आजकल जो सोशल मीडिया पे बताने लग जाते हैं, तभी देखो कैसी कैसी वारदातें हो जाती हैं, है ना। तो प्यार जो है एक बहुत खूबसूरत एहसास है, डिस्प्ले करने की चीज थोड़ी ना है। तो आपको इस उम्मीद के साथ शुभकामना देती हूँ आपको कि आपको सच्चा प्यार ढूंढ ले या आप सच्चे प्यार को ढूंढ ले। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का गाते गुनगुनाते इट्स अ रैप रूमी मलिक को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The government today approved the construction of a 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
1: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
2: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द ईयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन

0: estimated cost of 6,970 crore rupees. The second decision is related to Uttar Pradesh. The cabinet has approved the construction of four-lane access-controlled highway between Kanpur and Kabarai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
1: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
2: Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with the various administrations. The panel informed Mr. Shah that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, he said conducting elections together would strengthen governance, reduce disruptions caused by frequent polls and benefit the economy. India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared lists of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian. India has consistently called for early release and repatriation of civil prisoners, fishermen, along with their boats, and missing Indian defence personnel from Pakistan's custody. The first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra has reached the Bhagwati Nagar base camp in Jammu and is all set to begin the annual pilgrimage tomorrow. All necessary arrangements, including enhanced security and accommodation for pilgrims, have been put in place for the 57-day Yatra scheduled to take place through the Nunwan, Pahalgam and Baltal routes under tight security. Akashwani today unveiled its broadcasting house photo gallery Swar Prerna Vithika at Rang Bhavan Auditorium in Akashwani Bhavan, New Delhi. The photo gallery was inaugurated by Padma Vibhushan flautist Pandit Hariprasad Chaurasia. The gallery features portraits of Bharat Ratna awardees including Vidushi M.S. Subbalakshmi, Ustad Bismillah Khan, Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Ravi Shankar, Lata Mangeshkar and Dr. Bhupen Hazarika. During the event, a musical concert was organized in which a flute recital was performed by Pandit Rupak Kulkarni, Chief Executive Officer of Prasar Bharati Gaurav Dwivedi, and Director General of Akashwani and DD News, Rajiv Kumar Jain, were also present at the event. In men's cricket, India will take on England in the first T20 International of the five-match series in Chesterfield Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. In FIFA World Cup, England will face Democratic Republic of Congo, Belgium will meet Senegal, and USA will clash with Bosnia and Herzegovina in round of 32 matches tonight. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण का पहला अंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय सेशल्स यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, विकास सहयोग को नई गति मिली और समुद्री सुरक्षा से लेकर डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष और क्षमता निर्माण तक कई क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस यात्रा की भारत की विदेश नीति, समुद्री सुरक्षा और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के कार्यक्रम में इन्हीं सवालों का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस वर्ष सेशल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी वर्ष भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के भी 50 साल पूरे हुए हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और सतत विकास जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की। आइए समझते हैं कि आखिर सेशल्स भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
5: हिंद महासागर में स्थित सेशल्स भले ही क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से छोटा देश हो, लेकिन समुद्र में उसकी अवस्थिति उसे बेहद रणनीतिक बनाती है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और हिंद महासागर के बीच समुद्री संपर्क का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत लंबे समय से मानता रहा है कि हिंद महासागर केवल व्यापार का मार्ग नहीं बल्कि सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता का भी आधार है। यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महासागर विजन में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा से पहले जारी वक्तव्य में भी कहा था कि सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है और महासागर विजन तथा ग्लोबल साउथ के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रमुख भागीदार है। इसी सोच को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति हार्मनी के साथ संयुक्त वक्तव्य में भी दोहराया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर दोनों देशों का साझा घर है और उसकी सुरक्षा, समृद्धि तथा स्थिरता दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
6: हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम, इट्स सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। आज हमने हमारे आर्थिक सहयोग को और अधिक रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी बनाने पर चर्चा की।
5: प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश केवल भारत और सेशेल्स तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की सोच को भी सामने रखता है। इसी संदर्भ में अब ये समझना जरूरी है कि समुद्री दृष्टि से सेशेल्स का महत्व क्या है। आकाशवाणी ने हिंद महासागर में भारत और सेशेल्स की कूटनीतिक साझेदारी के विषय पर पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार से विशेष बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
7: हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैरिटाइम पार्टनर है और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए पायरेसी की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत करीब 90% हमारा जो व्यापार है समुद्र से ही हम आगे लेकर चलते हैं। मेरे विचार से भारत न केवल सेशेल्स को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए परंतु पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें ये एक संदेश भेज रहा है जो भारत का यहाँ पर जो संबंध है, जो प्रभुत्व है, वो बिल्कुल ही बरकरार है और उसको भारत पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा।
5: प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर सुरक्षा और विकास दोनों को आगे बढ़ाना चाहता है।
4: अब तक हमने समझा कि सेशल्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और आने वाले समय में इनका दोनों देशों के संबंधों तथा हिंद महासागर क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में सबसे अधिक चर्चा डिजिटल भुगतान व्यवस्था यानी यूपीआई को लेकर हुई। समझौते के अंतर्गत भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सफल अनुभव को सेशल्स तक ले जाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य केवल भुगतान को आसान बनाना नहीं बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन औषधि योजना से जुड़ा समझौता भी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से सेशेल्स के लोगों को भारत से किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा। इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का सहयोग भी आगे बढ़ेगा। यात्रा के दौरान भारत ने केवल समझौतों की ही घोषणा नहीं की बल्कि विकास सहयोग को भी नई मजबूती दी है। सेशेल्स को एक तेज गति वाला गश्ती पोत, रक्षा बल के लिए वाहन और नौकाएं, 6 एम्बुलेंस, 500 मीट्रिक टन चावल और 8500 मीट्रिक टन सीमेंट भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया। भारत और सेशेल्स के बीच घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत लगभग 1250 करोड़ रुपए की ऋण सहायता से वहां की प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
4: यात्रा का एक और ऐतिहासिक पहलू भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स के रिश्ते केवल पिछले 50 वर्ष के नहीं बल्कि इनकी जड़ें 250 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। उन्होंने लोकतंत्र, कानून के शासन, जन केंद्रित विकास और साझा मूल्यों को दोनों देशों की साझेदारी का आधार बताया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत सेशल्स को केवल एक छोटे द्वीपीय देश के रूप में ही नहीं देखता बल्कि एक बड़े महासागरीय राष्ट्र के रूप में देखता है जिसकी भूमिका हिंद महासागर के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च विशेष सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें हरित विकास, जलवायु परिवर्तन से मुकाबले, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री की ये यात्रा केवल समझौतों और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, ये भारत की विदेश नीति की एक बड़ी सोच को भी सामने लाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने, विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता देने और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर लगातार जोर दिया है। सेशल्स की ये यात्रा उसी व्यापक सोच का ही विस्तार है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा ने भी यही बात कही।
8: भारत की महासागर नीति 2025 की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, खासतौर से हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, उनके साथ सहयोग में एक बड़ा स्तंभ ये होना चाहिए कि इन देशों की, जिनकी बात दुनिया के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, कॉप की मीटिंग्स है या दुनिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर इन छोटे देशों की बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की आज सबसे मुखर और सबसे सशक्त आवाज बनकर भारत उभर रहा है। इन देशों की जनता की जो सर्वाइवल से जुड़े इश्यूज है, कृषि है, खाद्य सुरक्षा है, फिशरीज का सेक्टर है, तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं, उनमें भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो इस बात को भी ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत ने रखा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से एक संदेश स्पष्ट रूप से सामने आता है कि भारत अपने पड़ोसी और समुद्री साझेदार देशों के साथ ऐसे संबंध विकसित कर रहा है जो केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है बल्कि विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रहे हैं। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने। नमस्कार।

0: newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवनियुक्तः सेनाध्यक्षः जनरल धीरज सेठ इत्येषः वर्धमान सुरक्षा वातावरणस्य समाह्वानानां निवारणाय सेनायाः आधुनिकीकरणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्। एकत्रिंशत्तम सेनाध्यक्षत्वेन कार्यभारं स्वीकृत्य अद्य प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् जनरल सेठः अधोरेखितवान् यत् भारतीय सेनायाः उद्देश्यं प्रविधीयुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति। सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविध क्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च समर्थं भवेत्।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारिका दूतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.1 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति, यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभाग अवदत् यत् आगामी दिनेषु दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृट काल अग्रे गमिष्यति। आगामी दिनद्वयोः उत्तर प्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशा प्रदेशे विदर्भ क्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्व संचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देशः अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 पराजित्य षोडशतमे चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar haazir hain. Hamare saath charcha ke liye studio mein aamantrit hain आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद मनोज जी.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेज राइज ओवर 0.5%. सेंसेक्स गेन्स नियरली 450 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 24,000. जीएसटी कलेक्शन सर्ज ऑलमोस्ट 14% टू ओवर 1,94,000 करोड़ रुपीज इन जून दिस ईयर. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई खरीदारी, प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक लाभ में रहे. सेंसेक्स लगभग 450 अंक उछला. निफ्टी 24,000 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद. देश में इस वर्ष जून

0: जीएसटी संग्रह लगभग 14% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटी।
1: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any फाइनेंशियल डिसीजन।
0: और अब शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से, जहां आज खरीदारी तेज रही और पिछले दो सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साथ ही निफ्टी सभी प्रमुख सूचकांक लगभग 0.6% लाभ के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़त के साथ 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप इंडेक्स 100 में 0.3% से अधिक की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स भी लगभग 0.4% लाभ के साथ बंद हुआ।
1: Benchmark domestic equity indices ended 0.6% higher today, snapping a two-session losing streak. Sensex rose by 444 points to close at 76,923. Nifty also gained 140 points to settle at 24,006. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index added over 0.3% and the small-cap 100 index climbed around 0.4%. Earlier, markets opened marginally higher. Both the stock market indices extended their upward momentum throughout the session, supported by softer crude oil prices and buying across specific sectors.
0: सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में अव्वल रही कंपनी एटर्नल, जिसके शेयरों में 5.7% की वृद्धि हुई। एशियन पेंट्स में 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 3% ऊपर उठकर बंद हुए। उधर बिकवाली के दबाव में एचसीएल टेक के शेयर लगभग 3.5% लुढ़क गए। उधर टेक महिंद्रा में लगभग 3.1% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 2.5% से अधिक का नुकसान देखा गया।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 25 sectors ended in positive zone among the key gainers. Realty climbed 3.6%, FMCG rose 1.8% and services added over 1.3%. In contrast, focused IT fell 2.5%, IT lost 1.9% and metals dipped 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,276 companies advanced, 1,995 companies declined and 176 companies remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपए आज 57 पैसे कमजोर हुआ, 95.24 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 101.37 पर चल रहा था। पुरी जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में आज थोड़ी सी तेजी देखी गई है, मूड थोड़ा सा बदल गया है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे बाजार पर आप?
2: मनोज जी, देखिए, भारतीय शेयर बाजार एक बहुत ही मैं कहूंगा एक डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहा है, क्योंकि और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक इसकी बाजार की स्ट्रेंथ रहे हैं, जैसे आईटी क्षेत्र के जो शेयर थे वो अभी तक इस बाजार की हम कहेंगे कि एक नींव रहे थे, लेकिन वहां पर हम काफी गिरावट देख रहे हैं। काफी आज के दिन भी जबकि बाजारों में अच्छी तेजी थी, हमने आईटी के शेयर्स में काफी गिरावट देखी और वहां पर काफी निवेश है रिटेल इन्वेस्टर्स का भी, इंस्टीट्यूशंस का भी, और आईटी क्षेत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। दूसरे तरफ देखें तो जो कंज्यूमर कंपनीज एफएमसीजी कंपनीज में हम पिछले काफी दिनों से गिरावट देखते आ रहे थे, और यूजुअली हम एफएमसीजी कंपनीज को इकोनॉमी का एक दर्पण मानते हैं। हम मानते हैं कि अगर एफएमसीजी कंजम्पशन कम है तो उसका असर, नेगेटिव असर, सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। वहां पर हमने आज तेजी देखी जो एक पॉजिटिव साइन है, यानी वो पॉइंट कर रहा है कि आने वाले समय में शायद कंजम्पशन यहां बेहतर हो। जो हम नेगेटिव इफेक्ट सीख रहे थे मिडल ईस्ट वॉर के, शायद वो इफेक्ट अब कम होंगे। कुछ हमने कमी देखी है कुछ

0: इनिशियल कमोडिटीज में कमी आई है, वहां पर थोड़ी गिरावट आई है, तो कंजम्पशन बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं आपकी बाजार जो है एक मिले जुले दौर से गुजर रहा है। ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो आ रहे हैं वो उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं। हमने देखा जो इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आया, कोर सेक्टर ग्रोथ का डेटा आया, वो उम्मीद से बेहतर था, क्योंकि पिछले महीना अगर आप देखें जून का, काफी मुश्किल महीना था क्योंकि वॉर का इम्पैक्ट बहुत था, सप्लाई चेन्स काफी डिसरप्टेड थी। तो कुल मिलाकर एक मिला जुला रुख है, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय, ये एक पॉइंटर है कि आने वाले समय में जैसे थोड़ी और इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होंगी तो बाजार और बेहतर हो सकता है।
1: पुनीत, एफएमसीजी इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट रोज 1.8% टुडे। अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन सीजनल डिमांड, वेयर द हाइट ऑफ द समर सीजन। देयर इज ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑफ ड्राउट बिकॉज 43% less rainfall has been predicted by IMD. How do you see all of that playing into, you know, your food and beverage consumption and really the pricing of FMCG stocks, because they seem to adjust quite well?
0: So Arjun, interestingly, FMCG sector, like I said, is a very important sector of the economy, because it not only concerns large companies, it concerns consumption by people at large, and it gives us some kind of an idea what is the trend in the economy. Now, FMCG sector is going through some kind of a turmoil, because what we saw was some pullback in consumption lately. At the same time, we saw prices going up because the input prices, the raw material prices, which are commodities, they really shot up in the last 2-3 months. Fortunately, today we saw that there was a pullback in most commodity prices. You would see that even commodity stocks, a lot of them pulled back today. So probably the market is reading that going forward, prices in commodities and therefore the input prices for FMCG companies will come down and the profitability will rise. Yes, there are concerns about consumption because of lack of rainfalls and the expectations of a shortfall in monsoon rains this year. That is there. I don't think we can wish that away. That is, we're going to deal with it. Government is trying to, you know, bring in measures which will improve the situation. But I think that challenge being there, we will see मार्जिन्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइसेस फॉर इनपुट्स।
2: पुनीत जी, आपने चर्चा की आईटी सेक्टर की और कहा कि वहां पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। यहां पर क्या समझा जाए कि हमारी आईटी सेक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में परिवर्तन चल रहा है वहां खरा उतरने में पीछे रह रही है, या ढांचागत समस्या आ रही है हमारी आईटी सेक्टर में सेवाओं को लेकर, या कह लें जो नए प्रोडक्ट उनके हैं उनको लेकर?
0: जी देखिए, सच बात तो यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय, कुछ हद तक ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हो रहा है, उससे जो काम करने का तरीका बदल रहा है, पर्टिकुलरली फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो एक बहुत बड़ा बदलाव है इस सेक्टर के लिए। आज ही एक बहुत प्रमुख आईटी सर्विसेज कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस दी थी टॉप लाइन ग्रोथ की, उसको काफी मेजरली कट किया, उसका नेगेटिव असर सारी इंडस्ट्री पर आया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर्स अपने पिछले 10 साल के सबसे नीचे स्तर पर चल रहे हैं, जबकि अच्छी कंपनीज हैं, काफी प्रॉफिट्स हैं वहां पर और बहुत बड़े पैमाने पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। तो डेफिनेटली इंडियन आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 वर्ष ये काफी डिफिकल्ट रहेंगे इस सेक्टर के लिए। उसके बाद जो नए आयाम होंगे, नए डायमेंशंस होंगे, किस प्रकार से ये देखिए, डिजिटल दुनिया तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, तो इंडियन कंपनीज भी अडेप्ट करेंगी, पर शायद अभी मार्केट्स को मैं कहूंगा डाउट है कि कौन सी कंपनी सर्वाइव करेंगी, कौन सी कंपनीज ग्रो करेंगी, ये भी क्लियर नहीं है। तो इस पूरे माहौल में, अनसर्टेनिटी का माहौल है, उसमें जो आईटी क्षेत्र के जो शेयर्स हैं उसमें हम कुछ गिरावट दिख रहे हैं।
1: पुनीत, लॉट ऑफ आवर आईटी कंपनीज डिपेंड अपॉन आउटसोर्सिंग, ऑफशोर आउटसोर्सिंग फ्रॉम यूएस कंपनीज हु आर नाउ डिपेंडेंट अपॉन artificial intelligence, income from that particular service, and capital expenditure on artificial intelligence, data centers being created as a result of it. And we've seen from the earning results of bellwether IT companies in India that a lot of their AI income has gone up. So how do you see IT companies adjusting to this? Because it's not necessarily, it's high skill, but it's a lot of jobless growth as well. Is that really what is hitting the IT sector now?
0: So jobs vis-a-vis the growth

0: The dollar valuation, it is at 101 right now. Petrodollars, the lifting of sanctions has led to the another demand for dollars to pay for energy imports. So how do you see the US economy right now?
1: So Arjun, surprisingly, despite all apprehensions about US economy, the US economy seems to be doing very well. The economy is already expanded to $40 trillion, which is huge. And on top of it, you have a strong dollar there. Despite the fact that interest rates went up, we did not see a decline in GDP growth, and no signs of recession there. So clearly, conventional economics has been thrown out of the window in US for the time being. When you look at technology sector like NASDAQ, you will find that it is just a segment of the technology sector which is really doing well in America. Software services companies in US also, if you look at the large ones like Accenture and others, Capgemini, etc., they're also doing badly. In fact, the valuations have gone down even further. So clearly, there also we find some kind of segmentation in the way IT business is growing. But headline numbers are very good in US.
2: आपने बड़ी रोचक बात कही कि पारंपरिक अर्थशास्त्र के नियम धता बताते अमरीकी अर्थव्यवस्था फिलहाल दिख रही है. अमरीकी शेयर बाजार में धमाल, यानी अमरीका अमीर हुआ, समृद्धि के शिखर पर पहुंचा, तो उसकी प्रभाव से दुनिया भर में थोड़ी सी ऊपर आने की दिशा देखी जाती थी. अभी का समृद्ध होता अमरीका क्या दर्शा रहा? अलग थलग अमरीका टापू या दुनिया भर में समृद्धि बढ़ने के आसार?
1: तो मनोज जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया है, और ये सब लोग इस बात को लेकर हैरान परेशान है. मैं कहूंगा कि जो अमेरिकन पहले ये होता था, अमेरिका में यदि शेयर बढ़ते थे, पैसा बनता था, प्रोस्पेरिटी आती थी, तो पूरे विश्व में छोटी बड़ी सभी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता था. अब हम देख रहे हैं कि उसका सिलेक्टिव फायदा हो रहा है. कुछ एरियाज हैं, अगर हम एशिया में देखें तो भारतीय बाजारों में गिरावट रही, एफआईआई की सेलिंग थी, और वहीं पे कोरिया, जापान, ताइवान, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पे हमने तेजियां देखी, और वहां पर शेयर मार्केट भी ऊपर गई. तो क्लियरली ये जो इम्पैक्ट है अमेरिकन अर्थव्यवस्था का, वो सिमिलर एक बराबर नहीं है सबके लिए. और शायद इसका कारण यह है कि जो एक स्क्यूड पॉलिसीज है अमेरिका की, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, पॉलिटिकल पॉलिसीज जो है, मुझे लगता है उसका असर है ये, कि ये पूरे जो अर्थशास्त्र के नियम है रीराइट किए जा रहे हैं.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लौटते हैं स्वदेश. वस्तु और सेवा कर लागू हुए 9 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं, यानी 9 वर्षों से जो एक नई प्रथा शुरू हुई वह किस दिशा में हमें लिए जा रही है, उसके आंकड़े गवाह हैं. और जून के आंकड़े इस वर्ष के कह रहे हैं कि जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है. ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह कहा गया कि जून में घरेलू जीएसटी संग्रह 1,34,774 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है. इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि आयात पर जीएसटी संग्रह 34.6% बढ़ा, 60,038 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. कुल मिलाकर जीएसटी की दिशा और देश की आर्थिक दशा किस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं समझना चाहेंगे, और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, यहां भी मैं कहूंगा कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि जून का महीना काफी डिफिकल्ट महीना है. महंगाई की दर बढ़ रही थी, कंजम्पशन कम होने की आशंका थी, बारिश नहीं हो रही थी, ये सब चिंताओं के बीच में हमको जब जीएसटी जो फर्स्ट इंडिकेशन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो अच्छा आता है. वो ऐसा दर्शाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही होगी. तो ये काफी एक अनएक्सपेक्टेड नंबर हैं. हालांकि इसमें काफी बड़ा योगदान इंपोर्ट के नंबर्स का है, अगर आप देखें जो हमने, यानी ज्यादा आयात हम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कर रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी मुद्रा पे, जो रुपी पे है, उस पर प्रेशर हो रहा है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है. कुछ हद तक हम इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि वो इस दौरान भी उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको स्टेबल रखा है, स्ट्रांग रखा है. और कंजम्पशन जो है, क्योंकि जीएसटी नंबर सीधे कंजम्पशन से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन भारत में अभी भी अच्छी चल रही है. ये एक सरप्राइजिंग ट्रेंड है, बट दैट इज ट्रू.
0: द नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन 2025. वी सॉ स्पाइक इन ऑटो सेल्स. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन 2026?
1: So I think those reforms are playing out still. So we've seen a rebound in auto sales, like you mentioned, which was light goods. Now we are seeing some stability in FMCG and consumption items. So my guess is that simplification of GST should really help not only consumers, it should help producers also. The companies which pay GST to government, they're also looking for ease of doing business. My guess is that government will try and simplify this further. In fact, the policy making decision, they will kind of roll out over the next 6 months. We probably will see a better year in 2027.
0: In more good news, the Unified Payments Interface UPI transaction volumes rose 23% to over 22 billion in June on a year-on-year basis, while UPI transaction value surged 20% to over 28 lakh crore last month, according to data released today by the National Payments Corporation of India. On an average basis, UPI processed around 757 million transactions daily in June. So it seems the June news has really, I'm sure it'll give economists something to think about. But when we come about, when we talk about electronic transactions, payments being made in this way, what is the role of cash going to be in the future?
1: So, while we, of course, ideally cash transactions should have gone down, surprisingly, we haven't seen a much decline in cash transactions. In fact, cash in circulation in India has gone up lately. But probably that is a sign of the economy expanding to pockets of rural India and other places. Overall, UPI definitely has helped us. But I think cash still continues to be the king.
0: So Digital India program depends a great deal on the internet.
1: Absolutely. And I think we have done very well in that area.
2: अच्छी खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ते हैं ग्रामीण भारत की ओर. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से लागू हो रहा है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है. श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का माध्यम है.
0: द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड रिवाइज्ड वेज रेट्स अंडर द विकसित भारत जी रामजी एक्ट ऑफ 2025 इफेक्टिव फ्रॉम टुडे. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. More from our correspondent.
3: The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to 327.4 rupees per day under VBG Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging between 15 and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. With Saklain Akhtar, this is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
0: Indian Ambassador to the United States Vinay Mohan Quatra has said India is emerging as a global leader of trusted supply chains. Addressing the 9th U.S.-India Strategic Partnership Forum's annual leadership summit in Washington, D.C., Mr. Quatra said this transformation is underscored by resilient economic growth and structural reforms. The Indian Ambassador attributed this transformation to India's domestic economic growth and structural reforms supported by robust and mutually beneficial partnerships abroad. The ambassador also outlined New Delhi's ambitious macroeconomic roadmap, projecting a structured path for India to grow into a 25 to 30 trillion US dollar economy by 2047.
4: In India, under the leadership of Prime Minister Modi since 2014, has been a series of economically transformative measures on the ground, which have resulted in a consistently high growth of 7+%, which is uniquely driven by domestic demand. It has externalities, but not really that strong.
0: Oil marketing companies have reduced the price of a 19-kilogram commercial LPG cylinder by 183.5 rupees today. According to the Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders have come into effect from today. After the reduction, new rate for 19-kilogram commercial LPG cylinder price in Delhi has been slashed to 2,930 rupees. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. Let's now move on to the energy market, crude oil. Global crude oil

0: prices declined today. Brent crude was trading 0.9% down at $72.30 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% down at $69.03 per barrel. When reports last came in, very briefly, despite the traffic that we're seeing through the Strait of Hormuz, there is also news trickling in of fresh attacks. Is any of this true?
1: So there may be some random attacks happening in Hormuz, but I guess the supply of oil from the Gulf has started in right earnest. In fact, I read the news that Saudi Aramco has already started selling oil on a spot basis, and about 6 million barrels thereby selling. So my guess is that supply chains have been restored rather quickly in the Gulf.
0: Let's move on to the bullion market now. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.5% up at 1,43,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,28,550 rupees per kilogram a short while ago.
2: आइए आपको लिए चले एमसीएक्स मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक. अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 0.5% बढ़कर 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध वाली चांदी थोड़ी सी कमजोर होकर 2,28,421 रुपये प्रति किलो पर चल रही थी. यहां पर पुनीत जी, सोने और चांदी के भाव अब यहां से कहां जाते दिख रहे हैं, क्योंकि एक और कई देशों में जो केंद्रीय बैंक है उनकी ओर से खरीदारी भी चल रही है, सोने के भाव नीचे भी आ रहे हैं, तो आगे का रुख क्या लग रहा है?
1: मनोज जी, देखिए अभी फिलहाल जो प्रेशियस मेटल्स हैं इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स से आ रहा है, और जैसे आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है लगातार, 101 पहुंच गया है, तो हमने सोने और चांदी में कमी देखी है. मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले कुछ समय तक थोड़ा कमजोरी रहेगी प्रेशियस मेटल्स में, और शायद फिर कंसोलिडेशन होकर अगले 2 या 3 महीनों बाद शायद हम थोड़ी स्टेबिलिटी देखें. मुझे, मेरा पर्सनल व्यू है कि यहां से थोड़ी कमजोरी अभी और हम देख सकते हैं इन प्रेशियस मेटल्स.
0: And what's the lifting of sanctions? Is that playing a role in the stability in prices?
1: Definitely. That is also one of the reasons why commodity prices across the world, if you see, they have fallen, and therefore gold and silver are also under pressure.
2: बस यहीं पर पुनीत जी, श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
1: धन्यवाद मनोज जी.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise over 0.5%. Sensex gains nearly 450 points. Nifty settles above 24,000. GST collection surge almost 14% to over 1,94,000 crore rupees in June this year. And global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो

0: हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The government today approved the construction of 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has also approved the construction of the 117.7km Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
0: आज कैबिनेट में 2 बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड 2 मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द ईयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-लेन द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 करोड़ रूपीज। द सेकेंड डिसीजन इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
0: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
2: Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with

0: the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with the various administrations. The panel informed Mr. Shah that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, he said, conducting elections together would strengthen governance, reduce disruptions caused by frequent polls and benefit the economy. The Supreme Court today laid down guidelines on how courts should determine the annual income of deceased victims in motor accident or injured claimants on the basis of income tax returns. In a significant verdict aimed at bringing uniformity to motor accident compensation, a bench of Justices Sanjay Karol and N. Koteshwar Singh held that salaried individuals, only the income tax return of the previous year will be sufficient for showcasing the annual income. In case of self-employed persons, the bench held that the average income disclosed in ITRs for up to the previous 3 years should ordinarily serve as the reference point. The first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra has reached the Bhagwati Nagar base camp in Jammu and is all set to begin the annual pilgrimage tomorrow. All necessary arrangements, including enhanced security and accommodation for pilgrims, have been put in place for the 57-day Yatra scheduled to take place through the Noonwan Pahalgam and Balthal routes under tight security. The National Testing Agency, or NTA, has released the admit cards for the Indian Council of Agricultural Research's All India Entrance Examination for admission to PG and the All India Competitive Examination, GRF, SRF 2026, scheduled to be held on the 4th of July. Candidates can download their admit cards using their login credentials and check the examination schedule on the official website. Indian naval ships INS Tarkash and Ikshak concluded their port call at Port Victoria, Seychelles. Defence Ministry today said that the visit of the ships reaffirms the Indian Navy's commitment to strengthening maritime cooperation with friendly maritime nations in the Indian Ocean region in consonance with mutual and holistic advancement for security and growth across regions, that is, Mahasagar. In men's cricket, India will take on England in the first T20 international of the five-match series in Chesterley Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज से जो एक नया अधिनियम अस्तित्व में आ रहा है वह किस रूप में पुराने का स्थान लेगा और नया बदलाव कहां कहां किस स्तर पर दिखेगा।
3: सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसमें बदलाव की जरूरत थी। वो योजना 2006 में लागू की गई थी और आज हम लोग 2026 में हैं
2: जी।
3: तो लगभग 19-20 साल का समय बीत चुका है और इन दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव हुआ है। आमतौर पर मनरेगा को रोजगार मुहैया कराने की एक योजना बताई गई, लेकिन क्या रोजगार मुहैया कराना ही काफी है या हमें उससे आगे भी बढ़ना है? आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप कहते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए, 95,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए आप किसी योजना के तहत खर्च करते हैं, तो क्या केवल ये आप सुनिश्चित करें कि 100 दिन के लिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, या फिर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका किस तरीके से आउटपुट आता है, यानी कि उसका असर किस तरीके से दिखता है? तो ये जो नई योजना वीवीजी रामजी है, इसका मूल मकसद यह है कि रोजगार के साथ साथ लंबे समय के लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरी की जाए। अब अगर मैं इसमें कहूं कि जो प्रमुख बदलाव हैं, तो पांच अगर मैं प्रमुख बदलाव की बात करूं, तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव यह है कि जो गारंटी थी वो पहले 100 दिन की थी, अब वो 125 दिनों की है
2: जी।
3: दूसरा क्या है कि ग्रामीण स्तर की योजना, जैसे एक गांव की जरूरत क्या है, अब देखिए देश में 6,00,000-7,00,000 जितने भी गांव हैं हमारे, हर गांव की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से विकसित की जानी है, उसकी मैपिंग कैसे की जाए, वो मैपिंग करने के बाद उस आधार पर उनके लिए जिसे कहा जाए कि ग्राम विशेष के लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरे की बात करूं तो तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप तीन चीजों पर ध्यान रखिए कि एक है कि सैटेलाइट के जरिए एक गांव की एक छवि आपके सामने आ गई, उस छवि के जरिए ये पता चल गया कि इस गांव की बुनियादी जरूरतें क्या हैं, इसमें क्या कुछ कमी है और इसमें और जो है उसमें किस तरीके से सुधार की जरूरत है। मसलन आप सड़क देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने सड़क बनवा दी, क्या सड़क बनने के बाद उसमें और ज्यादा बदलाव की जरूरत है, उसमें रखरखाव में किस तरीके से सुधार की जरूरत है, वहां पर कितने हमें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत होगी, उन सड़क बनने से आसपास के इलाकों में किस तरीके से बदलाव हुआ, ये सारी चीजें आपके पास एक सैटेलाइट इमेज के जरिए जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा उसी तरफ आप देखें कि जीआईएस मैपिंग में भी वही चीज होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये जो तकनीक के जरिए है, तकनीक के जरिए आप ग्राम विशेष की जरूरतों को पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे, ये तीसरा बड़ा बदलाव है। मैं दो और बदलाव की बात कर दूं उसके बाद आपसे अगला प्रश्न लेता हूं। दूसरा यह है कि जो हमारी परिसंपत्ति बने, जो असेट क्रिएशन हो, वो एक लंबे समय के लिए हो, ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे एक घर बना दिया और आपने काम खत्म कर लिया, बल्कि एक सड़क बने, वहां पर बांध बने, वहां पर जो है जो कुछ भी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई उसका और ज्यादा विस्तार हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेबल असेट का स्थायी जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण हो। और पांचवी जो बात है कि बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, हम देखते हैं कि वो अलग अलग टुकड़ों में चलाई जाती हैं, उसका असर क्या होता है कि आपने सड़क बनाने के लिए एक योजना बनाई, ग्राम उद्योग के लिए आपने एक अलग योजना बनाई, तो दोनों के बीच में कोई समन्वय है कि नहीं, कि जहां पर ग्राम उद्योग विकसित हो रहा है वहां पर सड़क का पूरी तरह से निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स इसको कहते हैं, कि यानी कि सभी योजनाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम करें, ये पांच खास बातें हैं जो वीवीजी रामजी को एक नए स्वरूप देती है और जो कि आज से लागू हुआ।
2: यहाँ पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि तकनीक के माध्यम से केंद्रित होकर काम बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर अहम सवाल यह है कि तकनीक के माध्यम से नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर होगा या गांवों की जो आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत या जो स्थानीय अधिकारी या स्थानीय जो हमारे लोक निकाय हैं उनके माध्यम से वो काम चयनित होंगे।
3: इसके लिए आप अगर 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था उसके गठन के समय में एक बड़ी खास बात कही गई थी। उसके गठन में कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं दिल्ली से बनाते हैं और गांव पे जाकर के थोप देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, उसकी जगह पे हमको बॉटम अप अप्रोच करना है, यानी कि निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या जो स्थानीय अधिकारी है वो बताएं कि हमारी जरूरत क्या है। अब यहाँ पर आपके पास तकनीक मददगार है, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपने पता करने की कोशिश की, आपने जीओएस स्पेशल के जरिए पता करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात लैंड रिकॉर्ड, आप जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है आपको जमीन की जरूरत है। अब वो जमीन का खसरा और वो सब जो हम

0: ग्रामीण परिवेश में जिसका काफी महत्व होता है, वो हमारे पास किस तरीके से उपलब्ध है। तो आज भी अगर हम कहें कि अगर वो केवल कागजों में है और उसका पूरा रजिस्टर है, तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए एक योजना बनाना हो तो उस रिकॉर्ड के जरिए संभव नहीं हो पाएगा। तो वहां पर आपके पास एक तकनीक के जरिए जो आपका डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो मदद करेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो निचले स्तर पे जो कुछ भी काम चल रहा है, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका इनपुट्स भी है, और उस इनपुट को तकनीक के साथ जोड़ करके आप एक विस्तृत, जिसको कहते हैं ना DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप तैयार करते हैं और फिर उस गांव के लिए जो है, वो गांव के समूह के लिए जो है, वो आप कुछ काम करते हैं।
1: यहाँ पर आपने पहले ही जानकारी दी कि 100 दिन से बढ़ के 125 दिन हो गया। इससे जो मजदूर हैं या गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो इस काम के लिए सामान्यतः अपने आप को उपलब्ध कराते हैं, उनकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा?
0: दो तीन चीजें हैं। एक तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम वेज, न्यूनतम जो मजदूरी है जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है, उसके मुताबिक मनरेगा में जो मिनिमम वेज था, न्यूनतम मजदूरी थी, वो 298.80 रुपए थी, अब वो 327.40 रुपए है। अब ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं लगभग 25-30 रुपए का, और राज्यवार अगर स्तर पे आप देखें तो जैसे मैं कुछ राज्यों का एक जिक्र करूंगा आपके सामने, तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगभग 379 रुपए है, अगर बिल्कुल मैं सटीक आंकड़े लेकर के चलूं। बिहार की बात करूं तो 300 रुपए का है, फिर पंजाब की बात करूं तो वहां 300 रुपए का है, तेलंगाना की बात करूं तो 305 रुपए का है, कर्नाटका की बात करूं तो 382 रुपए का है, तमिलनाडु में 345 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 375 है। तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपए का बनता है, और न्यूनतम जो है वो 300 रुपए का बनता है, और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपए के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, 2/3 आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास, इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
1: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए, यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो?
0: यहीं पे तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहते हो कि हमें सड़क की जरूरत यहाँ पे है कि नहीं, हमारे लिए यहाँ पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं, अब आपने कहा कि यहाँ पे जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहाँ पर तकनीक के जरिए, जियोस्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है, आपका डुप्लीकेशन जो है, दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पे बनाएंगे, तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है, और जहां पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी जो है वो आपके सामने रख सकते हैं, तो वो काफी मददगार होगा। दूसरा, जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होता है, तो DBT के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा, तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहां पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहां पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठे और आपने कहा नहीं जी यहां पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहां पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है, तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई वही प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
1: यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं, पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
0: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, केवाईसी वो नहीं होता था। अब केवाईसी के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी

0: बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर वीवीजी राम जी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहां पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहां पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक जिसको कहते हैं ना ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
1: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
0: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है, और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफी पीछे रह जाते हैं।
1: हम पीछे ना रहें और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

नमस्कार। दिन भर की जो भागदौड़ होती है ना, वो अचानक शाम के वक्त आकर थोड़ी सी थम सी जाती है। अगर आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो पाएंगे कि सूरज थककर घर लौट चुका है अपने, और आसमान पर वो जो अभी थोड़ी देर पहले सिंदूरी सा रंग बिखेर कर गया था ना, वो अब थोड़ा काले रंग की ओर जा रहा है। मौसम में एक अजीब सी सुस्ती आती जा रही है और आलम बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। और जानते हैं ये वक्त है ना, बड़ा अजीब होता है। चाय का वक्त तो कब का निकल गया और रात के खाने में अभी थोड़ी बहुत देर है। तो इस बीच ये जो बीच का खाली पन्ना है ना, इसी पन्ने पर अक्सर क्या होता है कि पुरानी यादें आती हैं और अपनी स्याही बिखेर जाती हैं, थोड़ा सा हमें हलचल में ला देती हैं। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी हवा को अंदर आने दीजिए, गाड़ी के शीशे थोड़े नीचे कर लीजिए। दफ्तर का तनाव है और रास्तों का जो ट्रैफिक है ना, इसे थोड़ी देर के लिए भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका है। और आप इस वक्त हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सांझ ढले लिए साथ हूं मैं नूपुर। चलिए आपकी इस ढलती हुई शाम में गुजरे जमाने की एक ऐसी धुन खोलते हैं जो सीधा दिल में उतरेगी। सुनिए ये नकमा और महसूस कीजिए इस शाम को। 1970 की फिल्म जॉनी मेरा नाम। एक गाना याद है आपको जिसकी शूटिंग बिहार के मशहूर राजगीर की वादियों में रोपवे यानी केबल कार पर हुई थी। देव साहब और हेमा मालिनी जी की वो राइड उस केबल कार की, जिसमें इतनी कम जगह थी कि कैमरा तक रखा नहीं जा पा रहा था और उसमें शॉट्स देने थे, लेकिन स्क्रीन पर जनाब जो जादू उभर कर आया वो कहां भुलाए भूलता है। तो आइए शाम के इस धुंधलके में थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी सी मस्ती खोलते हैं।

और अब जब शाम का एकांत जो है ना थोड़ा और गहराता जा रहा है, तो क्यों ना एक ऐसा गाना सुना जाए जो आपको अपनी ही धुन में झूमने पर

मजबूर कर देगा। 1973 की फिल्म अनामिका का वो गीत जिसमें संजीव कुमार साहब और जया बच्चन जी हैं पर्दे पर, आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक है और लता जी की जादुई आवाज। क्या आप जानते हैं कि इस गाने की कॉम्पोजिशन के दौरान पंचम दा जी चाहते थे कि ये गाना जो है ना किसी बिना भारी भरकम साज की आवाज के, सिर्फ गिटार हो, हल्की सी धुन हो, हल्की सी ताल हो, ऐसा ये गाना चले ताकि एक कैजुअल और रिलैक्स मूड बना रहे। और नतीजा सुनते हैं हम ये गीत सुनकर, फिल्म अनामिका, लता मंगेशकर जी का स्वर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर सांझ ढले प्रोग्राम का ये सफर चल रहा है जो अब बढ़ रहा है 1972 के फिल्म बॉम्बे टू गोवा की तरफ। बतौर प्रोड्यूसर महमूद साहब की ये सुपरहिट फिल्म और इस फिल्म में किशोर दा का गाया एक गीत जिसे मानो हर रोड ट्रिप और हर शाम की महफिल ने हमेशा के लिए अपना बना लिया हो। इस गाने की शूटिंग एक चलते हुई बस में हुई थी और पूरी स्टार कास्ट ने बिना किसी रीटेक के असली मस्ती करते हुए इस गाने को शूट किया। तो अपनी आज की इस ढलती हुई शाम के साथ मूड को रखिए एकदम चिल और गुनगुनाइए देखा ना हाई रिस्क सोचा ना। फिर मिलेंगे इसी मोड पर इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन। बस थोड़ी ही देर बाद ठीक 7:45 पर

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 6 लेन के सुरंग निर्माण को मंजूरी दी। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष लागू होने वाले दिशा निर्देश अधिसूचित किए और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की आज नीलामी की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण इसको मंजूरी दे दी गई है।
3: 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी पॉलिसी 2026 लागू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक

0: सीमित नहीं है बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को 30,000 रूपये, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रूपये और N1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 1,00,000 रूपये की सब्सिडी मिलेगी।
1: N1 उस पे 1,00,000 रूपये की सब्सिडी सरकार ने देना मंजूर किया है और जितनी भी हमारी 30,00,000 रूपये से नीचे की गाड़ियां हैं उस पे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरीके से माफ है और किसी को अपना पुराना व्हीकल चेंज करना है नई व्हीकल में तो स्क्रैपिंग पे भी इंसेंटिव दे रही है सरकार। टू व्हीलर पे भी, थ्री व्हीलर पे भी, फोर व्हीलर पे भी, सब पे इंसेंटिव मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की 1 अप्रैल से दिल्ली में नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की 1 जनवरी से L5 श्रेणी के नए ऑटो रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज राष्ट्र निर्माण की सेवा में निरंतर समर्पित सभी डाक कर्मियों को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी डाक कर्मियों के परिश्रम से देश में संचार सुविधा निरंतर मजबूत हो रही है। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया। दिल्ली विधानसभा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली रूकावटें कम होंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है और निर्वाचन आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है। एक देश एक चुनाव पर श्री चौधरी ने कहा कि इससे आदर्श आचार संहिता के बार बार लागू होने की स्थिति भी कम होगी।
2: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
0: सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, सुव्यवस्थित, प्रभावी और स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी तथा शासन व्यवस्था में निरंतरता और दक्षता को नई मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने वाले व्यापक और स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विभिन्न आदेशों को एकीकृत कर एक स्पष्ट, सरल और सख्त व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी विभाग, संस्थान और नागरिक निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई कर सकें। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों का ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 के नीचे के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू रहेगी। बड़े वाणिज्यिक भवनों और निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन और मिस्ट सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। मतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। श्री सूद ने आज जन सुनवाई के दौरान नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। उन्होंने जनसुनवाई

0: दौरान संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में हिस्सा लेते हुए अपना गणना प्रपत्र जमा किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। दिल्ली में SIR 30 जून से शुरू हुआ है। श्री बिधूड़ी ने दिल्ली के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी SIR अभियान में हिस्सा लें और अधिकारियों को सहयोग करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ मानहानि वाले सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पोस्ट हटाने के लिए कोई व्यापक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने उन 5 पोस्ट को हटाने का आदेश दिया जिन पर श्री चड्ढा ने आपत्ति व्यक्त की थी। न्यायालय ने कहा कि यह मुकदमा व्यक्तित्व अधिकारियों से संबंधित नहीं है। श्री चड्ढा ने इससे पहले कथित दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत सोशल मीडिया पोस्टों के प्रकाशन के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ निखिल टंडन ने आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर इस वर्ष के विषय हीलर को हील पर बताया कि चिकित्सा सिर्फ एक पेशा या कमाई का माध्यम नहीं है। डॉ टंडन ने कहा कि इसमें मेहनत, लगन और डटे रहने की आवश्यकता है और इसके लिए व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि डॉक्टर भी उन्हीं की तरह इंसान हैं और उनसे फैसले लेने में गलतियां हो सकती हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री चौहान ने बताया कि यह अधिनियम लाखों श्रमिक ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेनदेन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके बदल दिए हैं। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में आज प्रसारण भवन ने फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया। इस फोटो गैलरी का उद्घाटन पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। इस गैलरी में विदुषी MS सुब्बुलक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर और डॉ भूपेन हजारिका सहित भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के चित्र शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान संगीत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने में आकाशवाणी ने मुख्य भूमिका निभाई है। श्री द्विवेदी ने बताया कि आकाशवाणी अपने समर्पित चैनलों के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्मी संगीत, रवींद्र संगीत और संगीत की अन्य विधाओं के लिए मंच प्रदान कर रही है जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और एकता मजबूत हो रही है।
2: आकाशवाणी में हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत

0: सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: दिल्ली पुलिस ने आज किंग्सवे कैंप में न्यू पुलिस लाइंस के परेड ग्राउंड में औपचारिक परेड के साथ कमिश्नरेट डे मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को बधाई दी। दिल्ली पुलिस ने आज चाइल्ड सेफ्टी मंथ पहल के तहत दो दिवसीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया। ये पहल दिल्ली के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और बचाव को मजबूत करने के लिए लागू की जा रही है। ये कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के तीसरे संस्करण के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी की गई। नीलामी में 8 पुरुष और 4 महिला फ्रेंचाइजी अपनी टीमें तैयार करेंगी। इस नीलामी में 400 से ज्यादा पुरुष और 200 से अधिक महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ऋषभ पंत, मयंक यादव, सुयश शर्मा, हिम्मत सिंह और कुलदीप यादव इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और बात मौसम की, दिल्ली में आज बादल छाए रहे जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 6 लेन के सुरंग निर्माण को मंजूरी दी। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष लागू होने वाले दिशा निर्देश अधिसूचित किए। और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की आज नीलामी की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ईयर एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। केंद्र सरकार ने श्री सोमनाथ घोष को मलेशिया में देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। श्री घोष 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वे वर्तमान में शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved the construction of 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
1: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द ईयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-लेन द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 करोड़ रुपीज। द सेकेंड डिसीजन इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
1: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
2: Union Home Minister Amit Shah has asked the High Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed Mr. Shah that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, he said conducting elections together would strengthen governance, reduce disruptions caused by frequent polls, and benefit the

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं नूपुर, स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में, जहां रागों की बात होती है, सुरों की महफिल सजती है और भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुर परंपरा से हम भी परिचित होते हैं और आपका भी परिचय करवाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम मधुरिमा, जिसमें आज बात होगी राग माल गुंजी की। राग माल गुंजी उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक मधुर और भावपूर्ण राग है। इसे अक्सर राग खमाज और राग बागेश्री के मिश्रित प्रभाव वाला राग माना जाता है। खमाज थाट जनित ये राग है, जिसकी जाति शाडव संपूर्ण मानी जाती है। कुछ घरानों में कुछ अलग मत भी मिलते हैं इसके बारे में। वादी स्वर म, संवादी स्वर सा। गाने बजाने का समय रात्रि का दूसरा प्रहर, लगभग रात 9 बजे से 12 बजे तक का। और राग का स्वभाव गंभीर, मधुर, कोमल और श्रृंगार प्रधान। आरोह में सामान्यतः रे का प्रयोग कम या वर्जित माना जाता है और अवरोह में कोमल निषाद यानी नी का प्रयोग प्रमुख होता है, जबकि कुछ प्रस्तुतियों में शुद्ध निषाद का अल्प प्रयोग भी मिलता है। गंधार, मध्यम और धैवत इस राग की सुंदरता को उभारते हैं। ये राग अपनी कोमल, मधुर और भावपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण विशेष रूप से ख्याल और ठुमरी में ज्यादा सुनने को मिलता है। फिल्म

झनक झनक पायल बाजी का एक गीत है, नैन सो नैन ना ही मिलाओ। संगीतकार वसंत देसाई, गायक कलाकार लता मंगेशकर और हेमंत कुमार। इस गीत को मालगुंजी के सबसे प्रसिद्ध फिल्मी गीतों के उदाहरणों में गिना जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात ये तो यूं तो यह है कि फिल्म संगीत में किसी भी गीत का शुद्ध रूप से किसी एक राग पर आधारित होना कम ही होता है, क्योंकि संगीतकार अक्सर एक से अधिक रागों का मिश्रण करते हैं। लेकिन हाँ, सर्वसम्मति से मान सकते हैं कि अगर बात हो राग मालगुंजी की और एक फिल्मी गीत का उदाहरण देना हो तो इस गीत का उदाहरण दिया जा सकता है। आइए सुनते हैं यही गीत।

रागमल गुंजी पर आधारित फिल्मी गीत बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये अपेक्षाकृत कम प्रयुक्त किया गया राग है। बहरहाल इस राग को जब भी सुना जाए ना तो जो भाव उभरते हैं वो हैं एक तो मधुर प्रेम का भाव, गहरा लेकिन शांत, बिना किसी तीव्र उत्तेजना के, हल्का सा विरह भी, बिछड़ने का दर्द नहीं लेकिन हाँ किसी प्रिय की कोमल याद जैसे हो, एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है, मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है, एक ऐसी कह सकते हैं ना कोमल सी नाजुक सी उदासी जैसी जो बोझ नहीं लगती बल्कि मन को संवेदनशील बना देती है, और जो रात की निस्तब्धता होती है मानो रात का आकाश, ठंडी हवा और दूर से आती तानपुरे की ध्वनि एक साथ मिल गई हो, तो ऐसा कुछ मिलजुल कर भाव उभरता है जब हम इस राग को सुनते हैं। तो अगर इसे एक चित्र में बदलने की कोशिश की जाए तो शायद वो कुछ ऐसे होगा जैसे कि पूर्णिमा की रात है, चारों ओर सन्नाटा है और हल्की हल्की हवा चल रही है, कहीं दूर से सितारे

सरोद पर मालगुंजी की आलाप सुनाई देती है। मन न तो पूरी तरह से प्रसन्न है और ना ही पूरी तरह से दुखी है, बस एक गहरी मधुर तृप्ति सी, किसी अपने की याद से भरा हुआ मन हो, ऐसा कुछ चित्रण हो सकता है इस राग का। अब इस राग में ना एक राग नहीं है, इसमें राग बागेश्वरी, राग रागेश्वरी और राग जय जयवंती, तीनों की ही छाया मिलती है और एक मिला जुला सा प्रभाव, बहुत ही प्यारा सा मधुर सा प्रभाव उत्पन्न होता है, जो आपने शायद इस गीत में महसूस किया होगा। एक और गीत आप तक पहुंचा रही हूं, फिल्म है छोटे नवाब, लता जी का गाया, संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार शैलेंद्र, और इस गीत के संगीत में भी छाया मिलती है हमें इस राग की, मालगुंजी की। हाँ, कुछ संगीत विश्लेषकों के अनुसार इसमें मालगुंजी के साथ अन्य रागों का भी प्रभाव है, मतभेद हैं, लेकिन वो तो ज्यादातर गीतों में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी एक राग में किसी गीत के संगीत को बांध पाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहरहाल हम इस गीत को सुनते हैं और आनंद लेते हैं संगीत का।

रात की नीरव गोद में मालगुंजी जब गुनगुनाए, मन के सूने आंगन में मधुर स्मृतियों के दीप जलाए, कोमल स्वरों की मंद लहर चांदनी बन मन में उतरे, मध्यम की मृदु मुस्कान लिए सपनों के द्वारिये खुले, न विरह पूरा न मिलन पूर्ण, बस भावों की एक सरिता, हर तान में छिपी प्रतीक्षा, हर आलाप में प्रेम विरह की कविता, धीरे धीरे बहती धुन जैसे पवन छुए वन।

ये राग सुनने वाले को भीतर की ओर ले जाता है, बाहरी उत्साह से अधिक आंतरिक अनुभूति की ओर ले जाता है। अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो ये राग वो राग है जो मन को रुलाता नहीं, मुस्कुराहट भी देता नहीं, बस चुपचाप उसे अपने ही भीतर बैठकर मानो सुनना सिखा देता है। हम भी सुनते हैं एक और गीत। फिल्म है आनंद, आवाज लता जी की, सलिल चौधरी साहब का संगीत और गुलजार साहब के लिखा ये गीत है। और फिल्म आनंद से बहुत ही प्यारा सा गीत ना जिया लागेदा, आइए सुनते हैं।

0: फिल्म सफर से एक और गीत आप तक पहुंचा रही हूं किशोरदा के स्वर में, म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद जी, लिरिसिस्ट इंदीवर। और आज के लिए बस इतना ही, आशा है प्रोग्राम मधुरिमा आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुर स्वर लहरियों और रागों की रोचक जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे ना इसी प्रोग्राम में। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। संगीत से जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन, उससे पहले ये गीत।
1: जी तेरी आँखें

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आज मेरे साथ हैं
1: प्रशांत कुमार। नमस्कार।
0: स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर। अब स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। तो प्रशांत, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
1: जी धर्मेंद्र, फीफा विश्व कप में फ्रांस, मैक्सिको और नॉर्वे की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आज इंग्लैंड का सामना कांगो से और बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट मैच के सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कल दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्याना सवालेंका महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंची। पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सेनर का दूसरे दौर का मुकाबला जारी। और बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। भारत का एक पदक पक्का।
0: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप का रोमांच सबके सर चढ़कर बोल रहा है और राउंड ऑफ 32 के मैच आज भी खेले जाएंगे। रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। फीफा विश्व कप की पिछली बार की उपविजेता फ्रांस की टीम स्वीडन को हराकर इस बार राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। मैक्सिको ने इक्वाडोर पर जीत के साथ 40 साल बाद नॉकआउट का मैच जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं नॉर्वे आइवरी कोस्ट को हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। एक रिपोर्ट।
2: न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में स्वीडन पर फ्रांस की 3-0 की जीत में एक बार फिर किलियन एम्बापे सबसे बड़े स्टार साबित हुए। विश्व कप में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए एम्बापे ने 45वें मिनट में अलिसो के पास को गोल में बदलकर टीम का खाता खोला। इसके बाद पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 53वें मिनट में बैडल बारकोवा ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। इसके 21 मिनट बाद फ्रांस के लिए तीसरा गोल फिर एम्बापे के जरिए आया और टीम की जीत लगभग पक्की हो गई।

0: 89 millimeters, one of the great goals.
1: It certainly would have been, and the technical ability that you need to execute this. His liquid gold, Michael Olise, absolutely wonderful to watch.
0: And Mbappe! Star after French star. How they twinkle! The love here is for their leader, Didier Deschamps, at a time of personal loss, enveloped by the players who look to him.
2: इस गोल के साथ ही टूर्नामेंट में एम्बाप्पे के 6 गोल हो गए हैं। उन्होंने इस एडिशन में टॉप गोल स्कोरर की लिस्ट में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है। साथ ही वे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे अधिक 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप करियर में 18वां गोल किया और मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। अब फ्रांस का सामना पैराग्वे से 5 जुलाई को होगा। उधर नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर विश्व कप इतिहास में पहली बार नॉकआउट मुकाबला जीता। एक समय मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था, लेकिन नॉर्वे के एरलिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में इस विश्व कप का अपना 5वां गोल कर टीम की जीत तय कर दी।
3: Absolutely sensational goal. So they've replied to one with one of their own. Oh, it's a lovely ball for Berg, for Haaland. He rolled it into an empty net. He gets all types of goals, but they all count the same. And on the big stage, this is a mighty one.
2: सह मेजबान मेक्सिको भी इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। 1986 में अपने घर में खेले गए विश्व कप में बुल्गारिया को हराने के बाद पहली बार जब मेक्सिको ने नॉकआउट चरण का कोई मुकाबला जीता है। जूलियन क्विनिक्स और राउल जिमनेज ने विजेता टीम के लिए गोल किया।
3: Cote d'Ivoire, gallant effort. They're out by the narrowest of margins, and Norway will play Brazil. In the round of 16.
2: हम आपको बता दें कि मेक्सिको की टीम 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 और 2018 विश्व कप में लगातार 7 नॉकआउट मुकाबले हार गई थी। वही 2022 कतर विश्व कप में टीम ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई थी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
4: प्रशांत, जब फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट की बात भी क्यों करना कर लें?
5: जी धर्मेंद्र, बिल्कुल। एशिया के सबसे पुराने डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस साल 24 टीम हिस्सा लेंगी। इनमें से 60 टीमें टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही हैं। प्रतियोगिता के मुकाबले 25 जुलाई से 23 अगस्त तक 5 शहरों में खेले जाएंगे।
6: दुनिया के तीसरे सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज कोलकाता में होगा, फिर 4 सप्ताह तक टीमों के बीच मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में भी खेले जाएंगे। वर्ष 1888 में शुरू हुए डूरंट कप का फाइनल कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में एक बार फिर इंडियन सुपर लीग क्लब, आई लीग टीमें, सेना की टीमें, उभरती हुई घरेलू टीमें और विदेशी टीमें एक साथ खेलेंगी। साथ नई टीम में श्रीलंकाई सशस्त्र बलों की डिफेंडर्स एफसी और मेघालय प्रीमियर लीग चैंपियन नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब शामिल हैं। भारतीय फुटबॉल का गढ़ कोलकाता एक बार फिर टूर्नामेंट का मुख्य केंद्र होगा, जहां विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण और किशोर भारती क्रीड़ांगण में 2 ग्रुप के मैच, उद्घाटन मैच, 2 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल तथा फाइनल खेला जाएगा। ये शहर रिकॉर्ड 17 बार की चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट, 16 बार की विजेता ईस्ट बंगाल एफसी, मोहम्मदन एससी, साउथ यूनाइटेड एफसी, सीआईएसएफ, भारतीय सेना और नई टीम बागपत एफसी और समलेश्वरी स्पोर्टिंग की मेजबानी करेगा। रांची पहली बार डूरंट कप की मेजबानी करेगा, जहां बिरसा मुंडा स्टेडियम में 26 जुलाई से 16 अगस्त तक लीग मुकाबले और एक क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है। ये शहर जमशेदपुर एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, भारतीय वायुसेना और डिफेंडर्स एफसी की मेजबानी करेगा। उधर इम्फाल का खुमान लंपक स्टेडियम 28 जुलाई से 17 अगस्त तक लीग मुकाबलों और एक क्वार्टर फाइनल की मेजबानी करेगा। इस ग्रुप में स्थानीय क्लब TRAUFC और निरोका एफसी, भारतीय नौसेना और पदार्पण कर रही एफसी रेंगडाई शामिल हैं। शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 जुलाई से 20 अगस्त तक लीग मुकाबलों के अलावा एक सेमीफाइनल मैच होगा। इस मैदान पर शिलांग लाजोंग एफसी, नोंगसे एसएस एंड सीसी, लैंगसनिंग एफसी और पदार्पण कर रहा मुंबई एफसी खेलेगा। गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम 1 से 13 अगस्त तक लीग चरण के मुकाबलों की मेजबानी करेगा। मौजूदा चैंपियन

0: नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस ग्रुप की मुख्य टीम है, जिसमें एफसी वन बोडोलैंड एफसी और कार्बी आंगलांग मॉर्निंग स्टार एफसी भी शामिल है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: दोस्तों, फुटबॉल की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 ट्वेंटी ट्वेंटी मैच की सीरीज की शुरुआत आज से चेस्टरली स्ट्रीट में होने जा रही है। आयरलैंड के हाथों पिछली सीरीज में 2-0 की हार के बाद अब हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिल में यही सवाल है कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड की तेज उछाल भरी पिचों पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी और क्या पिछली सीरीज में बेंच पर इंतजार करते रह गए वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा। सुनिए ये रिपोर्ट।
2: श्रृंखला एक, सवाल अनेक। सबसे बड़ा सवाल ये कि आयरलैंड के हाथों करारी शिकस्त के बाद क्या वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में मौका मिलेगा? क्या पिछली सीरीज में संजू सैमसन की दोहरी विफलता उन्हें बाहर बैठाने और सूर्यवंशी को मौका देने का बड़ा कारण बन सकती है? टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर इस बारे में कुछ साफ साफ तो नहीं कहते, लेकिन वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पैक करने की बात कहकर काफी कुछ इशारा दे जाते हैं।
3: देखिए, अभी हर एक इंडिविजुअल जो जो टीम में खेल रहे सबने परफॉर्मेंस किया है, ऐसा नहीं कि एक अकेले इंडिविजुअल ने किया है, बट हर एक को अपॉर्चुनिटी और एक तरीके का सिक्योरिटी हमें बिल्ड करना है ताकि हर एक इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस रहे गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट्स। एंड जो जो लोगों ने पिछला वर्ल्ड कप जीता है, डेफिनेटली उनको एक तरीके का आइडिया भी है कि कैसा खेले T20, और कंटिन्यूसली वो फॉर्मेट के एक तरीके के मेन पिलर्स रहे हैं, तो फिर पैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
2: सीरीज के शुरुआत के पहले भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशी ने इतना तो कह दिया है कि सूर्यवंशी को भी किसी अन्य क्रिकेटर की तरह अंतिम एकादश में जगह पाने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा।
4: He's absolutely ready to play international cricket. There's no doubt about that. But I think it's not a question to say you can leave Sanju Samson out, a guy who, went a long way to winning India World Cup 3 months ago, a guy who's had a fairly good IPL. It's important in terms of giving players confidence and the message we're sending to players. We want to give guys a long run in the team. So, as ready as Vaibhav is and as excited we are all and you all to see him play.
2: सवाल तो ये भी है कि पिछली सीरीज में बेअसर दिखी भारतीय बल्लेबाजी तेज और उछाल वाली मुश्किल विकेटों पर मेजबान टीम को कितनी चुनौती दे पाएगी। इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, साकिब महमूद और सोनी बेकर जैसे बहुत तेज गति वाले गेंदबाज हैं, साथ ही आदिल रशीद और रेहान अहमद जैसे चतुर स्पिनर भी हैं। वैसे भी रिवर साइड ग्राउंड पर गेंदबाजी का दबदबा रहा है, यहाँ न्यूनतम स्कोर 138 और उच्चतम स्कोर 195 है। जाहिर है सीरीज काफी कठिन रहने वाली है, इस बात को कप्तान श्रेयस अय्यर भी मानते हैं।
3: All of us, we have played in England before. We know how the wickets are. Usually we see it on TV as well. Belfast, we played after so many years. It's not a reason, but I'm just saying that turning up over there, getting acclimatized to the wicket, to the conditions, you fell a bit short in terms of reading the outfield and getting accustomed to the conditions over there. And over here also, the dimensions are pretty much similar, but the ground is flat and you feel the vibe, you feel the stadium vibe, the crowd would be intense as well. We've played in such conditions, such situations before.
2: उधर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में कप्तान हैरी ब्रूक, जोस बटलर, जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथिल, विल जैक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटन जैसे नाम हैं। आयरलैंड के खिलाफ ट्रैक से उतरी दिखी भारतीय गेंदबाजी की अब और कड़ी परीक्षा होने वाली है। तेज गेंदबाजों के साथ साथ अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर्स भी कसौटी पर कसे जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि आयरलैंड से हार के बाद हतोत्साहित टीम में कप्तान श्रेयस को नया जोश और जीतने का जुनून भरना ही होगा, तभी इस कठिन सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन टीम अपना दबदबा बना पाएगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
5: अब बात T20 क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। ICC ने T20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ईशान ने लगभग एक साल से नंबर वन की कुर्सी पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए, साहिबजादा फरहान तीसरे, फिल शॉल्ट चौथे, पाथम निसंगा पांचवें और तिलक वर्मा छठे स्थान पर हैं। वहीं बात अब महिला T20 क्रिकेट पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में 126 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर रहते ही हासिल कर लिया।
1: और प्रशांत, बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में

0: भारत का एक पदक पक्का हो गया है। प्रतियोगिता में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त अंडर 19 मिक्स जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीन के यिरेंग तांग और यी जियांग पर 11-9, 11-6, 11-7 की शानदार जीत के साथ अंतिम चार में जगह बनाई।
1: और अब बात विंबलडन पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इटली के यानिक शिनर का मुकाबला पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस के साथ चल रहा है। सातवीं वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज देर शाम दूसरे दौर में मिस्र के स्टाफिनोस सित्सिपास के साथ खेलेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में टॉप सीड सबालेंका तीसरे राउंड में पहुंच गई है। नौवीं वरीयता प्राप्त जापान की नाओमी ओसाका ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है।
0: और उधर भारत के बेलावन संथिल कुमार और तन्वी खन्ना पीएसए चैलेंजर टूर मुंबई स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बैडमिंटन से एक खबर है प्रशांत, जापान के यात्सुशिरो में भारत के ध्यान संतोष ने आज उलटफेर करते हुए थाईलैंड के छठी वरीयता प्राप्त पुन्नातात प्रेम पुंगवोंग को पराजित किया। संतोष ने लड़कों के सिंगल्स के पहले दौर में 21-17, 21-18 से जीत हासिल की।
1: और धर्मेंद्र, बॉक्सिंग से भी एक खबर आ रही है। भारत अंडर 19 और अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और उभरते खिलाड़ियों का मिलाजुला दल उतारेगा। ये प्रतियोगिता 3 से 16 जुलाई के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित होगी। मौजूदा एशियन चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रिका पुजारी इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और धर्मेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहे।

0: का कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

0: जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत

0: भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रविंद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोइन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूं कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल। ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा

0: तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: तो सुन जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पे जो सरकार की भूमिका रही, उससे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए

0: क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है। आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
1: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पर एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर से उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है
0: जी।
1: पूरे विश्व में वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोष है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है।
0: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस AI फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी API कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स का मैं अगर ई-कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इकोसिस्टम चाहिए तो मेरे पास UPI है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द डिपो इकोसिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही AI का अभी कुसुम जी ने बात किया कि AI कोषा में जो सब्सिडाइज रेट में GPUs दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
0: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
0: सुन जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और PM गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
1: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और

0: इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
2: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जो बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को, इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है, टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
0: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस, और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमिकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अब

0: अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवरेनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूजन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है,
1: कर रहे हैं हम।
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर सेक्टर्स हो, तो इस सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये एआई के साथ कॉन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा, जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया, अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है, और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट आई थिंक काफी

0: इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव ले रही है। जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट को भी आना चाहिए इसके आगे और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल हो या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था, इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को और एग्रीस्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे और क्या करेंगे हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है

0: क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
6: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
5: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
6: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
5: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेंगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकायुची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कल होंगी शामिल। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद में स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की। यूक्रेन की सेना ने 1 सप्ताह में लगातार दूसरी बार रूस की प्रमुख ऊफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से जारी। और अब समाचार विस्तार से। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और मलेशिया ने आज नई दिल्ली में 12वीं उप समिति की बैठक के दौरान द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के पहलुओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक में सैन्य आदान प्रदान, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री सहयोग सहित विभिन्न रक्षा गतिविधियों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने सोमनाथ घोष को मलेशिया में देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। श्री घोष 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। भारत ने पाकिस्तान के फारूखाबाद में स्थित 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है।

भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुद्वारे को ध्वस्त किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों या विस्थापित न्यासी संपत्ति बोर्ड की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने पर भी चिंता जताई। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी सेना ने एक सप्ताह में दूसरी बार रूस की प्रमुख उफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज कहा कि यूक्रेन ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में रूस के पेंजा क्षेत्र में मिसाइल घटकों का विनिर्माण करने वाले एक संयंत्र पर भी हमला किया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बताया कि उफा रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े लुब्रिकेंट उत्पादों से एक है और यूक्रेन से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। यूक्रेन ने दावा किया कि ड्रोन हमलों ने रूसी बढ़त को धीमा कर दिया है। रूसी अधिकारियों ने हमलों की पुष्टि नहीं की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 16 रूसी क्षेत्रों क्रीमिया और आजोव सागर और काला सागर के जल क्षेत्र में 179 यूक्रेनी ड्रोनों को रोकने की सूचना दी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। मंत्रालय ने कहा कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 घायल हो गए थे। पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हमलों के बाद अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 2008 में हस्ताक्षरित वाणिज्य दूत संपर्क समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी सूचियों का आदान प्रदान हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। उन्होंने भारत की महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इसमें भारत को वर्ष 2047 तक 25 से 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। यह वृद्धि नवीनतम पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत की गई है। इसके अंतर्गत नए बदलाव 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2500 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाला साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब 3500 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत ये 6000 रुपये होगी। 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रतिस्थापन साधारण पासपोर्ट जारी करने की लागत 5000 रुपये होगी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ढाका विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषा संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों के कल से शुरू होने वाले 9 दिवसीय दौरे के लिए एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करेगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह दौरा ICCR और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की संयुक्त पहल है। इसका आयोजन ICCR के छात्र आगंतुक कार्यक्रम 2026-27 के तहत किया गया है। प्रतिनिधिमंडल भारत के कुछ प्रमुख संस्थानों में अकादमिक और साहित्यिक आदान प्रदान के एक कार्यक्रम में भाग लेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। सरकार ने विदेश सचिव

मिस्र का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। श्री मिस्री ने तीन प्रधानमंत्रियों इंदर कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कल शामिल होंगी। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद में स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की। यूक्रेन की सेना ने एक सप्ताह में लगातार दूसरी बार रूस की प्रमुख उफा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और फीफा फुटबॉल विश्व के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के लिए आपका जो प्यार है ये तो जग जाहिर है। 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के गाए, आनंद बख्शी द्वारा लिखे और कल्याण जी आनंद जी के सुरबद्ध किए इस गीत को सुनकर आप समझ ही चुके होंगे कि प्यार भरे गीतों का हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया है जिसे कहते हैं हर सिंगार, और इसे लेकर आ गया हूं मैं अभिनीत शुक्ला। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और साथ ही सुनिए फिल्म कभी कभी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की सदाबहार आवाज में ये गीत, बोल साहिल लुधियानवी के और संगीतकार खयाम।

जहां तक मुमकिन है तुम्हारे साथ रहूंगा, कि जहां तक मुमकिन है तुम्हारे साथ रहूंगा। हो ना सका तुम्हारी सुबह का सूरज तो चांदे रात रहूंगा। अभी आपने आंचल फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में गीत सुना, जिसकी शब्द रचना की कवि प्रदीप ने और संगीत था चितलकर रामचंद्र का। और अगला गाना फिल्म ख्वाब से हेमलता और यशुदास का गाया हुआ, गीतकार और संगीतकार दोनों ही हैं रविन्द्र जैन।

देवानंद साहब की फिल्म गाइड से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में था ये गीत, जिसे लिखा शैलेंद्र ने और संगीत था एसडी वर्मन का। और इसी के साथ गाने सुनते सुनाते ही धीरे धीरे बीतने तो वाला है हर सिंगार का आज ये सफर भी। लेकिन फिलहाल आप मिस्टर एंड मिसेस 55 से मोहम्मद रफी और गीता दत्त का गाया ये गीत सुनिए, जो निकला मजरू सुल्तानपुरी की कलम से और संगीत इसमें ओपी नैयर का था।

उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर

बात एक रात की फिल्म से हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने गीत सुना। इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और इसका संगीत भी दिया था हेमंत कुमार ने ही। और साथियों, इसी के साथ प्यार भरे नगमों की इस पेशकश को आज यहीं विराम देना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आगे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जल्दी ही वापस लाएंगे और आपसे मिलेंगे।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar haazir hain. Hamare saath charcha ke liye studio mein aamantrit hain आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद मनोज जी.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस राइज ओवर हाफ ए परसेंट. सेंसेक्स गेन्स नियरली 450 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 24,000. जीएसटी कलेक्शन सर्ज ऑलमोस्ट 14% टू ओवर 1,94,000 करोड़ रुपीज इन जून दिस ईयर. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई खरीदारी. प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक लाभ में रहे. सेंसेक्स लगभग 450 अंक उछला. निफ्टी 24,000 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद. देश में इस वर्ष जून में जीएसटी संग्रह लगभग 14% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटी.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any फाइनेंशियल डिसीजन.
1: और अब शुरुआत करते हैं घरेलू शेयर बाजार से, जहां आज खरीदारी तेज रही और पिछले दो सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साथ ही निफ्टी सभी प्रमुख सूचकांक लगभग 0.6% लाभ के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़त के साथ 76,923 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप इंडेक्स 100 में 0.3% से अधिक की वृद्धि हुई और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स भी लगभग 0.4% लाभ के साथ बंद हुआ.
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.6% higher today, snapping a two-session losing streak. Sensex rose by 444 points to close at 76,923. Nifty also gained 140 points to settle at 24,006. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index added over 0.3% and the small-cap 100 index climbed around 0.4%. Earlier, markets opened marginally higher. Both the stock market indices extended their upward momentum throughout the session, supported by softer crude oil prices and buying across specific sectors.
1: सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो 30 में से 21 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में अव्वल रही कंपनी एटर्नल, जिसके शेयरों में 5.7% की वृद्धि हुई. एशियन पेंट्स में 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 3% ऊपर उठकर बंद हुए. उधर बिकवाली के दबाव में एचसीएल टेक के शेयर लगभग 3.5% लुढ़क गए. उधर टेक महिंद्रा में लगभग 3.1% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 2.5% से अधिक का नुकसान देखा गया.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 25 sectors ended in positive zone among the key gainers. Realty climbed 3.6%, FMCG rose 1.8% and services added over 1.3%. In contrast, focused IT fell 2.5%, IT lost 1.9% and metals dipped 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,276 companies advanced, 1,995 companies declined and 176 companies remain unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपए आज 57 पैसे कमजोर हुआ. 95.24 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 101.37 पर चल रहा था. पुरी जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. बाजार में आज थोड़ी सी तेजी देखी गई है, मूड थोड़ा सा बदल गया है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे बाजार पर आप?
2: मनोज जी देखिए, भारतीय शेयर बाजार एक बहुत ही मैं कहूंगा एक डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहा है, क्योंकि और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी तक इसकी बाजार की स्ट्रेंथ रहे हैं, जैसे आईटी क्षेत्र के जो शेयर्स थे वो अभी तक इस बाजार की हम कहेंगे कि एक नींव रहे थे, लेकिन वहां पर हम काफी गिरावट देख रहे हैं। काफी आज के दिन भी जबकि बाजारों में अच्छी तेजी थी, हमने आईटी के शेयर्स में काफी गिरावट देखी और वहां पर काफी निवेश है रिटेल इन्वेस्टर्स का भी, इंस्टीट्यूशंस का भी, और आईटी क्षेत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। दूसरे तरफ देखें तो जो कंज्यूमर कंपनीज एफएमसीजी कंपनीज में हम पिछले काफी दिनों से गिरावट देखते आ रहे थे, और यूजुअली हम एफएमसीजी कंपनीज को इकोनॉमी का एक दर्पण मानते हैं। हम मानते हैं कि अगर एफएमसीजी कंजम्पशन कम है तो उसका असर, नेगेटिव असर सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। वहां पर हमने आज तेजी देखी जो एक पॉजिटिव साइन है, यानी वो पॉइंट कर रहा है कि आने वाले समय में शायद कंजम्पशन यहां बेहतर हो, जो हम नेगेटिव इफेक्ट देख रहे थे मिडल ईस्ट वॉर के, शायद वो इफेक्ट अब कम होंगे। कुछ हमने कमी देखी है, कुछ इसेंशियल कमोडिटीज में कमी आई है, वहां पर थोड़ी गिरावट आई है, तो कंजम्पशन बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं आपकी बाजार जो है एक मिले जुले दौर से गुजर रहा है। ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो आ रहे हैं वो उम्मीद से थोड़े बेहतर है। हमने देखा जो इवन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आया, कोर सेक्टर ग्रोथ का डेटा आया, वो उम्मीद से बेहतर था, क्योंकि पिछले महीना अगर आप देखें जून का काफी मुश्किल महीना था, क्योंकि वॉर का इम्पैक्ट बहुत था, सप्लाई चेन्स काफी डिसरप्टेड थी। तो कुल मिलाकर एक मिला जुला रुख है, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय एक पॉइंटर है कि आने वाले समय में जैसे थोड़ी और इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होंगी तो बाजार और बेहतर हो सकता है।
0: पुनीत, एफएमसीजी इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट रोज 1.8% टुडे। अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन सीजनल डिमांड, वी आर द हाइट ऑफ द समर सीजन। देयर इज ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑफ ड्राउट बिकॉज 43% less rainfall has been predicted by IMD. How do you see all of that playing into, you know, your food and beverage consumption and really the pricing of FMCG stocks, because they seem to adjust quite well?
2: So Arjun, interestingly, FMCG sector, like I said, is a very important sector of the economy, because it not only concerns large companies, it concerns consumption by people at large, and it gives us some kind of an idea what is the trend in the economy. Now FMCG sector is going through some kind of a turmoil, because what we saw was some pullback in consumption lately. At the same time, we saw prices going up because the input prices, the raw material prices, which are commodities, they really shot up in the last 2-3 months. Fortunately, today we saw that there was a pullback in most commodity prices. You would see that even commodity stocks, a lot of them pulled back today. So probably the market is reading that going forward, prices in commodities and therefore the input prices for FMCG companies will come down and the profitability will rise. Yes, there are concerns about consumption because of lack of rainfalls and the expectations of a shortfall in monsoon rains this year. That is there. I don't think we can wish that away. That is, we're going to deal with it. Government is trying to, you know, bring in measures which will improve the situation. But I think that challenge being there, we will see margins improve because of

0: फॉल इन प्राइसेस फॉर इनपुट्स।
1: पुनीत जी, आपने चर्चा की आईटी सेक्टर की और कहा कि वहां पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। यहां पर क्या समझा जाए कि हमारी आईटी सेक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में परिवर्तन चल रहा है वहां खरा उतरने में पीछे रह रही है, या ढांचागत समस्या आ रही है हमारी आईटी सेक्टर में सेवाओं को लेकर, या कहने जो नए प्रोडक्ट उनके हैं उनको लेकर?
0: विनोद जी देखिए, सच बात तो यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ हद तक ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हो रहा है उससे जो काम करने का तरीका बदल रहा है फॉर पर्टिकुलरली फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो एक बहुत बड़ा बदलाव है सेक्टर के लिए। आज ही एक बहुत प्रमुख आईटी सर्विसेज कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस दी थी टॉप लाइन ग्रोथ की उसको काफी मेजरली कट किया, उसका नेगेटिव असर सारी इंडस्ट्री पर आया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर्स अपने पिछले 10 साल के सबसे नीचे स्तर पर चल रहे हैं, जबकि अच्छी कंपनीज हैं, काफी प्रॉफिट हैं वहां पर और बहुत बड़े पैमाने पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। तो डेफिनेटली इंडियन आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 वर्ष ये काफी डिफिकल्ट रहेंगे इस सेक्टर के लिए। उसके बाद जो नए आयाम होंगे, नए डायमेंशन होंगे, किस प्रकार से ये देखिए डिजिटल दुनिया तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, तो इंडियन कंपनीज भी अडेप्ट करेंगी, पर शायद अभी मार्केट्स को मैं कहूंगा डाउट है कि कौन सी कंपनी सर्वाइव करेंगी, कौन सी कंपनीज ग्रो करेंगी, ये भी क्लियर नहीं है। तो इस पूरे माहौल में अनसर्टेनिटी का माहौल है, उसमें जो आईटी क्षेत्र के जो शेयर्स हैं उसमें हम कुछ गिरावट देख रहे हैं।
2: पुनीत, लॉट ऑफ आवर आईटी कंपनीज डिपेंड अपॉन आउटसोर्सिंग, ऑफशोर आउटसोर्सिंग फ्रॉम यूएस कंपनीज हु आर नाउ डिपेंडेंट अपॉन artificial intelligence, income from that particular service and capital expenditure on artificial intelligence, data centers being created as a result of it. And we've seen from the earning results of bellwether IT companies in India that a lot of their AI income has gone up. So how do you see IT companies adjusting to this? Because it's not necessarily, it's high skill, but it's a lot of jobless growth as well. Is that really what is hitting the IT sector now?
0: So jobs vis-a-vis the growth of AI in works in workplaces, of course, is a major concern. We still do not know, but it's as it unravels, there are definitely huge concerns about employability of people, particularly countries like India where we have large white collar workers. There could be a significant impact on employment. This is just the beginning. We don't know what is going to happen. I think it will take a couple of years to play out. But IT companies, of course, are at the receiving end of this entire turmoil.
2: Your short opinion on metals, because it's been known to be volatile in the past as well. So we saw it slip by 0.9% today. Now we can see producers, in fact, looking for a substitute for copper. Aluminium being one of them, because a lot of EV production is using copper. They want to substitute it for aluminium. Do you see these kind of policy changes actually impacting metal stocks now?
0: Definitely. I think, in fact, in the last 2-3 months, commodity prices, particularly metal prices, have really shot up, even steel prices and other non-ferrous metals. So I think the industry is trying to bring down those prices because inflation is really hurting them. But my guess is this will take a couple of years. It's not going to happen overnight. I think this is a slow process. It will take some time.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां प्रमुख बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। खरीदारी के समर्थन से ताइवान के ताइएक्स सूचकांक में 1.9% से अधिक की वृद्धि हुई, वहीं जापान का निक्की 225.6% लाभ के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% से अधिक की बढ़त हुई। इसके विपरीत बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2% की भारी गिरावट हुई। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% नीचे आ गया। अवकाश के कारण हांगकांग के शेयर बाजार में कामकाज बंद रहा। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख प्रमुख बाजारों में दिख रहा था। एक ओर बिकवाली के चलते फ्रांस का कैक 40 0.8% और लंदन का फुटसी 100 0.5% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि जर्मनी के डेक्स में 0.1% से अधिक की बढ़त देखने को मिल रही थी। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो यूरोजोन में जून महीने में इस वर्ष वार्षिक आधार पर 2.8% कमी मुद्रा स्फीति में देखने को मिली है, जबकि मई में मुद्रा स्फीति की दर 3.2% दर्ज हुई थी। यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट की ओर से जारी ताजा आकलन में वार्षिक आधार पर जून में ऊर्जा पदार्थों के मूल्यों में 8.7% की वृद्धि रहने की सूचना दी गई है, जबकि मई में इन पदार्थों के मूल्यों में 10.8% की वृद्धि हुई थी।
2: To what extent do you see the lifting of sanctions against Russia?

0: पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह कहा गया कि जून में घरेलू जीएसटी संग्रह 1,34,774 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है। इस दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि आयात पर जीएसटी संग्रह 34.6% बढ़ा, 60,038 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कुल मिलाकर जीएसटी की दिशा और देश की आर्थिक दशा किस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं समझना चाहेंगे, और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, यहां भी मैं कहूंगा कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि ऐसा लगता था कि जून का महीना काफी डिफिकल्ट महीना है, महंगाई की दर बढ़ रही थी, कंजम्पशन कम होने की आशंका थी, बारिश नहीं हो रही थी। ये सब चिंताओं के बीच में हमको जीएसटी जो फर्स्ट इंडिकेशन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो अच्छा आता है। वो ऐसा दर्शाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही होगी, तो ये काफी एक अनएक्सपेक्टेड नंबर हैं। हालांकि इसमें काफी बड़ा योगदान इंपोर्ट के नंबर्स का है, अगर आप देखें जो हमने, यानी ज्यादा आयात हम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कर रहे हैं, इंस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि हमारी मुद्रा पे जो रुपी पे है उस पे प्रेशर हो रहा है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है। कुछ हद तक हम इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि वो इस दौरान भी उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको स्टेबल रखा है, स्ट्रांग रखा है, और कंजम्पशन जो है, क्योंकि जीएसटी नंबर सीधे कंजम्पशन से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन भारत में अभी भी अच्छी चल रही है। ये एक सरप्राइजिंग ट्रेंड है, बट दैट इज ट्रू।
2: द नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन 2025, वी सॉ अ स्पाइक इन ऑटो सेल्स, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन 2026?
1: So I think those reforms are playing out still. So we've seen a rebound in auto sales, like you mentioned, which was light goods. Now we are seeing some stability in FMCG and consumption items. So my guess is that simplification of GST should really help not only consumers, it should help producers also. The companies which pay GST to government, they're also looking for ease of doing business. My guess is that government will try and simplify this further. In fact, the policy making decision, they will kind of roll out over the next 6 months. We probably will see a better year in 2027.
2: In more good news, the Unified Payments Interface UPI transaction volumes rose 23% to over 22 billion in June on a year-on-year basis, while UPI transaction value surged 20% to over 28 lakh crore last month, according to data released today by the National Payments Corporation of India. On an average basis, UPI processed around 757 million transactions daily in June. So it seems the June news has really, I'm sure it'll give economists something to think about. But when we talk about electronic transactions, payments being made in this way, what is the role of cash going to be in the future?
1: So, while we, of course, ideally cash transactions should have gone down, surprisingly, we haven't seen a much decline in cash transactions. In fact, cash in circulation in India has gone up lately. But probably that is a sign of the economy expanding to pockets of rural India and other places. Overall, UPI definitely has helped us, but I think cash still continues to be the king.
2: So Digital India program depends a great deal on the internet.
1: Absolutely, and I think we've done very well in that area.
0: अच्छी खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ते हैं ग्रामीण भारत की ओर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से लागू हो रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का माध्यम है।
2: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ram Ji Act of 2025 effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. More from our correspondent.
3: The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to 327.4 rupees per day under VBG Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging

0: between 15% and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. With Saklain Akhtar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
1: Indian Ambassador to the United States, Vinay Mohan Quatra, has said India is emerging as a global leader of trusted supply chains, addressing the 9th U.S.-India Strategic Partnership Forum's annual leadership summit in Washington, D.C. Mr. Quatra said this transformation is underscored by resilient economic growth and structural reforms. The Indian Ambassador attributed this transformation to India's domestic economic growth and structural reforms, supported by robust and mutually beneficial partnerships abroad. The ambassador also outlined New Delhi's ambitious macroeconomic roadmap, projecting a structured path for India to grow into a $25 to $30 trillion US dollar economy by 2047.
2: In India, under the leadership of Prime Minister Modi since 2014, has been a series of economically transformative measures on the ground, which have resulted in a consistently high growth of 7+%, which is uniquely driven by domestic demand. It has externalities, but not really that strong.
1: Oil marketing companies have reduced the price of a 19-kilogram commercial LPG cylinder by 183.5 rupees today. According to the Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders have come into effect from today. After the reduction, new rate for 19-kilogram commercial LPG cylinder price in Delhi has been slashed to 2,930 rupees. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. Let's now move on to the energy market, crude oil. Global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 0.9% down at $72.30 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% down at $69.03 per barrel when reports last came in. Very briefly, despite the traffic that we're seeing through the Strait of Hormuz, there is also news trickling in of fresh attacks. Is any of this true?
3: So there may be some random attacks happening in Hormuz, but I guess the supply of oil from the Gulf has started in right earnest. In fact, I read the news that Saudi Aramco has already started selling oil on a spot basis, and about 6 million barrels thereby selling. So my guess is that supply chains have been restored rather quickly in the Gulf.
1: Let's move on to the bullion market now. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.5% up at 1,43,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,28,550 rupees per kilogram a short while ago.
4: आइए आपको लिए चलें एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार की जाने तक अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 0.5% बढ़कर 1,43,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था जबकि जुलाई अनुबंध वाली चांदी थोड़ी सी कमजोर होकर 2,28,421 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी यहां पर पुनीत जी सोने और चांदी के भाव अब यहां से कहां जाते दिख रहे हैं क्योंकि एक और कई देशों में जो केंद्रीय बैंक हैं उनकी ओर से खरीदारी भी चल रही है सोने के भाव नीचे भी आ रहे हैं तो आगे का रुख क्या लग रहा है
3: मनोज जी देखिए अभी फिलहाल जो प्रेशियस मेटल्स हैं इनका डायरेक्ट इंपैक्ट डॉलर इंडेक्स से आ रहा है और जैसे आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है लगातार 101 पहुंच गया है तो हमने सोने और चांदी में कमी देखी है मेरा मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले कुछ समय तक थोड़ा कमजोरी रहेगी प्रेशियस मेटल्स में और शायद फिर कंसोलिडेशन होकर अगले 2 या 3 महीनों बाद शायद हम थोड़ी स्टेबिलिटी देखें मुझे मेरा पर्सनल व्यू है कि यहां से थोड़ी कमजोरी अभी और हम देख सकते हैं इन प्रेशियस मेटल्स
1: एंड व्हाट्स द लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस इज दैट प्लेइंग अ रोल इन द स्टेबिलिटी इन प्राइसेस
3: डेफिनेटली दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड इफ यू सी दे हैव फॉलन एंड देयरफॉर गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो अंडर प्रेशर
4: बस यहीं पर पुनीत जी श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे
3: धन्यवाद मनोज जी
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

गाना अगर गाना है तो पहले उसे सुनना भी पड़ेगा, और इसीलिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन सकते हैं आपके दिल के हर एक भाव से मेल खाते गीत, यहाँ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीत मेरे मन मीत। मैं अभिनीत आपका पुनः स्वागत करता हूँ। पहला गाना था फिल्म संगम से लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन का, जिन्होंने हमारे अगले गीत को भी शुरू से सजाया है, जो कि है फिल्म गबन से रफी साहब का गाया हुआ, शब्द रचना हसरत जयपुरी की।

लता मंगेशकर का गाया ये बेहद खूबसूरत गीत था फिल्म वो कौन थी से, जिसे लिखा राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत मदन मोहन का। वैसे हमारी मुलाकात तो अगले हफ्ते मंगलवार को हो ही जाएगी और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड चैनल में हमेशा ही आपका हमारे किसी ना किसी साथी से मिलना हो ही जाएगा। फिलहाल गीत मेरे मनमीत को अभी हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि आज का सफर यहीं समाप्त होता है। अवनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा, आगे आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही काफी है। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। कार्यालय के अनुसार करीब 10 लाख गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। 13,000 से अधिक यूथ बूथ स्तर अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र वितरित करेंगे। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं कार्यक्रम निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत कर रही हूं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, लेकिन हमेशा की तरह कुछ अल्फाज लिए। न आसमां की तमन्ना न तारों की चाहत, न आसमां की तमन्ना न तारों की चाहत, बस इस वादी में मिले उम्र भर मुझे तेरी सोहबत।

नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, खता तो उस चेहरे की है जो हमें सोने नहीं देता।

एक तुम हो एक मैं हूँ, एक तुम हो एक मैं हूँ और मोहब्बत हो दरमियाँ। इस जहाँ में फिर किसी और की भला गुंजाइश हो कहाँ।

अब नजरों को नजारों की तमन्ना ही कहाँ है, अब नजरों को नजारों की तमन्ना ही कहाँ है, जब सामने तुम हो तो फिर देखना ही क्या है।

तुमने तोड़े हैं मेरे दिल के टुकड़े इस तरह, तुमने तोड़े हैं मेरे दिल के टुकड़े इस तरह, देख लो कि अब हर टुकड़ा मुस्कुराकर तुम्हारा ही नाम लेता है।

रेशमी जुल्फों का पहरा था उन नशीली आंखों पर, हम होश में रहते भी कैसे जब दिल ही हार बैठे हम उस मंजर पर।

0: रोज नया बहाना बनाकर तुम जो हमसे मिलने आते हो, रोज नया बहाना बनाकर तुम जो हमसे मिलने आते हो, मोहब्बत नहीं है तो फिर ये दिल लगी किस लिए जताते हो।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

मेरी हर सुबह और हर शाम तुम्हारे ही दम से है। मेरी हर सुबह हर शाम तुम्हारे ही दम से है। तुम हो तो ये कायनात है, वरना तुम्हारे सिवा इस दुनिया में क्या रखा है।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर। गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। सीबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाओं और सरकारी एजेंसियों के नाम पर आने वाली धोखाधड़ी वाली कॉल्स से सतर्क रहें। श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालताल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में स्थित 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत और इंग्लैंड का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 190 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन बाद में तेज बारिश होने के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर पाया, जिसके बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has approved two major highway infrastructure

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, और कार्यक्रम है गीत सुहाने। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। नदी का किनारा हो और तुम सामने बैठे देखो नजारे, उस बहते पानी में भी सिर्फ अक्स दिखेंगे तुम्हारे।

लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी का सबब, लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी का सबब, अब कैसे कहें कि तेरी चाहत में खुद को ही भुला बैठे हैं हम।

नींद से कह दिया है कि अब वो हमारे पास ना आए। नींद से कह दिया है कि अब वो हमारे पास ना आए। हम हर रात जागते हैं शायद कि तुम अब आ जाओ।

हमारे जो साथी अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बताते हैं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत सुहाने, मैं हूं आपके साथ अंजू।

दुनिया की हर मुश्किल से तुम्हें छुपा कर रखेंगे। एक बार भरोसा तो करो और आ जाओ हमारी मोहब्बत की पनाह में।

दिल का आशियाना सूना पड़ा है तेरे जाने के बाद, दिल का आशियाना सूना पड़ा है तेरे जाने के बाद, फिर से इस वीरानी को गुलजार करने, ऐ मेरे प्यार तू एक बार आ जा।

इस कदर गहरे उतरे हो तुम मेरी रूह में, इस कदर गहरे उतरे हो तुम मेरी रूह में कि अब हर धड़कन में तेरे ही प्यार की लौ सुलगती है।

तुम पास नहीं हो तो ये धड़कनें रूठी सी लगती हैं, तुम पास नहीं हो तो ये धड़कनें रूठी सी लगती हैं, आ जाओ पास मेरे, ये दिल बहुत बेकरार रहता है।

तेरी सादगी का ये अंदाज हमें बहुत भाता है, तेरी सादगी का ये अंदाज हमें बहुत भाता है कि जो बिना कुछ कहे भी दिल की हर बात समझ जाता है।

दिल की धड़कनों ने ये गवाही दी है मुझे अक्सर, दिल की धड़कनों ने ये गवाही दी है मुझे अक्सर कि सदियों तक याद रखी जाएगी ऐसी हमारी मोहब्बत की कहानी बनेगी।

दोस्तों, ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होगा क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार, और 2:10 पर रात सुरमई लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हेलीकॉप्टर परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश के पहले निजी प्वाइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि ये उपग्रह आधारित आधुनिक तकनीक खराब मौसम और दूरदराज क्षेत्रों में भी हेलीकॉप्टरों की सुरक्षित और सटीक लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि ये पहल हेलीकॉप्टर सेवाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और हर मौसम में सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से आपदा राहत, एयर एम्बुलेंस, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा के एक आरोपी को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी ने खुद को सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाया और उनसे 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया है। इसके साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच जारी है। इससे पहले इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए राउंड ऑफ 32 में डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, Viksit Bharat Gram G, Act 2025 has come into force across the country yesterday. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government has also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all the states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described yesterday as an unprecedented day for rural India. Prime Minister Ajit Pant and Thakayachi arrived in New Delhi yesterday on a three-day visit to India. Prime Minister Thakayachi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Thakayachi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit today with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi said he's looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sunai Takaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he's delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Government yesterday issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said that the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta to not roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Sources said that the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. It said that once the feature is enabled, the recipient's phone number will no longer be visible to a first-time contact and that an optional username key may be set as an additional control. The two-day Human Resource Mobility Forum organized by Ministry of External Affairs in New Delhi concluded in Delhi yesterday. The forum was inaugurated by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar on Tuesday. This was the first such forum organized by the ministry, providing a common platform to relevant ministries, foreign governments, foreign employers and recruiting agents for in-depth interactions to strengthen global workforce and promote legal mobility. 5-country sessions of Denmark, Germany, Italy, Japan and Russia, with whom India has signed specific MOU partnership on mobility, were held during the forum. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested a Haryana-based accused from Rajkot, Gujarat, in a digital arrest cyber fraud case. The agency said that a senior citizen victim was coerced into transferring more than 25 lakh rupees to 2 different bank accounts under the threat of a digital arrest. As per the complaint, the victim received intimidating calls from the unknown persons impersonating officials of security and counterterrorism agencies. The callers falsely claimed that her bank account had been used in terrorism-related activities and threatened her with arrest and seizure of her property. To lend credibility to their claims, they also shared a fabricated attachment order. In men's cricket, the first G20 international between India and England were abandoned due to rain in Chesterfield Street last night. The five-match series now stands level. Earlier opening to bat first, India scored 189 for 7 and stipulated 20 overs. However, host England did not get the opportunity to bat in the second innings as rain paused the match. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ आपके साथ अंजू और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

देखो चांद ने आज खिड़की से मुस्कुराकर कहा कि खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें ऐसा हम सफर मिला।

किताबे इश्क के पहले पन्ने पर लिखा पहला नाम हो तुम। किताबे इश्क के पहले पन्ने पर लिखा पहला नाम हो तुम, मेरा पहला, मेरा आखिरी और सबसे मुकम्मल अरमान हो तुम।

तुमसे मिलकर जाना कि मोहब्बत एक महज लफ्ज नहीं है, तुमसे मिलकर जाना कि मोहब्बत महज एक लफ्ज नहीं है, तुम मेरी जिंदगी का पहला सुकून और पहली मोहब्बत हो।

तो अब चलूं मैं, मगर अपना दिल यहीं छोड़ जाती हूँ। तुम्हारी यादों के साये में अपनी हर सांस यहीं छोड़ जाते हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और अगला कार्यक्रम हम रही लेकर आपके साथ आएंगे। अर्चित पांडे, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायुची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम कल से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 4th 250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 3 और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 का मैच जारी है। इस मुकाबले में सेनेगल ने बेल्जियम पर 2-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में जब जब तुम्हें भुलाया। रातों में खूब बातें होती हैं खुद से, रातों में खूब बातें होती हैं खुद से, कौन कहता है कि मैं अकेला हूं। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

जलाकर हसरत की राह पर चिराग आरजू के, जलाकर हसरत की राह पर चिराग आरजू के, हम तन्हा रातों में तेरे मिलने का इंतजार करते हैं। 3:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

खुद से बातें कर रातों को दिल बहला लेता हूँ, खुद से बातें कर रातों को दिल बहला लेता हूँ, कभी सही होता हूँ कभी खुद को ही गलत ठहरा लेता हूँ। 3:32 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

आ जाते हैं वो भी हर रोज ख्वाबों ख्यालों में, आ जाते हैं वो भी हर रोज ख्वाबों ख्यालों में, जो कहते हैं कि हम तो अब कहीं आते जाते ही नहीं।

बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार। मुनाफा कम है, मुनाफा कम है, पर गुजारा हो ही जाता है। 3:46 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

अकेली रात बोलती तो बहुत है, अकेली रात बोलती तो बहुत है, लेकिन सुन सिर्फ वही सकता है जो खुद भी उसके साथ अकेला हो।

3:59 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल 4250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब से कुछ ही देर में पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। फुटबॉल विश्व कप में सिएटल में बेल्जियम और सेनेगल के बीच राउंड ऑफ 32 में दोनों टीमों का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से सुबह 5:30 बजे कैलिफोर्निया में होगा। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शनिवार तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre long, 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, Viksit Bharat J. Ramji Act 2025 has come into force across the country yesterday. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all the states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described yesterday as an unprecedented day for rural India. Prime Minister Ajitan Sinai Thakhaiji arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. Prime Minister Thakhaiji was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Thakhaiji to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit today with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sunai Takaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 4:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

जिंदगी सवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी सवारने को तो जिंदगी पड़ी है, पहले वो लम्हा सवार लो जहां पर ये जिंदगी खड़ी है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम अरुणिमा में, जिसमें मैं एक बार फिर से आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।

तारीफ करूं क्या उसकी। किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते तो जरूर मिलते हैं, पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती हैं। 4:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

मंजिल पर पहुंचने के बाद ही पता चला, मंजिल पर पहुंचने के बाद ही पता चला कि मंजिल से ज्यादा अच्छा तो सफर ही था।

हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा संदेह समस्याओं का नया पहाड़ खड़ा कर सकता है। इन लाइनों में पूरी तरह से सच्चाई छिपी हुई है, क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत विश्वास के साथ करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हमें आसान लगने लगता है, पर जब हम किसी काम की शुरुआत से पहले ही संदेह करने लगते हैं तो छोटे से छोटा काम भी किसी पहाड़ की तरह बड़ा दिखने लगता है। 4:28 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

जीवन में अगर सुख और शांति चाहते हैं तो दूसरों से हमेशा शिकायतें करने से बेहतर है कि हम खुद को ही बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से लाख गुना बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। 4:34 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, याद अक्सर वही आते हैं जो उड़ जाते हैं।

बेहिसाब हसरतें ना पालिए, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है सबसे पहले उसे संभालिए। 4:49 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

4:55 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। जापान की प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तन

0: दोनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। भारतीय नौसेना का पोत INS सुदर्शनी सेल फोर्थ 250 न्यूयॉर्क और सेल बॉस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा कि ये यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2295 हो गई है। 11,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि लगभग 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस त्रासदी पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 25 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे, जिससे राजधानी काराकास सहित कई इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा था। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both the sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said the visit marked an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. In a social media post, Mr. Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi that will further deepen India-Japan special strategic and global partnership. The Prime Minister said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The government has approved two major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. Briefing media about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the Cabinet has approved the construction of an 8.1-kilometre-long six-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. The Cabinet also approved the construction of the 117.7-kilometre-long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a four-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the BBG Ramji Act 2025 for all the states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh said Viksit Bharat Ji Ramji Act is a transformative initiative that ushers in a new era of dignity, self-respect and livelihood security for millions of rural workers.

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय मत लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना फिर समय ही तय करेगा कि अब आपको क्या करना है। 5:11 हो चुके हैं। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं ही हूं आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम।

जीवन है तो कुछ समस्याएं तो होंगी ही, जीवन है तो कुछ समस्याएं भी होंगी। अगर हम सारा समय सिर्फ समस्याओं के बारे में ही सोचेंगे तो फिर समस्या तो वहां की वहीं रहेगी। हमें समस्याओं के बारे में सोचना छोड़कर कुछ समाधान के विषय में सोचना चाहिए।

जीवन में किसी को ढूंढना है तो सिर्फ परवाह करने वालों को ढूंढ लीजिए। जीवन में किसी को ढूंढना है तो सिर्फ परवाह करने वालों को ढूंढ लीजिए। इस्तेमाल करने वाले आपको खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। 5:24 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

सहम सी गई हैं ख्वाहिशें सारी, सहम सी गई हैं ख्वाहिशें सारी, ज़रूरतों ने शायद उनसे ऊंची आवाज़ में बात की होगी। 5:30 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।